ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तद अनुसार 8 मई 2026 सुबह के 5:53 45 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
3: दोस्तों, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब प्रभु यीशु के पीछे पीछे भीड़ चलकर उनको सुनना चाहती थी तो वो लोगों को निराश नहीं किया करते थे, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है। और इसीलिए एक बार प्रभु भीड़ को देखकर एक पहाड़ पर चढ़ गए और भीड़ से कहने लगे कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु के उपदेशों से प्रभावित होकर लोग प्रभु के अनुयायी बनकर उनका अनुसरण करने लगे, जिसे देख कई प्रभावशाली लोग प्रभु को पकड़ने के लिए ढूंढने लगे मौका। और दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु जब लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते तो दृष्टांत के जरिए बताया करते थे, ताकि लोगों को आसानी से उनकी बात समझ में आ सके। और एक बार प्रभु ने अपने चेलों से कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, परंतु तुम उन पर यकीन ना करना, क्योंकि सत्य वचन यही है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही थी कि प्रभु परमेश्वर की योजना के तहत पकड़वाया जाए और प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, प्रभु अपने चेलों को प्रार्थना में बने रहने के लिए कहते रहे ताकि वो मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए तैयार हो सकें, और इसीलिए प्रभु अपने शिष्यों को लेकर पहुंच गए गतसमनी

दोस्तों, गतसमनी बाग से लेकर क्रूज तक की दास्तान हम आपके साथ साझा करेंगे अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर अपने अगले हफ्ते के कार्यक्रम सत्य वचन में। तो जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या आज के विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें 9693644242, जी हाँ 9693644242 और 7678438471, जी हाँ 7678438471 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर हम उपस्थित हैं आप सभी के लिए। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर और मैं हूं आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और आज का मॉर्निंग मोटिवेशनल है, शुरुआत का समय नहीं, हौसला मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कब शुरू किया ये नहीं, कैसे और कितने दिल से किया वही असली कहानी बनाता है। तो चलिए आज की सुबह को थोड़ी उम्मीद, थोड़ी ऊर्जा और ढेर सारे हौसलों से भर देते हैं। यह है सुप्रभात मॉर्निंग मोटिवेशनल शो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

कभी सोचा है? हम अक्सर कहते हैं यार बहुत देर हो गई, लेकिन सच तो ये है देर सिर्फ घड़ी में होती है, सपनों में नहीं। मन में अगर आग है तो 25 में हो या 45 में, शुरुआत हमेशा सही होती है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी टाइमिंग से नहीं अपने हौसले से चलूंगा या हौसले से चलूंगी। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं कोमल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात, आपका अपना मॉर्निंग मोटिवेशनल शो, जिसमें आज हम बातचीत कर रहे हैं शुरुआत का समय नहीं हौसला मायने रखता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर। इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर, साथ ही साथ वीव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी, जिसके माध्यम से हम पहुँच रहे हैं हर गली हर घर मोहल्ले शहर देश और विदेशों में भी। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही कार्यक्रम सुप्रभात में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: और आप सुन रहे हैं सुप्रभात कार्यक्रम। और दोस्तों, हम आपसे जुड़ते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। और आकाशवाणी सिर्फ रेनबो ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा इतिहास है इसका। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आकाशवाणी इसका जश्न मना रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनीश जौली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज आकाशवाणी मना रहा है अपने 90 वर्ष का जश्न। और इसके उपलक्ष में हम आयोजित कर रहे हैं एक मैराथन। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार मनीष। मनीष कैसे हैं आप?
1: और बहुत बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग। और हम लोग 90 साल आकाशवाणी के यहाँ पे मना रहे हैं, उसके उपलक्ष में ये रन रखी गई है। यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल आए हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन प्रसार भारती के जो एम्प्लॉयज हैं वो आए हैं, और कुछ ही देर में यहाँ हमारे चीफ गेस्ट हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी, वो आएंगे। प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी जी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं चेयरमैन, वो आएंगे। तमाम डिग्निटरीज हैं और गौरव द्विवेदी जो सीईओ है प्रसार भारती के, वो यहाँ आएंगे, दौड़ में हिस्सा लेंगे। और इसी तरीके से आकाशवाणी सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं करता
0: जी,
1: वी डू दीज रन्स आल्सो।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम एक पूरा परिवार है, प्रसार भारती पूरा परिवार है। और आज वो उपलक्ष्य है कि पूरा परिवार एक साथ जुड़ रहा है और एक साथ जब चलेगा सड़कों पर तो देखेगी दुनिया की सिर्फ रेडियो सुनाई नहीं देता, दिखाई भी देता है।
1: या अभी क्या है ना कि अभी वार्म अप सेशन यहाँ पे हो रहा है, हमने म्यूजिक लगाया एंड एवरीबॉडी इज वार्मिंग अप।
0: जी जी,
1: सो यहाँ पे ज्योतिका जो हमारी प्रेजेंटर है वो और मैं शो को एंकर कर रहे हैं। और हम लोग को बोला गया कि जो जुम्बा वाले थे वो आए नहीं है, तो आपको वार्म अप करा रही, तो मैंने पुरानी जितनी भी मेरी एक्सरसाइजेस थी वो लेके सबको वार्म अप करा रहा हूँ, और मुझे वार्म अप कराने अब जाना है।
0: तो बिल्कुल, आप ऐसी बातें बता करके हमारा जो मन है ना विचलित कर रहे हैं, कि हमें भी लग रहा है कि हमें भी इस वक्त जो है आपके साथ ग्राउंड पर होना चाहिए था। खैर, फिलहाल हमारे हम आपके साथ जो है स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे और पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमें बताएं कि कितनी देर में जो ये मैराथन है ना ये शुरू होने वाली है?
1: देखो ये रन है, इट्स नॉट अ मैराथन बट इट्स अ फन रन व्हिच इज गोना बी 3.5 किलोमीटर्स। और ये बाहर रोड रनिंग होगी, सारी परमिशंस ले ली गई हैं यहाँ पे, एवरीबॉडी इज वेयरिंग व्हाइट टी-शर्ट्स विद द बिब नंबर्स। और जो भी टॉप 3 फिनिशर्स होंगे, दो कैटेगरीज हैं मेन एंड विमेन की, एंड ऑफ कोर्स पहले मेन शुरू करेंगे, उसके 5 मिनट के बाद विमेन शुरू करेंगी। एंड ये रन के बाद यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी, वो अपने ही अंदाज में सबका स्वागत करें। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: बिल्कुल, और इसके लिए जो सारी तैयारियां लगभग हो ही चुकी हैं और बस कुछ ही पल जाते होंगे मुझे लगता है मनीष।
1: हाँ, 7 बजे का टाइम है तो कुछ ही पल, 2 पल मिले तो फिर बन जाता है कारमा, गाना है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और ये रन जो होने वाली है ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है, और मतलब कहाँ तक कारवां बढ़ता चला जाएगा?
1: सर, कारवां तो बनेगा, 90 साल का कारवां आसान नहीं होता। 90 years is pretty too much, and you know this is just one way of celebrating 90 years of Akashvani. Anybody who is associated with Akashvani, वो लोग जो स्टूडियोज आए, प्रोग्राम्स में आए, वो लोग जो स्टूडियो नहीं आए लेकिन रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी देश को जिस तरीके से जोड़ता है, जोड़ता आया है, हंसी के पल बांटे हैं, खुशी के पल बांटे हैं, कुछ ऐसे पल जो यादगार पल हैं वो बांटे हैं, संकट की घड़ियों में और खुशी की घड़ियों में एक साथ आकाशवाणी देश के साथ 90 साल। इमेजिन, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के तौर पर एक नया नाम दिया गया था, और 2026 में 90 साल हो रहे हैं। So I need to get back to the warm up because लोगों की बॉडी हो रही है ठंडी and they need me. So I'm going to jump into the place where I really belong and that's the sports arena.
0: तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे मनीष, और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू। तो ये तो थे हमारे सहयोगी मनीष जौली, जो कि आज जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो आकाशवाणी प्रसार भारती जो एक रन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। और आपको इस रन के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता रहेगा, बस आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है।

हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, प्रोग्राम जो है ना, हम सिर्फ आपके लिए सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं लेकर के आते हैं, बहुत सारी जानकारियां भी लेकर के आते हैं। पूरा दिन हम आपके लिए एक के बाद एक प्रोग्राम्स भी लेकर के आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्यारा सा गीत। आफ्टर ऑल, जो रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें भी तो वार्म अप करना है।

जी हाँ बिल्कुल, जब कोई अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है तो दिल करता है इलू इलू, और यही हम प्रसार भारती के लिए, आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए कहते हैं। और श्रोताओं, अभी जो है समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम सुप्रभात का, लेकिन मैं कोमल आपसे मिलूंगी सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में एक बार फिर से 7:05 से आपके साथ होंगी भावना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी दोस्त भावना 102.6 एफएम रेनबो पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड वाली मॉर्निंग हो रही है, बड़ी हैप्पी वाली मॉर्निंग हो रही है, सनी मॉर्निंग हो रही है और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। पॉजिटिव वाइब्स ऐसे आ रही हैं कि जैसे ही आज मैं आकाशवाणी भवन में एंटर हुई, एक अलग ही एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। दिल्ली वालों, आप इमेजिन करिए, सुबह 7 बजे का समय है, दिल्ली की सड़कों पर एक अलग सी एनर्जी दिख रही है, खासकर आकाशवाणी पर एक अलग सी एनर्जी दिख रही है। जैसे ही मैं 7 बजे से पहले, कुछ समय पहले जब एंटर हुई, यहाँ सब ने अपनी एक वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, सब रनिंग शूज में बिल्कुल तैयार थे और एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही पैपी म्यूज़िक चल रहा था, सब में एक अलग एनर्जी थी। आकाशवाणी के सभी इम्प्लॉयज़ यहाँ प्रांगण में इकट्ठा हुए हुए थे। मुझे लगा आज क्या ऐसा कुछ खास है, ऐसा क्या है कि सभी आज इकट्ठा हुए हैं, कुछ अलग सी एनर्जी नज़र आ रही है, रनिंग शूज़ की आवाज़ आ रही है, वहाँ वार्म अप हो रहा है, हवा में एक अलग सी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, सबके चेहरों पर एक खुशी है, एक अलग सी एक्साइटमेंट है। बताऊँ आपको क्या कुछ खास है, इस साल ना आकाशवाणी सेलिब्रेट कर रहा है अपने 90 ग्लोरियस ईयर्स, 90 साल, आप समझ रहे हैं, सुनहरे 90 साल आकाशवाणी के, मतलब जेनरेशंस की यादें हैं, रेडियो के साथ बड़े हुए हैं लोग और वो आवाज़ जो घर घर का हिस्सा बनी है आकाशवाणी। और इस हिस्टोरिक माइलस्टोन को ना सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि मैराथन की जाए। तो आकाशवाणी मैराथन इस समय जारी है, 8 मई का दिन है, शुक्रवार है। दिल्ली में ये स्पेशल ना 3.5 किलोमीटर की रन शुरू हो चुकी है आकाशवाणी भवन गेट नंबर 3 से, और ये रूट गुजरेगा कृषि भवन, रेल भवन, आरबीआई बिल्डिंग के पास और कंक्लूड होगा रंग भवन में। तो सोचो, एक तरफ दिल्ली की ये आइकॉनिक बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ ये रेडियो लवर्स, यंगस्टर्स, आकाशवाणी के ये सभी इम्प्लॉयज एक साथ दौड़ते हुए ये संदेश देते हुए कि इसी एकता में अटूटता है और एक साथ दौड़ेंगे तो एक बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा, एक फिटनेस का भी, एक अटूटता का भी, एक एकता का भी। और दोस्तों, ये सिर्फ ना एक मैराथन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है यूनिटी का, ये सेलिब्रेशन है फिटनेस का और ये सेलिब्रेशन है आकाशवाणी के, रेडियो के उन 90 सालों का जहाँ आकाशवाणी ने देश को खबरें दी, ये सुनहरे पल दिए, ये ब्यूटिफुल म्यूजिक दिया, इमोशंस दिए और हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि सिर्फ दिल्ली नहीं, ये रीजनल स्टेशंस पर भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं और आकाशवाणी पूरे देश को इस समय साथ लेके चल रहा है, क्योंकि ये दिल से दिल तक की बात है और यही आकाशवाणी तो आप सबको हमसे कनेक्ट करता है और यही तो 102.6 एफएम का एक अलग सा मैजिक है। और इस अलग मैजिक की ये शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है, आई एम जस्ट लविंग इट। यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया, आकाशवाणी अपनी ग्लोरियस 90 ईयर्स मना रहा है और आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आकाशवाणी की मैराथन इस समय चल रही है और आकाशवाणी की मैराथन में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी ने रनिंग शूज पहने हैं और जो म्यूजिक है ना, उसने समय बांध दिया। ये सुबह सुबह का वक्त ना हाई एनर्जी आकाशवाणी में भी हो चुका है क्योंकि सभी इस समय कोई ना कोई अपने अंदाज में भागने की कोशिश कर रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि एकता में ही अनेकता है और अटूटता है, और इस अटूटता में ही एक बड़ा संदेश है कि आकाशवाणी के जो 90 साल रहे हैं ना, वो बेहद ही अटूट रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में ना, जहां हर कोई अपनी रेस में बिजी है, वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं, बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। और आज उन्हीं हीरोज को सैल्यूट करने का दिन है। उन्हीं सब हीरोज को सैल्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि आज है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। जी हाँ, इंसानियत आज भी जिंदा है। और कहाँ है? जब फ्लड आता है तो आप देखते हैं, जब अर्थक्वेक आता है, जब किसी को खून की ज़रूरत होती है, और जब दुनिया किसी पैंडामिक से गुजर रही होती है, तब यही रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स आपके काम आते हैं और बिना रुके, बिना डरे मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। उनके लिए ना कोई धर्म नहीं होता, ना कोई बॉर्डर होता है, ना कोई भाषा होती है, ना कोई लैंग्वेज होती है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट होती है, और वो स्पिरिट होती है किसी को मदद करने की। और इनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक है, वो है इंसानियत, यानी कि ह्यूमैनिटी। और इसी ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ी काइंडनेस छिपी है, और ये हम सब में छिपी

0: ये कहीं ना कहीं जब भी किसी को किसी भी मौके पर ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उस तक वो मदद पहुंचाई जाए और हम भी कहीं ना कहीं उस रेड क्रॉस वॉलंटियर्स का हिस्सा चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बन सकते हैं। और एक सिंपल सा थॉट था कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एवरी ह्यूमन लाइफ मैटर्स, ये किसने बोला? ये कहा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के फाउंडर ने, जो हेनरी ड्यूनेंट थे, जिनके बर्थडे पर यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो आप ये स्पेशल मैसेज सुनिए जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे से जुड़ा हुआ है।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को आपसे साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस विशेष स्मृतियों के सफर की श्रृंखला में, यानी आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से रेडियो के प्रसारण की नींव बॉम्बे से शुरू हुई, पहुंची कलकत्ता तक और फिर आई मद्रास तक। लेकिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहां से आया, कैसे बना, जानते हैं इस अंक में। श्रोताओं, अब तक रेडियो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका था, चाहे वो जनसेवा हो या मनोरंजन, रेडियो हर रूप में लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। हालांकि इसी बीच इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1 मार्च 1930 को बंद हो गई। इसके बाद देश में रेडियो सेवा को जारी रखने की मांग तेज होने लगी। इन परिस्थितियों में सरकार ने आगे आकर बॉम्बे और कलकत्ता के रेडियो स्टेशनों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। 1 अप्रैल 1930 से भारत में प्रसारण पूरी तरह सरकारी नियंत्रण के अधीन आ गया और इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से शुरू किया गया। शुरुआत में ये सेवा एक प्रयोग के रूप में आरंभ हुई, लेकिन जल्द ही ये भारत की प्रसारण व्यवस्था की एक स्थायी और संगठित संरचना बन गई। इस सेवा के संचालन और विकास के लिए एक केंद्रीय प्रसारण सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसने रेडियो के भविष्य को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर इसी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया के रूप में पहचान बनाई, जो देश की आवाज बन गई। तो आगे की जानकारी हम पहुंचाएंगे आप तक अगले अंकों में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: तो सुना अपने दोस्तों की कैसे यह आकाशवाणी दिलों की धड़कन बन गई। और यह आकाशवाणी बस शब्द नहीं है, ये ना जाने कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं इस शब्द के साथ। और आज जब दुनिया पॉडकास्ट, रील्स और शॉर्ट वीडियोस के ज़माने में जी रही है, तब भी रेडियो एक अलग दुनिया है, एक अलग वॉर्म्थ है। और इसी वॉर्म्थ, इसी लेगेसी को सेलिब्रेट करते हुए आकाशवाणी ने पूरे कर लिए 90 साल। यानी 90 साल मतलब सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये जेनरेशन्स का सफर है, आवाजों का इतिहास है और भारत की धड़कन है। सोचिए, एक वक्त था जब घर में रेडियो होना ना बस एक लग्जरी माना जाता था। शाम होते ही लोग रेडियो के पास बैठ जाते थे खबरें सुनने के लिए, क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए, विविध भारती के गीतों के लिए और उन आवाज़ों के लिए जो घर घर का हिस्सा बन जाती थी। आकाशवाणी ने सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं दिए, इमोशंस दिए, इन्फॉर्मेशन दी और देश को एक धागे में बांधने का काम किया। वॉर हो या इलेक्शंस, फेस्टिवल्स हो या म्यूजिक कॉन्सर्ट, हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में आकाशवाणी ने आपका साथ दिया और आपने हमारा साथ दिया। और सबसे खास बात यह रही कि रेडियो ने कभी जो ये आवाजें थी वो आवाजों से दिल को कनेक्ट किया। इसी तो कहते हैं दिल से दिल तक का ये संबंध है। गांव की चौपाल से लेकर मेट्रो सिटीज तक, हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल हो, बांग्ला हो या मराठी, आकाशवाणी ने हर भाषा में अपनी आवाज़ दी। और कितनी ही लेजेंडरी वॉइसेस इसी माइक्रोफोन से निकल करना लोगों के दिल तक पहुंची। और आज भी जब सुबह की शुरुआत हुई है, इस चाय की चुस्की के साथ शायद आपकी शुरुआत हो रही होगी, तो ये जो रेडियो का कनेक्शन मेरा और आपका बनता है ना, बड़ा फ्रेश सा लगता है। जब मैं आपके साथ मिलती हूँ तब लगता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और जब दिन की शुरुआत आपके साथ हो जाए तो मुझे लगता है कि बस अब तो दिन अच्छा बीत ही गया। और टेक्नोलॉजी ना कितनी भी बदल जाए, एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है रेडियो की वो ऑनेस्टी, वो सिंप्लिसिटी

तो दोस्तों बहुत ही अच्छी शुरुआत तो गुड मॉर्निंग वाली हो ही चुकी है हमारे और आपके साथ। वक्त आपको बता दो स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से अपनी घड़ी की टिक टिक को मैच कर लीजिए। 7:28 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी कि भावना के साथ, जो भावनाओं से लबरेज है। लेकिन आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी बड़ी ज़रूरी है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने वाला है दिल्ली में। और क्रिकेट का जुनून ना जब दोस्तों चरम पर होता है तो उसका असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं होता बल्कि शहर की रफ्तार पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। आज दिल्ली में IPL 2026 के तहत अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला है हाई वोल्टेज मुकाबला, जिसको लेकर इस समय आपकी एक्साइटमेंट भी पूरे चरम पर होगी। आई नो दैट फ्राइडे का दिन है, आपको लग रहा होगा शाम कैसे व्यतीत की जाए। तो शाम मेरे दोस्त आपके लिए एक मैच जो आने वाला है वो बहुत ही रोमांचक आने वाला है, जिसको आप TV स्क्रीन पर भी देख कर एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप स्टेडियम में पहुँच कर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेडियम में पहुंचना है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है मैच के दौरान और उससे पहले। आपको कुछ प्रमुख मार्ग में आपको बता देती हूँ, यानी कि सम इम्पॉर्टेंट रोड्स जहाँ आपको नहीं जाना है, या फिर अगर जाना है तो पहले जाना है या आप रूट डाइवर्ट करके जाइएगा, नहीं तो आप लंबे जाम में फंस सकते हैं और जो आपका शुक्रवार है ना वो फिर शुक्र नहीं मना पाएंगे आप। ऐसे में अगर आप शाम के समय ITO दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग या फिर JLN मार्ग पर जा रहे हैं तो आप प्लानिंग कर लीजिए घर से पहले निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ रूट डाइवर्टेड रहेंगे मेरे दोस्त। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वो तो आपको वैसे भी करना चाहिए, और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, क्योंकि मैच का रोमांच अपनी जगह है लेकिन आपकी सुरक्षा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं तो पहले थोड़ा निकलें, और अगर उस रूट से जो रूट हमने आपको बताए तो आप ऑल्टरनेट रूट जरूर अपना लें, क्योंकि जो क्रिकेट का उत्सव है ना वो शहर की रफ्तार को पूरी तरह थाम ना ले। इसके लिए आप पूरी साजो सामान के साथ, पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलें जब आप

ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा हो तो थोड़ा पहले निकल लें, या फिर देख लें कि कौन कौन से मैप्स में कौन कौन से रूट्स आपको दिख रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बस आज का दिन बीत जाए और कल से तो वीकेंड शुरू हो रहा है, यानी कल आराम होगा, 5 दिन की जो डेडलाइंस थी वो बस पूरी कर ली हैं, अब वीकेंड एंजॉय करने का मेरे दिन मेरे दोस्त वक्त आ गया है, तो आप खुलकर एंजॉय करिए, ये मॉर्निंग भी बड़ी अच्छी है। और इसी के साथ ये सोचिए कि बस आज का दिन और फिर कल वीकेंड।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आप सुन रहे 102.6 FM रेनबो और मैं हूँ आपके साथ भावना। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर की शुरुआत हो चुकी है। आज संगीत की ना उस अमर साधिका को हम याद कर रहे हैं जिनकी आवाज़ में बनारस की मिट्टी की खुशबू, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और लोक धुनों की आत्मा बसती थी। आज पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी की पुण्यतिथि है। ठुमरी क्वीन के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली गिरिजा देवी ने सिर्फ संगीत नहीं गाया बल्कि भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत को भी नई पहचान दी। ठुमरी हो, दादरा हो, कजरी हो और चेती जैसे लोक और शास्त्रीय विधाओं को उन्होंने अपनी आवाज से ऐसा सम्मान दिलाया कि वे घर घर तक पहुंची। उनकी गायकी में बनारस घराने की परंपरा, भावों में मिठास और सुरों की साधना साफ झलकती थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर संगीत प्रेमी और पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। कहते हैं ना कि कलाकार कभी जाते नहीं है, उनकी कला उन्हें अमर बना देती है और गिरिजा देवी की आवाज आज भी भारतीय संगीत की विरासत बनकर पीढ़ियों को सुरों का संस्कार दे रही हैं। तो यही है इनकी लेगेसी जो आज भी हम याद कर रहे हैं और इनसे जुड़े गाने, इनसे जुड़ा म्यूज़िक आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो ठुमरी से जुड़ा हुआ ही एक कहते हैं ना एवरग्रीन गाना आइए आपको सुनवा देती हूँ।

तो आपने सुना कैसे गिरिजा देवी ने एक अपनी एक लेगेसी छोड़ी, और आपको बताएं कि आज संगीत की दुनिया के उस अनोखे कलाकार का भी जन्मदिन है जिसने अपनी ना अलग आवाज़ और अपने बिंदास अंदाज और गुण रिदम से कहूं तो भारतीय पॉप और बॉलीवुड संगीत को एक अलग पहचान दी। और अलग पहचान किसने दी बताऊं, वो नाम जिनका आज बर्थडे है, रेमो फर्नांडिस। हम्मा हम्मा सॉन्ग तो आपको याद होगा, मारिया पिटाचे और ओ मेरी मुन्नी जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग से युवाओं के दिल में खास जगह बनाई है उन्होंने। और आपको साथ ही साथ बताऊं कि ठुमरी की मिठास हो या फिर लोक संगीत की आत्मा हो या फिर रेमो फर्नांडिस का वेस्टर्न म्यूजिक, भारतीय संगीत की यही विविधता उसे खास बनाती है। सुरों का यही रंग हर पीढ़ी को अपने अलग अंदाज से जोड़ता है और यही कुछ हमारी भी कोशिश है। तो चलिए रेमो फर्नांडिस की ही जो धुन है उससे जुड़ा हुआ आपको एक अमेजिंग सॉन्ग सुना देती हूँ इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में।

0: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों वक्त हो गया अब आपको बताने का कि खेल की दुनिया में क्या कुछ नया हलचल चल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उनकी रोमांचक जीत हुई है। लखनऊ ने इकाना स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। मिचेल मार्च ने धमाकेदार 111 रन जो कि 56 गेंद में बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं प्रिंस यादव ने विराट कोहली को 0 यानी कि 0 पर आउट करके 3 महत्वपूर्ण विकेट लिया।

चैलेंज की दुनिया में चले तो डी कुकेश का जलवा लगातार बरकरार है। पोलैंड में चल रहे सुपर रैपिड एंड बिल्ड्स टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हरा दिया है। वहीं टी पे सिजेमैन शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल टाई ब्रेक में अर्जुन एरेगैसी को मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ा है। फुटबॉल की बात करें तो पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को हराकर लगातार दूसरी बार यूएएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं टेबल टेनिस में दिल्ली को 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी मिल चुकी है। तो खेल की दुनिया से ये कुछ खास अपडेट्स हैं जो आपको बतानी ज़रूरी होती हैं, बिकॉज फिटनेस का ख्याल भी तो रखना पड़ता है और स्पोर्ट्स की दुनिया से कौन नहीं अपडेट रहना चाहता। तो स्पोर्ट्स की दुनिया का ये कुछ ऐसा है हाल। अब आप चल लीजिए संगीत की दुनिया में, क्योंकि एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए आ रहा है।

तो सब कुछ पहली पहली बार ही होता है दोस्तों, लेकिन पहली बार नहीं हो तो फिर दूसरी बार कैसे होगा। और इसी के साथ अब इस पॉजिटिव मॉर्निंग में ना थोड़ा सा स्लोनेस आने की ज़रूरत इसलिए हो गई क्योंकि मेरी दोस्त कोमल आ चुकी है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का 2.0 वर्जन लेके, और बहुत ही खूबसूरत वो लग रही हैं क्योंकि आज आकाशवाणी मैराथन चल रही है और आकाशवाणी मैराथन में उन्होंने आकाशवाणी मैराथन की टी शर्ट पहन ली और वो रनिंग करके आ चुकी है। और अब मेरा वक्त आ गया कि मैं भी जाके थोड़ा सा मैराथन में पार्टिसिपेट कर लूँ। 1 घंटे बाद आपसे फिर से होती है मुलाकात, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा दिन बिताइएगा। फ्राइडे मॉर्निंग है, बस कल ही वीकेंड आने वाला है, इसीलिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, एंड कल वीकेंड है, बस थोड़ा सा और इंतजार मेरे दोस्तों। बाय टाटा, फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 2.0 लेकर के हाजिर हूँ मैं कोमल, और आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी जानकारियाँ, क्योंकि ये जो अगला एक घंटा है ना, इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि आप सभी को दे वो सारी जानकारियाँ जो कि आप सुबह की भाग दौड़ में थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, लेकिन हमारे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। नई सुबह, नई ऊर्जा और एक शानदार वीकेंड की शुरुआत बस होने को है, मतलब वीकेंड इज अराउंड द कॉर्नर। मैं हूँ आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और लेकर आई हूं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जहां बातें होंगी दिल की, खबरें काम की और म्यूजिक जो बना दे आपके दिन को और भी खास। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज की शुरुआत कैसे हो, तो बस सही जगह आपने ट्यून कर लिया है। आने वाले एक घंटे में रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहां हर बात में पॉजिटिविटी है और हर पल में हम आपके साथ हैं।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ कोमल। और दोस्तों, मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम साफ और सनी रहने वाला है। आज का न्यूनतम तापमान अगर हम बात करें तो 23 डिग्री और अधिकतम की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो दिन चढ़ने के साथ साथ गर्मी जो है ना वो अपना असर दिखाने वाली है, इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं या निकलने का प्लान कर रहे हैं तो अपने पास वाटर बोतल ज़रूर रखिएगा, हल्के कपड़े पहनिएगा और ख़ुद को हाइड्रेट रखिएगा। आज सूर्यास्त होगा 7:00 और कल यानी शनिवार के दिन जो सूर्योदय होने वाला है वो 5:36 पर होने वाला है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ कोमल। दिल्ली की धूप कह रही है दोस्तों, कैप, शेड्स और पानी तीनों साथ लेकर के चलिएगा।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से। इसके अलावा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भी तो है आप सभी के लिए। जी हाँ, इन सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो और कोई भी समय क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं ऐसी ऐसी जानकारियाँ जो आप सभी के लिए पॉजिटिव तो होती ही हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देती हैं कि आपका दिन जो है वो बन जाता है। तो चलिए इसी क्रम में आपको बताते हैं कि अब जो है काम सिर्फ कमाई के लिए नहीं, जैसे हम जानते हैं कि कमाई के लिए नहीं किया जाता, काम करने वाला इंसान जो है उसका हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी फैमिली भी उसकी खुश रहेगी और हमारा जो देश है वो भी स्ट्रांग बनेगा। इसी सोच के साथ एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि दोस्तों कमाई ज़रूरी है लेकिन सेहत जो है सबसे बड़ी पूंजी है। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। कई बार मेहनत करते करते इंसान अपनी हेल्थ को जो है वो इग्नोर कर देता है, थोड़ी थकान, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा बीपी और हम कहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन रेगुलर हेल्थ चेकअप कई बड़ी बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ लेता है। अच्छी बात यह है कि 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले जो वर्कर्स हैं वो अब ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकेंगे। जी हाँ, इसके साथ ही जो हैज़ार्डस वर्क्स हैं, यानी जैसे केमिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस और हैवी मशीन के साथ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए एज में कोई भी मतलब बाध्यता नहीं है, यानी कि एज कोई भी मैटर नहीं करती है, उनके लिए हेल्थ चेकअप मैंडेटरी हो जाएगा। और यही इस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ESIC लंबे समय से वर्कर्स को मेडिकल सपोर्ट, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सुविधा देता आया है। मतलब फोकस अब सिर्फ रोजगार पर नहीं होगा बल्कि हेल्दी वर्कफोर्स पर भी होगा, क्योंकि विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब देश को वर्कर्स फिट, सेफ और कॉन्फिडेंट मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना दोस्तों, वो भी एक मशीन है और सर्विसिंग तो टाइम पर होती ही रहनी चाहिए, वो तो हम सभी जानते हैं। तो अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग, यानी कि आपको हेल्थ चेकअप समय पर कराना होगा, चाहे आप ESIC वर्क के अंडर आते हैं या आप ESIC के अंडर नहीं भी आते हैं, तो भी आपकी खुद के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि आप

अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो 102.6 पर, जहां बातें सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तक जाती हैं।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, तो चलिए इसी हेल्थ सब्जेक्ट को जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको देते हैं एक खुशखबरी, क्योंकि दिल्ली वालों, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो अब हमारे सामने आ रही है, क्योंकि द्वारका में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज बनाने का जो है वो फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल परिसर में बनने वाले इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, ये, और इसे साल 2028 तक पूरा भी किया जाएगा। यानी हेल्दी दिल्ली तभी बनेगी जब डॉक्टर्स और फैसिलिटी दोनों ही स्ट्रांग होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं है बल्कि फ्यूचर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट भी है। इस मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो है वो विकसित किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसे बनने के हर साल बाद जो है MBBS की 250 नई सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी दिल्ली में, और शुरुआत लगभग जो है इसकी वो 150 छात्रों के साथ होगी। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स, ज़्यादा ट्रेन्ड डॉक्टर्स और फ्यूचर में बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज। और प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये भी है कि इसमें ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि सोलर पावर हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, नेचुरल लाइटिंग हो या वेंटिलेशन हो, ये सारी मॉडर्न सुविधाएँ भी आप को यहां पर मिल जाएंगी। यानी आज की मेडिकल एजुकेशन कल की बेहतर हेल्थ केयर बनती है दोस्तों, तो हुई ना ये बड़ी अच्छी सी बात। दिल्ली में नया मेडिकल कॉलेज मतलब सिर्फ नई सीटें ही नहीं बल्कि नई उम्मीदें, बेहतर इलाज और आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम। और जब एजुकेशन और हेल्थ केयर साथ साथ आगे बढ़ते हैं तभी शहर सच में हेल्दी और फ्यूचर रेडी बनता है। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगनी कोमल और आप सुन रहे हैं

0: है आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर यानी आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां पर हम आपको ढेर सारी जानकारियां देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और दिल्ली वालों, अगर आप या आपके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA ने ये फैसला लिया है कि अब उसके सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में फिर से प्रोफेशनल कोचिंग शुरू की जाएगी। और अच्छी बात यह है कि ये जो कोचिंग है ना, इसमें नॉन मेंबर्स जो हैं वो भी हिस्सा ले सकेंगे। टैलेंट का सही इस्तेमाल यानी और टैलेंट को सही ट्रेनिंग मिल जाए तो मैदान खुद पहचान बना देता है। दोस्तों, DDA इस समय जो है वो 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चला रहा है, जहां हर महीने लाखों लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और अब इन कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए प्रोफेशनल्स, कोचिंग्स

और एजेंसी जो है वो ट्रेनिंग देंगी दिल्ली के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यानी कि सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साकेत में भी जो है ये सारी ट्रेनिंग्स जो है वो मिलने वाली है। और इस नई व्यवस्था की सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि कोचेस और एजेंसीज को ये जो है कम से कम 10% जो है वो टैलेंटेड खिलाड़ियों को फ्री कोचिंग देनी होगी, यानी कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं और आपको ट्रेनिंग, कोचेस जो है वो सब वहां पर मिलेंगे। यानी टैलेंट अब सिर्फ सुविधा का मोहताज नहीं रहेगा, साथ ही कोचिंग फीस ट्रांसपेरेंट रहेगी और कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। और हाँ, सुबह और शाम के प्राइम आवर्स जो हैं वो ज़्यादातर मेंबर्स के लिए रिजर्व रहेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिटनेस सिर्फ हॉबी नहीं, लाइफस्टाइल है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इनिशिएटिव सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए जो चैंपियंस है ना उनको तैयार करने के लिए एक जो दिशा है उसमें बड़ा कदम है, क्योंकि मैदान सिर्फ खेल नहीं सिखाता, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और लाइफ की रियल टीम वर्क भी सिखाता है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर, जहां एनर्जी भी है, पॉजिटिविटी भी है और दिल्ली की हर यूजफुल अपडेट भी है।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप कोमल के साथ। और दिल्ली वालों, अगर आपको थिएटर स्टोरी टेलिंग और लाइव परफॉर्मेंसेस पसंद हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी

एनएसडी रंगमंडल 8 मई से यानी आज से 14 जून 2026 तक अपना एनुअल समर थिएटर फेस्टिवल लेकर आ रहा है। यानी 38 दिनों तक चलने वाले इस रंग महोत्सव में जो है वो 10 अलग अलग स्टाइल और रंग रूपों के नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होने वाली हैं और ये फेस्टिवल की ओपनिंग होगी रंगमंडल की नई प्रस्तुति अक्स तमाशा से, जिसका निर्देशन किया है मशहूर रंग निर्देशक भानु भारती ने। स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आइए दोस्तों और देखिए थिएटर की दुनिया में इमोशंस जो है ना वो लाइव मिलते हैं, जाइए बड़ा मजा आएगा। दोस्तों थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये समाज का आईना भी होता है और इमोशंस की वर्कशॉप भी और जिंदगी को समझने का एक खूबसूरत तरीका भी। इस बार एनएसडी के समर थिएटर फेस्टिवल में कई शानदार और जो चर्चित प्ले हैं वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें ताजमहल का टेंडर, बंद गली का आखिरी मकान, माहिरी मैं कैसे कहूँ, तमस, अंधा युग, बाबूजी, आधे अधूरे और समुद्र मंथन जैसे प्ले जो हैं वो शामिल हैं। यानी कॉमेडी, सोशल मीडिया, सोशल ड्रामा, माइथोलॉजी और इंटेंस इमोशंस, सब कुछ आपको इस फेस्टिवल में मिलने वाला है। और ये फेस्टिवल का समापन जो है ना वो 14 जून को होने वाला है समुद्र मंथन प्ले के साथ। यानी आपके पास टाइम तो बहुत है, आप कभी भी प्लान कर सकते हैं, जैसे आज के बाद से आपका वीकेंड शुरू हो रहा है तो आप तब भी जा सकते हैं। कुछ कहानियां जो है ना वो पढ़ी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है और थिएटर जो है ना वो वही एहसास होता है। तो दोस्तों अगर रील और स्क्रीन से थोड़ा अलग कुछ सोलफुल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस गर्मी में आप थिएटर का टिकट ज़रूर कटाइएगा, क्योंकि स्टेज पर जब कहानी सांस लेती है ना तो ऑडियंस सिर्फ देखती नहीं है बल्कि जीती भी है। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6, जहाँ हर बात में थोड़ा कल्चर, थोड़ा कनेक्शन और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। और दोस्तों आज है 8 मई और हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इस जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जागरूक किया जा सके। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर जो है वो पर्याप्त रूप से हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है और मरीज को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स के जरिए आती है, इसलिए अवेयरनेस और टाइमली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी माना जाता है। और इस साल वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026 की थीम है हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन, यानी जो लोग अब तक डायग्नोस नहीं हो पाए हैं उन्हें पहचानना और जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें सपोर्ट देना। अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है और यही सबसे बड़ी मेडिसिन भी है। दोस्तों थैलेसीमिया कोई इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं है, ये पेरेंट्स कैरियर अगर हों इसमें तो बच्चों को इसका ख़तरा बढ़ जाता है, इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो प्री मैरिटल और प्री नेटल स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं ताकि समय रहते सही और पूरी जानकारी मिल सके। और जब बात होती है हेल्थ की, हेल्थ अवेयरनेस की, तो रेडियो साथ कैसे ना हो, ये कैसे हो सकता है। इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर जुड़िए एक खास लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ जहां हम बात करेंगे थैलेसीमिया जैसी गंभीर लेकिन जागरूकता से संभाली जा सकने वाली बीमारी पर। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। अगर आपके मन में थैलेसीमिया से जुड़ा कोई भी सवाल है, जैसे सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट, ब्लड स्क्रीनिंग या केयर या कोई और, तो आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में शाम 3 बजे से 4 बजे तक आप जानते ही हैं कि हम रोज़ाना आप सभी के लिए ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं। टेलीफोन नंबर्स हमारे वही रहेंगे 2342108080 और 2342108082। अगर आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। दोस्तों सही जानकारी जो होती है वो बेहतर सेहत की पहली सीढ़ी कहलाती है। अवेयरनेस रखिए क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। तो दोस्तों आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, अपने परिवार से, हम से, इस समाज से कि अवेयरनेस फैलाएंगे, मिथ्स जो हैं उन्हें हटाएंगे और रेगुलर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग को सीरियस लेंगे, क्योंकि सही जानकारी कई जिंदगी बचा सकती है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ कोमल।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और ये आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर 102.6 पर। घड़ी का समय मिला लीजिए, जी हाँ 8:55 और 26 सेकंड हो चुके हैं, और ये समय हो चुका है कि मुझे इशारा कर रहा है कि मैं जो ये माइक है ना, ये हैंडओवर कर दूं भावना को, क्योंकि वो लेकर के आने वाली हैं अगला प्रोग्राम आप सभी के लिए, जो दौड़ती दौड़ती आ चुकी हैं स्टूडियो में, क्योंकि हमारे यहाँ आज प्रसार भारती ने जो मैराथन जो ऑर्गेनाइज की थी उसमें वो भी पार्टिसिपेट लेकर के अब दौड़ती हुई स्टूडियो में आ चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें प्रेजेंट करना है आप सभी के लिए प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, जी हाँ, जिसमें 3 रेट्रो सॉन्ग भी आप सुनने वाले हैं। तो कोमल को दीजिए यहाँ पर इजाज़त, फिर होगी आप सभी से मुलाकात रेनबो की तरंगों पर यहीं 102.6 पर। फिलहाल कोमल को दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर 102.6 FM पर मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी दोस्त भावना एक बार फिर से। वेरी गुड वाली मॉर्निंग, पॉजिटिव वाली मॉर्निंग, खुश हो जाओ मेरे दोस्तों। इट्स अ फ्राइडे, शुक्र है, शुक्रवार है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दिल के तराने, गाने नए पुराने, आपका अपना फेवरेट शो है जहाँ नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक बजता है, साथ ही साथ तड़का होता है 3 रेट्रो सॉन्ग्स का, बीच बीच में यानी कि एवर ग्रीन गोल्डन सॉन्ग्स आपको सुनवाते हैं। और इस समय क्योंकि 9:01 हो

रहे, सड़कों पर रफ्तार बढ़ रही है, ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को कहीं जल्दी है, किसी को ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी है, वीकेंड शुरू होने की एक अलग ही खुशी है। तो इस हसल भसल बारी सुबह में अगर साथ मिल जाए शानदार बॉलीवुड म्यूजिक का, तो दिन अपने आप खूबसूरत बन जाता है और अपने आप बन जाता है अमेजिंग। और तो बस खूबसूरत एहसास के साथ दिल के तराने गाने नए पुराने सुनते रहिए 102.6 एफएम पर, क्योंकि अगले एक घंटे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक बजने वाला है। नए गानों की ताजगी भी रहने वाली है, पुराने गानों की मिठास भी रहने वाली है। और ख़ास बात यह है कि हर 15 मिनट में आपके लिए लेकर आऊँगी एक एवरग्रीन गोल्डन मेलोडी जो दिल को आपके छू जाएगी और यादों को फिर से गुनगुना देगी। तो चाहे आप काम पर निकल रहे हों इस समय, घर पर चाय का मज़ा ले रहे हों, या बस सुबह थोड़ा और खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्टे ट्यून टू 102.6 एफएम बिकॉज ये है यू लिसन टू द बेस्ट म्यूजिक ऑफ बॉलीवुड।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: तो मैं और तू का साथ तो हमेशा हमारा और आपका बना ही हुआ है। आप सुन रहे दिल के तराने, गाने नए पुराने 102.6 एफएम में आने की मेरे साथ भावना के साथ। और अब वक्त हो चला है एक ऐसे रोमांटिक गीत का ना, जिसकी धुन में शरारत भी है, जिसकी धुन में नज़ाकत भी है, और ये एवरग्रीन गाना है, आपको बहुत पसंद आने वाला है मुझे पता है। और आपको साथ ही बताऊँ कि कभी कभी ना दिल में बहुत कुछ कहना चाहता है आपका दिल, लेकिन शब्द थोड़ा हिचक जाते हैं और फिर गाने ही दिल की बात कह देते हैं। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, किशोर कुमार और आशा भोसले की दिलकश आवाज़ों से सजा हुआ ये खूबसूरत गीत आज भी उतना फ्रेश और प्यारा लगता है। तो चलिए प्यार और मुस्कुराहट के साथ, इस एहसास के साथ सुनते हैं ये सदाबहार गीत। सुनते रहिए आप दिल के तराने, गाने नए पुराने, सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM पर।
1: तू तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है,
1: कह

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: Rica Ustara, Rica Stararira, Kukaru, Rica Ustara, Rica Stararira, Kikaru.

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, 102.6 FM पर नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक बज रहा है। और अब पेश है आपके लिए एक और रेट्रो गाना, और प्यार और संगीत से सजा है ये बेहद ही खूबसूरत नगमा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का ये सदाबहार गीत आशा भोसले और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में एक अलग ही जादू बिखेरता है। वेनिस की खूबसूरत वादियों में फिल्माया गया ये गाना आज भी अपने रोमांटिक अंदाज और मधुर धुन की वजह से लोगों का बेहद पसंदीदा गाना बना हुआ है। तो आइए प्यार भरे इस एहसास को महसूस करते हैं इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में, और साथ ही साथ यू स्टे ट्यून्ड टू 102.6 FM रेनबो, दिल के तराने, गाने नए पुराने।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और अब वक्त आ गया है कैसे

गीत को सुनने का ना दोस्तों, जो दोस्ती की खूबसूरत रिश्ते को दिल से सलाम करता है। कुछ रिश्ते ना खून से नहीं है, सांसों से बनते हैं, और जब साथ हो सच्चे दोस्त का तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। तेरा जैसा यार कहाँ, और कहाँ ऐसा याराना। फिल्म याराना का ये सदाबहार गीत किशोर कुमार की आवाज़ में दोस्ती की गर्माहट और अपनापन बेहद खूबसूरती से महसूस करता है। तो चलिए अपने उन खास दोस्तों को याद करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: तो दोस्तों, यूं ही गुनगुनाते मुस्कुराते हम आप पहुंचे दिल के तराने गाने नए पुराने के आज के इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव पर। उम्मीद है कि इन एवरग्रीन नगमों ने आपके दिल को छुआ होगा, पुरानी यादों को फिर से जगा दिया होगा और इस लंबे वीकेंड की शुरुआत जो होने जा रही है अब से कुछ ही शाम के बाद से, ये जो सैटरडे संडे आने वाला है वो आपको और ख़ास बना देगा। तो आप मुझसे भावना को दीजिए अनुमति, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब शुरू का रंग बदलेगा, अंदाज बदलेगा, आकांक्षा अपनी आकांक्षाओं के साथ आएंगी, एक नया म्यूज़िकल एहसास के साथ वेस्टर्न म्यूज़िक होगा अगले एक घंटे आपके साथ, और आपका साथ देने वाली हैं आकांक्षा और सुनाएंगी आपको एक घंटे वेस्टर्न म्यूज़िक। तो जुड़े रहिए 102.6 FM के साथ। हैव अ वंडरफुल Friday and the coming weekend, and take very good care of yourselves. Stay happy, stay protected, and stay hydrated in this summer.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट

पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: वेलकम बैक एंड यू आर ट्यून्ड इनटू 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक कार। आई ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस। Colonel Shiva from Trichy writes that happy 90th birthday to Akashwani and Prasar Bharati. Great going with enhancing number of listeners. Thank you so much, sir, and we are humbled. Now, let's trade some Delhi heat for some Louisiana breeze. Just forget your worries and stress for some time and tap into this 60s rhythm. Here is Jambalaya for you.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है। यह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।

0: की धड़कन था, है और रहेगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। और आज की सुबह इस फ्राइडे मॉर्निंग मैं हूं आपके साथ रंजन। तो फिर गपशप लगाएंगे बॉलीवुड की खबरों की, आपको गलियों में ले जाएंगे और बताएंगे कि आपके स्टार्स क्या करते हैं जब वो फिल्मों के लिए शूट नहीं कर रहे होते, या फिर आजकल कौन सी फिल्मों की तैयारी हो रही है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और आसपास।

जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपने महफिल जो है उसे लूट लिया, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है धुरंधर सीरीज ने, धुरंधर वन एंड धुरंधर टू ने, जो बॉक्स ऑफिस पर लगातार एक के बाद एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और लोगों को लगा कि यस दे वांट मोर। तो फिर धुरंधर के मेकर्स ने भी सोचा है कि क्या आपको लगता है कि धुरंधर 3 इज इन द मेकिंग? आई मीन दे जस्ट टीजिंग दिस थॉट, आई मीन जस्ट इमेजिन अगर आप सही में रणवीर सिंह के फैन हैं और आपको इस तरह की मार धाड़ वाली फिल्में पसंद हैं तो आई थिंक वाई नॉट, है ना। तो वैसे देखिए सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर एक फिल्म अच्छी बन जाती है तो फिर उसकी सीक्वल आती है और कई दफ़ा प्रीक्वल भी आती है और उसके बाद झड़ी लग जाती है, जैसे कि अभी इस बारे में हम बता ही रहे हैं कि धुरंधर में हो सकता है धुरंधर 3 इज इन द ऑफिंग, इट्स इन द मेकिंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आप चाहें तो हमें न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से दुनिया भर में सुन सकते हैं। इसे आप डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्टफोन पर और जुड़ जाइए आकाशवाणी के संग, प्रसार भारती के संग। थोड़ी देर में पूछेंगे बॉलीवुड सरताज का सवाल, जुड़े रहें सब हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर बॉलीवुड ट्रेल्स। तो फिल्मी दुनिया के दीवानों, कहना मेरा मानो, अगर आपको भी फिल्मों से है प्यार और आपको रह जाते हैं कुछ ऐसे यादगार पल अपने पास, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और आप हैं हमारे लिए खास। आज का हमारा जो सवाल है वो है बॉलीवुड सरताज

दिल्ली की एक फिल्म आई थी 1990 में, फिल्म थी दिल, ब्लॉकबस्टर हिट, आमिर खान, माधुरी दीक्षित स्टारर, और साथ ही साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, अनुपम खेर, सईद जाफरी और बथेरे लोग थे। तो मेरा सवाल आज बहुत ही सिंपल है, अनुपम खेर साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका फिल्म में नाम क्या था? आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9868107070 पर। हो सकता है आज के इस प्रोग्राम में हम आपको चूज करें, अगर आपने सही जवाब दिया तो देयर इज अ चांस कि आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो फिर भेजिए जल्दी से मैसेज 9868107070 पर।

देखिए आजकल सिनेमा घरों में फिल्में तो लगती हैं, उसके अलावा बहुत सी OTT रिलीज होती हैं जिन्हें आप घर बैठे बड़े शान से देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी सीरीज़ हैं वो भी आप एंजॉय करते हैं, या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ जो बड़े पर्दे के लिए नहीं होती, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मास अपील के नहीं होते, उन्हें एक जगह मिलती है OTT पर, ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट जो आप घर पर ख़रीदते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड। और मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो इसलिए भी पहुँच पाती हैं, या फिर कुछ ऐसी बेकार फिल्में जो

बड़े पर्दे को नहीं देख सकती, उसे किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके ओटीटी पे दिखा दिया जाता है। खैर, इतनी सारी मैंने कहानी इसलिए की क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सारी आज की डेट में ऑप्शंस होती हैं। अभी बिजॉय नामबियार ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तू या मैं, ये मैंने गलती से घर पर देख ली थी। आई डोंट नो, इट मस्ट बी अ थिएटर रिलीज और एन ओटीटी रिलीज, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन एक बात बढ़िया है कि स्क्रिप्ट बहुत ढीली थी, मतलब देखते देखते फिल्म में कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा था, लग रहा था, सो एवरीथिंग वॉज वेरी मच प्रिडिक्टेबल कि अब हाँ ये हो गया, या फिर जो जिस तरह से दिखाया गया मतलब समा नहीं बांध पाए। लेकिन डोंट यू वरी, अभी वो एक एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में पहले बनाई हैं, वजीर, तैश, दंगे, शैतान, और आने वाली फिल्म हम ऐसा होप करते हैं कि ये कुछ बढ़िया स्क्रिप्ट दमदार डायरेक्शन के साथ आप तक और हम तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आज जैसे फ्राइडे है वैसे कल शनिवार है, और आज से ही वीकेंड का माहौल है, वीकेंड का मूड है, और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हफ्ते में एक नहीं बल्कि चार शनिवार हो, ऐसा ही कुछ बता रहे हैं इस गाने में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो, बॉलीवुड ट्रेल्स रंजन के साथ।

जिस तरह से मौसम मिजाज दिखा रहा है तो मुझे लगता है एवरी डे इज अ सनी डे, शनिवार। लेकिन देखिए, मजाक अपनी तरफ है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको सैटरडे का एक फीवर सा चढ़ जाता है, क्योंकि वो उस दिन छुट्टी होती है, जिनकी नहीं होती तो दे लुक फॉरवर्ड टू संडे, और वो ब्रेक का टाइम होता है। और ऐसा ही ब्रेक का टाइम हमारे इस प्रोग्राम में भी आता है। जैसा हम छोटा सा बस ब्रेक लेंगे, यूं गए और यूं लौटे।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जब वी मेट से आपने गाना सुना एंड लेट्स सी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन। और हमारा जो सवाल है बॉलीवुड सरताज का, उसको दोहराने का समय आ गया है। और हमारा सवाल बड़ा सिंपल है, 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल, जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने यू नो दे स्टार्ड इन द मूवी, वो मेन कैरेक्टर थे, प्रोटैगनिस्ट थे। उसके अंदर अनुपम खेर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प रोल अदा किया था। क्या कॉमिक टाइमिंग थी, क्या बातें थी, क्या कंजूस सेठ का उन्होंने सेठ तो नहीं मतलब एक व्यापारी का उन्होंने वो रोल कर रहे थे, और बड़े प्यारे उसके बड़े डायलॉग से, थोड़ी देर में डायलॉग भी बताऊंगा। बस सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है कि जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था फिल्म में, उसका नाम क्या था। आप हमें कीजिए व्हाट्सएप 9868107070 पर, दैट्स 9868107070।

जी ऐसे ही कुछ प्यारी प्यारी सोनी सोनी फिल्में होती हैं जो एक यादगार बन जाती हैं। और एक ऐसी फिल्म जब आई थी सन 2000 में, तो बड़ी ज़ोर शोर से उसके नायक ने कहा कि कहो कहो ना प्यार है, और पूरे देश ने साथ में कहा कि हाँ हमें आपसे प्यार है। और ये उदय हुआ था ऋतिक रोशन का प्रोफेशनली, उनका जो सितारा है वो चमका और वो पहली फिल्म से एक सुपरस्टार हो गए थे घोषित। एंड जस्ट सी सम थिंग्स मैच्योर विद एज, तो वो वैसा ही कुछ इनका भी जलवा है। ऋतिक आज भी 50 पार होने के बाद एक युवा 25-30 साल के हीरो को टक्कर दे सकते हैं। द काइंड ऑफ फिजिक ही है, जिस तरह की फिटनेस पे वो ध्यान देते हैं। और अब मैं इतनी बातें ऋतिक की जब तारीफ में कर ही रहा हूँ, तो ये भी बता दूँ कि हाल ही में हमने ऋतिक को डांस करते हुए देखा किसी वेडिंग फंक्शन में, और वो बार बार इसी गाने पे डांस कर रहे थे कि कहो कहो ना प्यार है, और आसपास सब लोग कह रहे थे हाँ हमें ऋतिक से प्यार है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। स्टेशन है आकाशवाणी रेनबो।

जी आपके मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास लगातार, लेकिन मैं ये कहूँगा स्लो मोशन में नहीं आ रहे, बहुत फास्ट स्पीड में ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट, लेकिन एक दो लोग हैं जो मुझे लगता है जानबूझ के गलत जवाब दे रहे हैं। यू नो स्पाइस है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी आप जानते होंगे बिकॉज अ वेरी सिंपल आंसर ना, उसके बाद भी अगर आप देना चाहते हैं डोंट वरी, आप गलत जवाब दीजिए। लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिए उनमें से किसी एक को हम बनाएंगे थोड़ी देर के अंदर बॉलीवुड का सरताज, तो रहिएगा अपने फोन के पास। हमारे पास बहुत सारे आंसर आए हैं, जैसे विनोद सोनी ने लिख के भेजा है, और उसके अलावा हमारे पास हरीश खुराना ने लिख के भेजा है, एंड बहुत से लोग हैं बिना नाम के भी मैसेज भेज रहे हैं, सो एटलीस्ट ट्राई एंड पुट योर नेम। मोहम्मद फुरकान ने भी हमारे पास मैसेज भेजा है, एंड सूरज ने भेजा है दिल्ली से, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मोर ऑफ पीपल हु बीन सेंडिंग दीज मैसेजेस। लेकिन थोड़ी देर में ही बात करेंगे क्योंकि छोटा सा ब्रेक लेना है और लौट के आते हैं आपके पास। कहीं मत जाएगा, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। हमारे साथ आपके मैसेजेस हैं, किसी ने लिख के भेजा नाम आपने अपना साथ में क्यों नहीं लिखा। आयशा ने लिखा है कि सवाल एक बार फिर से बोल दीजिए। तो ठीक है आयशा, आपकी बात हम रख लेते हैं। हो सकता है आपने थोड़ी देर से ट्यून इन किया हो, इसीलिए हम कार्यक्रम में 2 से 3 बार ज़रूर सवाल पूछते हैं। तो बस अब आखिरी बार ये पूछ रहे हैं कि फिल्म दिल जो आई थी 1990 में, और इसके अंदर एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी, इसके अंदर अनुपम खेर साहब ने जो किरदार निभाया था, उस किरदार का आपको नाम लिख के भेजना है। नंबर रहेगा 9868107070। थोड़ी देर में बनाते हैं बॉलीवुड सरताज, सुनते रहें आकाशवाणी।

0: जी हमारे आज के बॉलीवुड सरताज का जो सवाल है वो ये है कि अनुपम खेर साहब ने कौन सा किरदार निभाया था, तो हम बताते हैं सही जवाब है दिल फिल्म के अंदर हजारी प्रसाद का जो उन्होंने किरदार या कैरेक्टर निभाया था। और बहुत सारे हमारे पास सही जवाब आए और जिन्हें हम आज सरताज बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ लाइन पे हैं, हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
1: गुड मॉर्निंग सर,
0: आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सृष्टि, मैं पटना से बोल रही हूँ।
0: ओके सृष्टि जी, आज आप बॉलीवुड सरताज बनती हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: अच्छा तो आप बताइए, फिल्म देखी है आपने दिल?
1: जी जी बहुत बार देखी है, उसमें बचपन से देखते ही आ रहे हैं।
0: अच्छा, एक से ज्यादा बार देखी है? पांच से कम देखी है, दस से ज्यादा देखी है?
1: मतलब जब भी टीवी पे आता है तो देख ही लेते हैं सर, क्योंकि बहुत अच्छा इसका गाना है।
0: हाँ, बहुत गाने भी अच्छे हैं और जैसे हमने कहा अनुपम साहब की एक्टिंग बड़ी प्यारी। उसमें एक डायलॉग है जो वो पहले करने से कतरा रहे थे, जब निर्देशक साहब ने कहा कि आपको एक मक्खी को पकड़ना है और उसको, वो आपकी चाय में गिर गई है और उसको आपको चूस के फेंकना है और कहना है कि ऐसी कोई मक्खी नहीं बनी जो हजारी प्रसाद की चाय पी जाए।
1: यस सर, सुने तो हैं और देखे भी हैं, क्योंकि उन्होंने मक्खी को निकाल करके चूस के फेंका था।
0: हाँ हाँ, तो देखिए आपने
1: थोड़ा सा सीन बहुत कॉमेडी था।
0: हाँ मतलब करना नहीं है, क्योंकि ये हाइजीनिकली अच्छी बात नहीं है। मक्खी अगर चाय पी गई तो उसे आप मेहमान समझ के उड़ा दीजिए। वैसे आपने मुहावरा सुना होगा ना कि क्या बोलते हैं, कंजूस मक्खी चूस।
1: हाँ,
0: तो ये उस चीज को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए इस किरदार को घटा गया था और इस तरह से दिखाया गया था। अब समझ में आई आपको एक एक किरदार या फिर एक सीन के लिए कितनी मेहनत लगती है?
1: और बहुत ज्यादा सर।
0: वो मक्खी भी वैसे नकली थी, इसमें किसी मक्खी की जान नहीं गई थी।
1: यस सर, वो तो हम लोग भी जान रहे कि वो इलायची ही होगी, उसका ही दाना होगा।
0: चलिए सृष्टि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आज

0: सुनती हैं सरताज, थैंक यू सो मच।
1: थैंक्स।
0: यूं ही रेनबो के साथ जुड़े रहा करें, और दिन भर हम जानते हैं जिस तरह की दीवानगी है बॉलीवुड फिल्मों के लिए, और आप सभी लोग हमें मैसेज करते हैं। आज जिन लोग नहीं बन पाए वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और एक खबर है शाहरुख खान को लेके, वो बताएंगे बट आफ्टर दिस सॉन्ग। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स रेनबो पर।

एक फिल्म है जो ओटीटी के लिए बनाई जा रही है, उसका ट्रेलर लॉन्च था और उसके लिए जब सैफ अली खान पहुंचे तो वहाँ सलमान भी थे और सैफ ने जमकर उनकी तारीफ की कि एज अ प्रोड्यूसर जो शाहरुख हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं. नो, वंस यू प्रोड्यूस अ मूवी, आपका पैसा लगा होता है या फिर और भी तरह से आप टेक्निकली प्रोडक्शन के लिए देख रहे होते हैं, तो जहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर आप सब छोड़ देते हैं, अब उसके बाद डायरेक्टर चाहे बजट को कम ज़्यादा करे या फिर क्रिएटिव फ्रीडम लेना चाहे, जिस तरह के सेट्स लगाना चाहे, जैसे ही तरीक़े से शूट करना चाहे, देन ही डजेंट इंटरफेयर टू मच इन टू द प्रोजेक्ट. ये कहना है सैफ अली खान का. वैसे होना भी यूं ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं होता कि प्रोड्यूसर का कितना पैसा और समय लग रहा है, और वो बेतहाशा खर्चा करते चले जाते हैं और फिल्म ओवर बजट हो जाती है.

जी हाँ, अब बस समय ज्यादा नहीं है क्योंकि स्टूडियो में आ गई आकांक्षा। अगला कार्यक्रम रहेगा 12:05 से फ्लाइट कूल। लेकिन जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार देखिए बहुत होक्स न्यूज़ यानी कि झूठी खबर फैल जाती है। ऐसी खबर फैली कि शक्ति कपूर साहब जो हैं ही इज़ नो मोर, ऐसी खबर फैली तो इसका खंडन करने के लिए शक्ति कपूर साहब खुद आए इंटरनेट पे और बाकायदा उन्होंने वीडियो बना के बताया कि भाई टाइगर अभी जिंदा है और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं वो इससे बाज आए, नहीं तो आई विल हैव टू रिपोर्ट दिस। लेकिन देखिए कपूर साहब, मैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूँ और क्राइम मास्टर गोगो तो क्या बढ़िया आपका अंदाज है। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हेल्दी एंड बढ़िया लाइफ आप आपकी रहे, एक लंबी उम्र आपको मिले, और हम यही चाहते हैं कि आप और भी फिल्मों में काम करते रहें। ऐसी खबरें उड़ती रहती हैं, उन्हीं के लिए उड़ती हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, बट जो भी शक्ति कपूर के फैंस हैं रेस्ट अश्योर्ड ही इज ऑल फाइन एंड फिट। फिलहाल बस इस खबर के साथ रंजन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है

कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। 23 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ।

0: आकर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: वेलकम बैक एंड यू आर ट्यून इनटू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो एंड दिस इज योर शो प्ले इट कूल। I have a message from Roland from Delhi who says my favorite good food destination could well be Bagunti, the Andhra kitchen or a biryani restaurant. Oh, and how can one forget the famous bakery in CP? Well, Roland, I'm sure you love your food. And he's requested a song, any song by The Police. So this one is for you, Roland.

0: That was Hole Again by Atomic Kitten. Now I'm gonna slip into a very short break, so don't go anywhere and stay tuned.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: वेलकम बैक टू योर कूलेस्ट शो प्लेट कूल, ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी रेनबो। द नेक्स्ट ट्रैक इज गोइंग टू रिमाइंड यू ऑफ द डे टुडे एंड दैट द वीकेंड इज फाइनली हियर। So imagine having a vibrant, bustling rooftop lunch right now with this song playing, Friday by Goldspot.

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेलकम बैक एंड यू आर ट्यून इन टू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो एंड ऑन योर शो प्ले इट कूल। नेक्स्ट अप अगेन इज अ बिट ऑफ मूवी मैजिक, रिटन स्पेसिफिकली फॉर द 2022 म्यूजिकल कॉमेडी लाल लाल क्रोकोडाइल। Here is Heartbeat by Shawn Mendes.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके

साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: मेरा नाम स्नेह कपूर है, मैं 26 साल से इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ एज ए वॉलंटियर कैंसर अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ। फ्राइडे को हम डिफरेंट कैंसर्स पर रेडियो टॉक देते हैं। आज हम ओवेरियन कैंसर, अंडाशय का कैंसर के बारे में बात करेंगे। हमारे आज के स्पॉन्सर है पंचशील फाउंडेशन। बचपन में से एक औरत को ओवेरियन कैंसर होता है, यह जानलेवा कैंसर है। इसके अर्ली सिम्टम्स बहुत मामूली होते हैं, पेशेंट समझ नहीं पाता क्या प्रॉब्लम है, जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, यह फैल चुका होता है। ओवरीज, स्त्रियों के गर्भाशय के दोनों ओर नालियों के किनारे 3 मिलीमीटर बादाम की शेप में 2 ग्रंथियां होती हैं। यहाँ से महीने में एक बार अंडा निकलकर गर्भाशय में जाता है, पुरुष के स्पर्म के साथ मिलकर बच्चा बनना शुरू होता है। अंडाशय यानी ओवेरियन कैंसर के शुरुआत लक्षण इतने मामूली होते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है इंसान, जैसे पेट में कॉन्स्टेंट फीलिंग होती है कि पेट भरा हुआ है, ब्लोटिंग फील होती है, कम खाने से ही पेट भरा होने की फीलिंग आती है, वेट लॉस, वीकनेस, पेट में स्वेलिंग, पेट और पेल्विक में डिस्कम्फर्ट, पेल्विक और एब्डोमन पेन, बार बार पेशाब करने की अर्जेंसी, बैक पेन, माहवारी में बदलाव, 2 माहवारी के बीच में ब्लड स्पॉटिंग, सहवास के दौरान दर्द फील होना, खून आना, थकावट फील होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो दवाई से ठीक ना हो, जांच कैसे करें, क्लिनिक टेस्ट, डॉक्टरी जांच, पेल्विक एग्जामिनेशन, इमेजिंग टेस्ट होता है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट फॉर ट्यूमर मार्कर्स जैसे CA125। ओवेरियन कैंसर में ब्लड में प्रोटीन बढ़ जाता है, ये टेस्ट एबनॉर्मलिटीज को बताते हैं। डेफिनेट डायग्नोस बायोप्सी से पता चलता है, एक पतली तार से छोटे कैमरे को यूट्रस में डालते हैं, जांच करते हैं, सब नॉर्मल है, कोई ग्रोथ, ट्यूमर, लंप तो नहीं, फ्लूट

और टिश्यू टिश्यू निकाल कर पैथोलॉजिस्ट चेक करता है, डॉक्टर पेल्विक यूट्रस ओवरीज वेजाइना चेक करते हैं, टीबीएस अल्ट्रासाउंड साउंड वेव से ओवरीज को विजुलाइज करते हैं, एक्यूरेट जांच करते हैं, एमआरआई से एब्डोमन पेल्विक की डिटेल इमेज लेते हैं, कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में तो नहीं फैल गया, कारण जेनेटिक टेस्टिंग 25% ओवेरियन कैंसर इनहेरिटेड जीन जैसे BRCA1 BRCA2 जीन से होते हैं, एवोल्यूशन डैमेज जैसे बार बार एवोल्यूशन डैमेज हो उससे भी ओवेरियन कैंसर हो जाता है, कई बार फेलोपियन ट्यूब से शुरू होकर ओवरीज तक चला जाता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? अराउंड 60 की एज में ज़्यादा खतरा रहता है, जो औरतें कभी प्रेग्नेंट ना हुई हों, जिनकी महावारी 15 साल से पहले हो गई हो, या लेट मेनोपॉज बचपन की हो गई हैं मगर अभी मेनोपॉज यानी कि महावारी बंद नहीं हुई, या जिन औरतों ने HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक ली हो, लाइफस्टाइल जैसे ओबेसिटी मोटापा शरीर में ज़्यादा एस्ट्रोजन और स्मोकिंग, दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर के लिए। बांझपन या लेट बच्चा पैदा हुआ हो, फैमिली हिस्ट्री फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर कोलेक्ट्रॉल कैंसर, हम सब में BRCA जीन्स होते हैं। इट इज़ म्यूटेशन इन जीन विच कॉजेस कैंसर। ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देर करने से दूसरे ऑर्गन्स तक फैल जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी है, कुछ पार्ट सर्जरी करके हटा देते हैं, कभी कभी दोनों ट्यूब्स या ओवरीज को भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कैंसर किस स्टेज तक है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है। लेट होने पर कैंसर लिम्फ नोड्स तक जा सकता है। सर्जरी के बाद कीमो देते हैं जिससे कि बचे हुए सेल को मार सकें। स्टेज वन कैंसर के लिए सर्वाइवल रेट 5 साल है, इट कैन वेरी। जो पेशेंट 5 से 10 साल ठीक रहते हैं दे आर डिक्लेयर्ड क्योर्ड। हमारा हीलिंग सेंटर प्रशांति ग्रेटर कैलाश में है, यहाँ कैन किड्स जिनको कैंसर हो चुका हो या ट्रीटमेंट चल रही हो, हफ्ते में एक दिन बच्चे यहाँ आते हैं, उनको ड्राइंग पोट्री आर्ट एंड क्राफ्ट सॉन्ग्स सब कुछ सिखाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी सिखाते हैं और उनको खाना भी देते हैं, मेन त्यौहार मनाते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं। हमारे पास कंप्रेशन मशीन भी है, जिन औरतों की ब्रेस्ट सर्जरी के बाद बाजू सूजी हुई हो तो यह इस मशीन से ठीक कर सकते हैं, जिनकी ब्रेस्ट रिमूव हुई हो उनको प्रोसेसेस यानी आर्टिफिशियल ब्रा भी देते हैं। डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर और डिफरेंट कैंसर के बारे में बताते हैं। हमारा एक यूनिट है कैंसर सहयोग, ये कैंसर सर्वाइवर का सपोर्ट ग्रुप है, बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, पेशेंट्स सर्वाइवर्स केयर टेकर जो कैंसर का दर्द झेल चुके होते हैं उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, गाइड करते हैं, नई होप जगाते हैं। हमारा नो टबैको डे अप्रैल में होता है, स्कूल के बच्चों में कंपटीशन होता है

0: मेन पर्पस होता है तम्बाकू पान मसाले से दूर रहना चाहिए, ये जानलेवा है। नेक्स्ट डाइट, डाइट का कैंसर में बहुत बड़ा रोल है। आजकल लोग फास्ट फूड खाते हैं जो कि मैदे से बना हुआ होता है। मैदा हमारे शरीर, हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स के साथ चिपक जाता है और इसका टॉक्सिन्स के ऊपर कैंसर फलता फूलता है। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और हरी सब्जियां झाड़ू का काम करते हैं और ये हमारे पेट को क्लीन करते हैं। अगर हमारे पेट में गंदगी नहीं है, पेट साफ है, तो कैंसर सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारा एक डिटेक्शन सेंटर है, यूनिट 42 बाबर रोड में, मंडे से फ्राइडे 9:30 से 12:30 तक जाकर मात्र 300 रुपया देकर चेकअप करवा सकते हैं। अप्रैल के महीने ओवरीज की जांच फ्री होती है। यह थिंकिंग गलत है, तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। जब आप स्वस्थ हैं तब चेकअप करवाना चाहिए। जितना जल्दी रोग पकड़ में आएगा उतना पूरा ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी भी बीच में ट्रीटमेंट अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी ट्रीटमेंट करवाकर एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर 9910516582 है। यहाँ पर आप कैंसर के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है राइज अगेंस्ट कैंसर, एंड्रॉयड फ़ोन पर इसे डाउनलोड करके यहाँ पर डॉक्टर डिफरेंट कैंसर्स के बारे में जानकारी देते हैं। हमारी वैन है आशा किरण, ये डॉक्टर्स के साथ कम्युनिटीज़ में जाकर लोगों की जांच करते हैं। एक दिन में 100-100 लोगों की जांच कर सकते हैं। ऑफिस से एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें सतर्क रहना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ खाना खाना चाहिए, ठीक सैर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज़रा सा शक होने पर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आसपास के डॉक्टरों के पास जाकर जिनको कुछ पता ही ना हो उनका इलाज करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना कैंसर फैलता जाएगा और डॉक्टर्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अपना ध्यान हम स्वयं रख सकते हैं। थैंक यू।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और कार्यक्रम शुरू हो गया है मेरा वाला सॉन्ग। मेरा वाला सॉन्ग में आप अपनी पसंद के गीत की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर। तो फिर फिल्म का नाम, गाने के बोल और अपना नाम लिख के भेज दीजिए हम तक। हो सकता है अगला गाना आप ही की पसंद का हो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे वाला सॉन्ग और आपकी पसंद के गाने बजाने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। तो फिर झटपट से भेजिए अपनी रिक्वेस्ट, जैसे हमें भेजी है दिव्यांशु यादव, आशुतोष, विनायक, कार्तिके और वसुंधरा नंदिनी जी ने भी, और दिग्दर्शन गौड़ और श्रीहरवर्षन हर्षवर्धन यादव जी ने। तो भाई एक ही मैसेज के अंदर इतने सारे नाम डालो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। एक ही मैसेज के ऊपर काफ़ी बोझ आ गया आपके नामों का। और ये कह रहे हैं जान तेरे नाम से गाने के बोल, छुप छुप कर मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा, ये गाना सुनना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी और भी रिक्वेस्ट हैं, हम साथ साथ कुछ एक नाम भी पढ़ते चले जाएं और रिक्वेस्ट आपकी देख लेंगे थोड़ी देर में। किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी से हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा जनकपुरी दिल्ली से हमें इस समय सुन रहे हैं। एंड मनोज कुमार, अंजलि कुमारी, हिमांशी कुमारी, प्रियांशी कुमारी, ये दिल्ली संत

अगर से हमें सुन रहे हैं और प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया सॉन्ग सुनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो क्यू करके रखा है वो गाना इन सभी लोगों की पसंद का, जो भी मैंने बड़े सारे नाम लिए थे, छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। आप भी हमें कीजिए मैसेज 9868107070 पर और पाइए अपनी पसंद का गीत।

जी हाँ, छुपाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं आपको प्यार है आकाशवाणी रेनबो से और तभी आप सुनते हैं हमारे सभी प्रोग्राम्स। और अभी चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग, जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु ने, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं हौले हौले।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक मैसेज आया हमारे पास, लिखते हैं मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता कह रहे, मैंने इनकी मिसेस का नाम नहीं पढ़ा है, मैंने तो आपका भी नाम नहीं पढ़ा है सर, कहाँ सुन लिया आपने अब जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने आप दोनों का नाम पढ़ दिया। वैसे आपका ये स्टाइल हमें बड़ा पसंद आया, क्योंकि आप कह रहे हैं आपको हो सकता है आज खाना नहीं मिलेगा अगर हमने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन हमने तो आपका भी नाम नहीं लिया, कहाँ सुन लिया ठीक है। और बहुत से लोग हैं देखिए जो मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भी गाना जो आप बजाएंगे उसमें हमारा नाम पढ़ दीजिएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, वैसे कोशिश कीजिए आप भी कोई अपनी पसंद तो बताइए, क्योंकि कार्यक्रम का फिर वो जो मकसद है जिसका नाम ही है कि मेरा वाला सॉन्ग, वो कैसे खरा उतरेगा। आदाब लिख के भेजा हमारे पास कस्बा गन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया एंड ताहिरा ने, और भी बड़े सारे नाम आज तो आपने लिख दिए हैं, कमाल ही कर दिया है।

0: आपने भी ये कहा है कि कोई भी सॉन्ग जो बजाएं उसमें हमारे को शामिल कर दीजिएगा, तो हम अगला गाना जो बजाने जा रहे हैं उसमें खुद को आप शामिल कर लीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो उसके साथ आप डांस भी कर सकते हैं जो आपका मन करे, और थोड़ा थिरक सकते हैं। और ये गाने की जो रिक्वेस्ट की है इनका नाम मैं जरूर पढ़ दूं साथ के साथ।
1: सर की जो सर से वो धीरे धीरे,
0: हेलो ब्रदर फिल्म से ये गाना सुनना चाहा है।
1: धीरे धीरे
0: हर्ष हरवंश, ए के पांडे, डिस्ट्रिक्ट पन्ना, मध्य प्रदेश से।

जी हाँ, और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस भी हमारे दिल ले गए, जैसे बहुत से मैसेज लिख के भेजे हैं। लिखा है मोहम्मद रागीब रेजा ने, मोहम्मद दानिश खान ने, अररिया बिहार से लिखते हैं कि खुदार मूवी का गाना सुना दीजिए। आई विल रियली ट्राई, आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन मैंने देखिए अभी जिनका गाना क्यों करके रखा है, अगली रिक्वेस्ट उनका बजने जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे मत पूछिएगा कि क्यों क्योंकि उनकी फिल्म का जो गाना था वो हमारी लिस्ट में हमारे कंप्यूटर जी ने भी सामने बिल्कुल रजामंदी दिखाई है, और जो आपकी पसंद थी वो हमारे पास पाई गई है, इसलिए वो आप तक पहुंचाई गई है। रंजीत मस्ताना रायबरेली से हमारे पास मैसेज लिखते हैं। एक दो नाम यहाँ और पढ़ दूँ, उसके बाद जो यू नो जिनका गाना एक्चुअली चूज़ करके रखा है उनका नाम आखिर में ज़रूर लेंगे हम, और फिर उनका पसंद का गाना भी हम प्ले करेंगे। कुलार रोड भोपाल से राम बाबू मालविया, मनीषा मालविया लिखते हैं, दीवाना का कोई भी सॉन्ग चला दीजिए सर। फिलहाल जो हम रिक्वेस्ट जिनकी पूरी करने जा रहे हैं वो हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी एंड सिमरन मुखी, जो नहीं रहते बिल्कुल दुखी और किसी को भी नहीं रहना चाहिए। डिस्को डांसर फिल्म का ये सॉन्ग, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट अ रिक्वेस्ट, क्या चीज आपने हमारे से प्ले करवाई। बपी दा बपी लहरी जी की आवाज में

मुझे भी एक्चुअली आज बबीता याद आ गए जैसे ही मैंने गाना चूज किया आपका, क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिल चुका हूँ और वो क्षण मुझे आज भी एकदम से याद आ गया, वो इमेज, वो उनकी चकाचौंध वाली पोशाक और उसके ऊपर ढेर सारा सोना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। हमारा ये सॉन्ग और ये गाना सुनते सुनते आप मत जाना सोना। पहनने में अच्छा लगता है एज अ गहना सोना। नंबर रहेगा 9868107070। कर दीजिए हमें व्हाट्सएप अपनी चॉइस के साथ।

जी, अगर आपको भी कोई गाना, कोई अपना पुराना दोस्त, कोई ऐसा गाना जिसको सुन के आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारी जो यादें होती हैं वो म्यूज़िक के इर्द गिर्द ही बुनी जाती हैं। जब हम कुछ अच्छे समारोह में होते हैं, अपने दोस्तों की कंपनी में होते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं और कुछ साल बाद पीछे मुड़ के वो गाना वापस अचानक से सुनते हैं तो याद आता है कि हाँ, उस दिन हम कुछ लोग बैठे थे, डांस कर रहे थे और उस गाने पे कितना हमने एंजॉय किया था। ऐसा कोई गाना हो तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, रंजीत मस्ताना जी, आप गौर से हमारे साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला गाना हम आपका बजाने जा रहे हों। ऐसा हो सकता है, मतलब मैं प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेके आएंगे, लौट के आएंगे और देखते हैं क्या इनकी पसंद का गाना मैं प्ले कर पाऊँगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

स्टूडियो घड़ी कह रही है कि 1:50 हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जितने भी गाने हम इसी समय के अंदर आप समेट सके और आप तक पहुंचा सके तो हमें बहुत खुशी होगी। तो रंजीत मस्ताना जी, आपकी पसंद का गाना हीरो फिल्म का प्यार करने वाले, कभी डरते नहीं, 9868-10-70-70 हमारा वो नंबर है जहां पर आप डिमांड करते हैं अपनी पसंद का गाना, मेरे वाला सॉन्ग, वो चॉइस जो आपके दिल के करीब है। तो फिर झिझके नहीं, शर्माए नहीं, आगे बढ़ें और मैसेज करें, पहुंचा दें व्हाट्सएप 9868-10-70-70 पर।

सॉन्ग रिक्वेस्ट करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो हमारा स्टेशन ट्यून करते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। तो इट्स जस्ट, ये तो तकिया कलाम है, जुड़ गया साथ में, अब आप समझ सकते हैं। खैर देखिए, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी, आपने

0: मुकेश सिन्हा लिख रहे हैं, धुरंधर फिल्म का कोई गाना सुना दीजिए। सीमा मेरठ से लिख रही हैं, आंखियों के झरोके से गाना सुनना चाहते हैं। खैर, जो हमने अभी रिक्वेस्ट आपकी अलग से निकाल के रखी है, वही हम सॉन्ग आपके लिए बजाने जा रहे हैं। बागबाँ फिल्म से चली चली फिर चली चली।
1: Groove.

जी हाँ, चली चली फिर चली चली चली इश्क की हवा चले। अच्छा, चलने से मुझे याद आया कि अब मेरा चलने का समय आ गया, क्योंकि वीर धवन आ गए हैं स्टूडियो में, बहुत ही खास कार्यक्रम लेके आए हैं। आज है आशियाना में, बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। टॉपिक रहेगा जनगणना 2027। हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सौम्या सौरभ IAS, इनका जो डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और हमारे दूसरे सम्मानीय गेस्ट हैं अजय कुमार IAS, और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं अगेन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और हमारी तीसरी मेहमान हैं सौम्यन मित्रा, जॉइंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। तो फिर इतने भारी भरकम मेहमान आए, अभी थोड़ी बहुत जुबान लड़खड़ाना तो बनता ही है। यहाँ पर रंजन को इजाजत दीजिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा इन एयरवेव्स पर। आपको छोड़ के जाते हैं इस सॉन्ग के साथ, यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग। बहुत खास कार्यक्रम है, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, बाय बाय।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम आशियाना लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली लिसनर्स। आज आशियाना में आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि कौन सा टॉपिक लेकर हम आए हैं। आज का टॉपिक है जी हाँ, जनगणना, सेंसिस 2027, जनगणना 2027। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जी हाँ, और उनका परिचय दे देते हैं और उनका स्वागत कर देते हैं। हमारे साथ हैं सौम्या सौरभ, जो कि IAS हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, प्रिंसिपल सेंसिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अजय कुमार, IAS, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, प्रिंसिपल सेंसिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: और हमारे साथ है सौम्यन मित्रा, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसिस ऑपरेशन दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो पर।
2: थैंक यू सर।
1: तो मेरा सबसे पहले यही सवाल है, मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि जनगणना होता क्या है। जनगणना देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति, संसाधनों का सटीक डाटा एकत्र करने का सबसे बड़ा अभियान है। यह सरकार को स्कूल, अस्पताल, सड़क, राशन, रोजगार जैसी योजनाओं की सटीक योजना बनाने, बजट को एलोकेट करने और उसके माध्यम से चुनावी प्रतिनिधि और सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। तो मेरा सबसे पहले अजय कुमार जी, आपसे सवाल है कि जनगणना के ये उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये क्यों करना चाहिए?
2: मैं आपको बताना चाहूँ कि जनगणना हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों की
1: जी
2: गिनती और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है
1: जी।
2: हमारे यहाँ हर एक 10 सालों पे जनगणना होती रही है। सबसे पहला बार 1872 में हुआ था। सिलसिलेवार तरीके से पहली बार सारे इंडिया में 1881 से लेकर अब तक लगातार होता रहा है
1: जी।
2: पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई, कोविड के कारण ये थोड़ा हमारा इस बार का डिले हो गया। इस बार की जनगणना बेसिकली हमारे 2 फेजेज में हो रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त दिल्ली में हमारा सेल्फ इनम्बरेशन यानी सौ गणना का एक फेज चल रहा है, जो पहली बार हो रहा है
1: जी।
2: दो खास बातें कि एक सेल्फ इनम्बरेशन यानी मैं खुद ही ac.census.gov.in पे जाकर मैं अपने बारे में कुछ जानकारी साझा कर सकता हूँ सरकार से, जो कि जनगणना में हमारे लिए सहायक होगी। और दूसरा कि पहली बार ये डिजिटल मोड में हो रहा है। अब से पहले हमेशा हमारे रजिस्टर पर हमारे प्रगणक जाते थे, इनम्बरेटर जाते थे और सुपरवाइजर उसे सुपरवाइज करते थे, वो रजिस्टर पर एंट्री होती थी। पहली बार एक मोबाइल ऐप के थ्रू और सेल्फ इनम्बरेशन में हम खुद ही वेबसाइट पे जाकर हम स्वगणना के बारे में अपने बारे में जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं। ये 2 फेजेज में होता है। पहला फेज एक हाउसिंग सेंसस होता है, जिसमें घर के बारे में, घर की क्या सुविधाएं हैं, संपत्ति की क्या स्थिति है, जिसमें बेसिकली टोटल मिलाकर 34 क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर, जिसे हम वैलिडेट भी करते हैं जो भी करते हैं
1: जी।
2: और सेल्फ इनम्बरेशन अभी फिलहाल हमारा दिल्ली में एमसीडी के एरिया में,
1: एमसीडी के एरिया में
2: 1 मई से 15 मई तक चल रहा है। यानी अभी हम बात जब कर रहे हैं तो इसके दौरान में हमारी सेल्फ इनम्बरेशन की प्रक्रिया हमारी चल रही है और इसमें हम अपनी जानकारी को खुद ही पोर्टल पे हम साझा करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि अभी मैं अपने सुविधा के अनुसार जब भी घर पे बैठा हूँ, आराम से हूँ, अभी मैं अपना डेटा अभी मैं फिल कर सकता हूँ और इस डेटा के साथ में मुझे

0: एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस नंबर को हमें बस संभाल कर रखना है। और जब भी हमारे पास प्रगनक यानी फर्स्ट हाउसिंग का हमारा जो फेज है, हमारे जो इनमरेटर और सुपरवाइजर घर घर जाकर जो आपसे एक बेसिक सी जानकारी लेंगे आपके घर की सुविधाएं और संपत्ति से रिलेटेड, तो वह सारे जब आप ये इसका जो समय होगा जब हमारे प्रगनक जाएंगे घर में आपके सेंसस के फर्स्ट फेज के लिए,
1: जी जी,
0: वो हमारा दिल्ली में 16 मई से 14 जून तक चलेगा। तो उस समय आपको सिर्फ ये आईडी साझा करना है और आईडी साझा करने के साथ वो उसे वैलिडेट करेगा और बस आपका थोड़े में काम हो जाएगा, अदरवाइज आपके समय पर जाकर आप ही से वो ज़्यादा समय लेगा। इसका सेकेंड फेज हमारा एक पॉपुलेशन सेंसस जो हमारा एक्चुअल में हमारा अगले साल फरवरी मार्च के लगभग में चलेगा। तो हमारे बेसिकली ये दो फेजेज हैं। आपने खुद ही बताया कि सेंसस की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी मुख्य नीतियाँ योजनाएं विकास के कार्यक्रम बनते हैं उन सबके आंकड़े के बेस में ही यही है, उनके मूल में यही है कि प्रोग्राम कितने लोगों के लिए बनना चाहिए या प्रोग्राम कितना फायदेमंद होगा, कितने हमारे टारगेटेड पीपल हैं अलग अलग के लिए, इन्हीं के बेस में है। और जैसा कि पिछला सेंसस 2011 में हुआ था तो अब थोड़ा गैप हो गया, तो ये सारे अद्यतन आंकड़े हमारे लिए होने बड़े ही जरूरी है ताकि ये आंकड़े हमारे हमारे परिवार के लिए समाज के लिए बेहतर वे में बनाए जा सके और लागू किया जाए।
1: बिल्कुल लागू किया जा सके। बहुत आपने जानकारी दिया और अभी ये बातों का सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा। और आपका भी कोई अगर दिल में सवाल है, कोई आता है दिमाग में भी सवाल, तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर आपके सवाल जवाब और बातों का सिलसिला और कुछ और जानकारी, मजेदारी जानकारी आपको देंगे अपने इस प्रोग्राम आशियाना में। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में मैं हूँ आपके साथ वीर दमन। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, एक बार उनका परिचय दोबारा दे देते हैं। सौम्या सौरभ जो कि IAS हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और प्रिंसिपल सेंसेस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और हमारे साथ हैं अजय कुमार IAS जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एंड प्रिंसिपल सेंसेस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और सौम्यन मित्रा जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशन दिल्ली। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वो लिया है हमने सेंसस 2027, जनगणना 2027। तो मेरा अगला सवाल जो है वो है सौम्या सौरभ जी से, जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेंसस 2027 में आने वाली गिनती करने वाले जो कर्मचारी हैं तो मैम उनकी पहचान कैसे करें, क्योंकि वो घर पर आएंगे
4: जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सबके लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने हमारे सामने खड़ा किया कि कैसे हम पहचाने एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को
3: जी।
4: तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स हैं ये हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, मेनली टीचर्स हैं और सरकारी विभागों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग हैं। इसके अलावा हम लोग उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक आईडी कार्ड देंगे जो कि उनके चार्ज ऑफिसर्स द्वारा साइंड होगा, और उस के ऊपर एक QR कोड भी रहेगा जिसको हमारे सिटीजन्स स्कैन करके ऑथेंटिसिटी भी चेक कर
3: मगर
4: सकते
3: अगर
4: हैं।
3: शक हो तो मतलब
4: तो पूरा उसके अंदर एक मैकेनिज्म है कि हम चेक कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी जो हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर हमारे यहाँ पर विजिट करेंगे जी।
3: और बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अगला सवाल जो मैं जानना चाहूँगा वो है सौम्या मित्रा जी से कि क्या ये सेल्फ न्यूमरेशन करना ज़रूरी है?
5: अब मैं बता दूं कि सेल्फ एनुमरेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग बढ़ावा देते हैं कि लोग सेल्फ एनुमरेशन करें। सेल्फ एनुमरेशन लोग जब करेंगे और अपना डाटा खुद भरेंगे एट देयर ओन टाइम, अपना सुविधा से अनुसार अपना टाइम के अनुसार डाटा भर लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कर ले तो अच्छा है, क्योंकि इसमें उनका फायदा भी होगा, टाइम का फायदा भी होगा,
3: टाइम बचेगा
5: और अपना हिसाब से करेंगे, अपना ये करेंगे, रिलैक्स मोड में
3: डाटा भी एक्यूरेट आएगा,
5: डाटा भी एक्यूरेट आएंगे वो करेंगे। और जब इन्वर्टर आएंगे घर में तब उनको खड़ा होकर डाटा देने का दरकार भी नहीं पड़ेगा, वो भी उनका सुविधा होगा।
3: ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा, क्या ये सेल्फ न्यूमरेशन जो हम कर रहे हैं उनसे ये सेंसस पूरा हो जाएगा, मतलब अगर सेल्फ इन्यूमरेशन हम कर लेते हैं ऑनलाइन?
5: हाँ, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पूछे हैं कि सेल्फ इन्यूमरेशन कर देने से लोग सोचेंगे कि मेरा काम हो गया है। एक्चुअली सेल्फ इन्यूमरेशन करने से काम पूरा नहीं होता है। सेल्फ इन्यूमरेशन ने आपने अपना डाटा पूरा भर लिए, दैट इज गुड। उसके बाद एक आईडी जनरेट होगा, और सेल्फ इन्यूमरेशन का अजय सर ने बताया है कि 1 से 15 दिन तक ही होगा। उसके बाद प्रगणक घर में जाएंगे, जब प्रगणक आपका घर में जाएंगे आपको खाली वो आईडी शेयर कर देना है, तो प्रगणक डाटा वेरीफाई खुद कर लेंगे और आपका समय बच जाएगा। तो सेल्फ इन्यूमरेशन करने से खाली नहीं होगा, ये डाटा शेयर करना भी जरूरी है, आईडी शेयर करना जरूरी है प्रोग्रामर के साथ।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और सवाल भी हमारे लिसनर्स के आ रहे हैं वो सवाल भी ले लेंगे।

0: जी हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी की पहचान कैसे है उसके लिए ही सेंसिस 2027 ज़रूरी है। और सवाल जवाब भी चल रहे हैं और आज आशियाना में हम यही बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी आए हैं, इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। सौम्या सौरभ जी हैं IAS, अजय कुमार है IAS और सौमिन मित्रा हैं। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और मेरा अगला जो सवाल है, मैं उस पर अगर मैं जाऊं तो उससे पहले हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने भी सेम सवाल पूछा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि घर का मुखिया जो है, घर का मुखिया अगर किसे माना जाएगा, ये उन्होंने सवाल पूछा है। और ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने पूछा है, ये मनमोहन सिंह जी ने पूछा है हमारे से। सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा है कि सर घर पर ही ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए लोकेशन कैसे सेट करें, सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा है।
1: घर पर अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं, अगर आप ac.census.gov.in पर जब जाएंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर OTP के बाद वो आपको लोकेशन पूछेगा। लोकेशन पे आप देखेंगे तो लोकेशन पे एक प्लस का एक सिंबल कहीं बनता हुआ नजर आएगा, एक ऊपर से एक लाइन जा रही है और एक पैरेलल उसे कटती हुई एक लाइन जा रही है। और जो मैप है वो मैप आपके कर्सर, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं और अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपके सिंगल फिंगर से वो मैप मूव करेगा। मैप को मूव करके वो जो प्लस की लाइन जहाँ पे कट रही है वहीं पर आपको इंडिकेट करना होता है अपने लोकेशन को। अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं तो आपको अपने घर का लोकेशन बिल्कुल पता चल जाएगा, और अगर आप अपने घर पे ही बैठकर कर रहे हैं तो वो लोकेशन भी आपको इंडिकेट कर देगा आपके लोकेशन के बाद। और इसके अलावा आप अपने एरिया की जब लोकेलिटी डालेंगे, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ GK1, वहाँ की जब मैंने लोकेलिटी डाली तो उस वो लोकेलिटी भी वो सर्च करके आपको सजेस्ट कर देता है वहाँ पर, और वहाँ पर आपके लोकेशन को फाइन ट्यून करना होता है। इस तरीके से आप अपने लोकेशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ पे है।
0: जैसे इन्होंने रामपुर जिले मंडवा हसनपुर गांव से ये मैसेज भेजा है, तो वहाँ पे ये लोकेट कर सकते हैं कि यूपी में रामपुर जो जिला है उसके मंडवा हसनपुर गांव से ये लोकेशन।
1: बिल्कुल, अगर ये अपने गांव का लोकेशन जब सर्च करेंगे तो लोकेशन वो डिटेल के साथ आपको सजेस्ट कर देगा गूगल मैप, और आप उसे जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको लोकेशन को भी आपको दे देगा। बेसिकली उस लोकेशन में आपके वो प्लस के साइन जो बीच का होता है वो आपको अपने घर का लोकेशन एग्जैक्ट सेट करना होता है। बिकॉज अभी ये सेल्फ इनमरेशन में हमारा हाउसिंग सेंसस चल रहा है तो आपको घर की एग्जैक्ट लोकेशन और स्थिति बतानी होती है इसके अंतर्गत।
2: और इसके साथ मैं थोड़ा सा जोर ऐड करना चाहूंगा, अजय जी का धन्यवाद। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर टाउन एरिया में किसी का घर का लोकेशन एग्जैक्ट नहीं हो रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग का बफर जोन भी है, 100 मीटर का बफर जोन भी है। एग्जैक्ट लोकेशन ना हो तो आगे पीछे हो जाना भी चिंता ना करे, कोई टेंशन ना ले, फिर भी हम लोकेट कर लेंगे, सेंसर में लोकेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
0: तो एक चीज और है आपसे मैं पूछना चाहूंगा अजय कुमार जी, कि अगर किसी ने घर से सेल्फ इन्यूमरेशन कर लिया है तो क्या लेना जरूरी है?
1: अगर आपने अपना घर से सेल्फ इन्यूमरेशन कर लिया है तो पूरा डेटा सबमिट करने के बाद आपको एक आईडी जनरेट होगा जो 11 डिजिट का एक आईडी होता है जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी कहते हैं। वो आईडी आपके मोबाइल नंबर पे SMS पे भी आ जाएगा, चाहे तो आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे आप स्क्रीन शॉट भी आप सेव कर सकते हैं ताकि वो आईडी आपके पास रहे। और जब आपके पास प्रगनक यानी इन्यूमरेटर आपके घर पे आते हैं तो आपको सिर्फ वो 11 डिजिट की आईडी उनसे शेयर करनी होती है जिसे वो अपने सिस्टम में आपके आपके द्वारा सबमिट किए हुए डेटा को रिट्राइव करके वैलिडेट कर देता है हमारे प्रगनक यानी एनुमरेटर।
0: ओके, सौम्या सौरभ जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर SC ID, जैसे सर ने बताया कि SC ID जनरेट हो जाएगी और वो है, अगर ये SC ID सिस्टम में मैच ना करे तो क्या करें?
3: देखिए, अगर SC ID मैच नहीं करती है तो एन्यूमरेटर को पूरा डेटा दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर SC ID अगर हम मिसप्लेस कर देते हैं या भूल जाते हैं, कहीं रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उस सिचुएशन में भी हमें पूरा ही डेटा एन्यूमरेटर को कलेक्ट करना पड़ेगा
0: जी। ओके, और आपसे पूछना चाहूँगा अजय कुमार जी, क्या सेंसस में भाग लेना जनता के लिए वाकई ज़रूरी है?
1: ये अभी आपने बिल्कुल सही पूछा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंसस में एक हमारा सेंसस एक्ट 1948 है
0: जी,
1: उसके अंदर एक प्रावधान है, उसका सेक्शन 8 यह कहता है कि जब भी सेंसस के लिए आपके सामने कोई भी इनमरेटर यानी सरकारी अधिकारी आकर आपसे कोई भी सूचना मांगता है वैलिड तरीके से
0: जी,
1: तो सारी सूचना को अपने बेस्ट नॉलेज के अनुसार, आपको जितना पता है उसके अनुसार आपको, आप उसे देने के लिए लीगली बाउंड है, बाध्य हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जैसा कि अभी आपने भी कहा और हम सभी जानते हैं कि ये एक कानूनी प्रावधान है जिसके अंदर बाध्यता है, बट बिकॉज ये सारे आंकड़े हमारे अपने भलाई के लिए और समाज के विकास के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि उससे ज्यादा हमारी ये नैतिक बाध्यता है कि सेंसस में हम कोऑपरेट करें और जितना हमें पता हो मैक्सिमम उतना हम उन्हें सही सूचना
0: एक्यूरेट डाटा दें,
1: हम उन्हें प्रदान करें।
0: तो दोस्तों एक्यूरेट डाटा देना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर जितनी योजनाएं सरकार बनाती है उसी के आधार पर, इसी डाटा के आधार पर बनाया जाता है और ये हर एक का फ़र्ज़ है कि सही और बिल्कुल सुनिश्चित कर ले कि जो डाटा हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही डाटा है। तो दोस्तों अब एक म्यूज़िकल ब्रेक ले लेते हैं। सर क्या कहते हैं, एक म्यूज़िकल ब्रेक ले लिया जाए?
1: जी बिल्कुल,
0: और उसके बाद आपके कुछ और मैसेजेस लेंगे और बातों का सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों आपके भी अगर मन में कोई सवाल है, दिल में कोई सवाल है, दिमाग में कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। नंबर वही है 9868107070, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने नाम और शहर के नाम के साथ आप भेज सकते हैं। आपके साथ आशियाना में है, दिल से दिल तक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027, जनगणना 2027, जिसमें हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ खास मेहमान में हैं सौम्या सौरभ, जो कि IAS और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, और अजय कुमार IAS।

0: एस हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसेस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और सौमिन मित्रा जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशन दिल्ली। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब किन से पूछें? आप पूछते हैं अगला सवाल अजय कुमार जी से। अजय कुमार जी आप बताएं कि सेंसेस में भाग लेना क्यों ज़रूरी है?
1: सेंसस से जो हम आंकड़े जुटाते हैं उसे देश के लिए बेहतर नीति और योजनाएं बनाने के लिए बेहतर वे में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं।
0: जी जी जी।
1: जनगणना के आंकड़ों से ही पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने स्कूल अस्पताल या सड़कों की जरूरत है जिससे योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके।
0: ओह वाओ।
1: देश के संसाधनों को जनसंख्या के अनुपात में बांटने के लिए सटीक आबादी का पता होना जरूरी है जिससे सही हकदार तक सुविधा पहुंच सके।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा स्वास्थ्य आवास और रोजगार से जुड़ी नीतियां बनाने के लिए आपके पास पॉपुलेशन जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो बिल्कुल बेसिस और आधार का काम करते हैं।
0: जी जी।
1: इसी से हमें जनगणना से ही हमें मदद मिलती है कि कौन सा वर्ग या समुदाय विकास की दौड़ में पीछे रह गया ताकि उनके लिए विशेष नीतियां बनाई जा सके।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने इतनी मतलब हम भी सोचते हैं कि क्यों कई लोग कहते हैं कि क्यों पार्टिसिपेट करना है क्या फायदा होगा, लेकिन इससे जो हमारी ये योजनाएं नीतियां बनती हैं वो इसी आधार पर बनती हैं दोस्तों। तो इसलिए इनमें जो भाग लेना है बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। और अगला जो सवाल है वो है मेरा, वो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा हमारे सौम्य सौरभ जी से कि इसमें अगर हम भाग नहीं लेते हैं तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है?
2: देखिए जो सेंसस का प्रोसेस है ये सेंसस एक्ट 1948 से पूरा गवर्न होता है। सब कुछ इसमें लिखा है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस रहता है। तो इसके अंदर नॉन पार्टिसिपेशन, अगर पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती या सपोर्ट नहीं करती तो उसके लिए पेनल्टीज भी निर्धारित हैं। जैसे किसी में फाइन का भी है, जेल का भी एक प्रावधान है कि
0: अच्छा,
2: अगर जी अगर बहुत सीवियर केस है नॉन कोऑपरेशन का या ऑब्स्ट्रक्शन का या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देने का तो उन सब की भी इसके अंदर पेनल्टीज लिखी हुई हैं। या फिर आप हमारे जो एन्यूमरेटर हैं उनको आने नहीं दे रहे हैं, उस सब केसेस में भी इसके अंदर वो है प्रोविजन। पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आज तक हमें इन प्रोविजंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पब्लिक का सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि इस सेंसस के इस चरण में भी हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का।
0: जी धन्यवाद आपने ये जानकारी दी, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों पार्टिसिपेट करना और भाग लेना क्यों ज़रूरी है, ये भी अजय कुमार जी ने बताया। और भाग ना लेने पर क्या सज़ा हो सकती है वो सौम्या सौरभ जी ने हमें बता दिया। और मेरा अगला सवाल है कि मैं अजय कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि सेंसस में घर की सुविधाएं और जो हम सामान है उनके बारे में क्यों पूछा जाता है?
1: बेसिकली घर की सुविधाएं और सामान अभी हमारा जो फर्स्ट फेज चल रहा है हाउसिंग सेंसस इसी का भाग है। घर की के बारे में जो हम नॉर्मली जानते हैं जैसे आपके सुविधाएं पीने का पानी,
0: पीने का पानी है
1: या टॉयलेट की सुविधा, बिजली, खाना पकाने का ईंधन
0: जी,
1: जो संपत्ति के बारे में जानते हैं कि आपके पास गाड़ियां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज क्या है, मोबाइल क्या है
0: जी।
1: अब आप देखिए कि यदि हम इन आंकड़ों को इकट्ठा करें तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कौन सी सुविधाएं हैं जहां पर की जिनकी कमी हो रही है और जिस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए उन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इंटरनेट के भी बारे में हम इसमें अभी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या आप इंटरनेट आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, लैपटॉप पे है या मोबाइल पे, स्मार्टफोन के थ्रू कैसे है। अब आज के समय में जहां हम हर एक काम में आईटी क्षेत्र में स्मार्ट गवर्नेंस की बात करते हैं और कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि अगर हम कोई भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यानी कोई भी हम दूरसंचार या इंटरनेट बेस्ड अगर हम कोई योजना लाते हैं तो कितने लोग इससे घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास बेसिकली इंटरनेट फैसिलिटी है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं घर की सुविधाएं और आवास से संबंधित ये फिर हमारे सरकारी कार्यक्रम और नीतियों को बेहतर स्वरूप देने ताकि टारगेटेड पीपल तक उस योजना का उचित लाभ पहुंच सके ये काफी जरूरी है उसके लिए।
0: जी तो ये जानकारी इन्होंने बताई। और दोस्तों आप भी अपने कोई सवाल अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना।

0: जी हाँ, हम हैं इंडिया वाले, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज का टॉपिक है सेंसस 2027। जी हाँ, जनगणना 2027। और हमारे साथ मेहमान हैं सौम्या सौरभ जी, आईएएस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अजय कुमार जी हैं आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और सौम्यन मित्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली। तो मेरा अगला सवाल जो है वो अजय कुमार जी से है कि कोई अगर जैसे सेंसस ऑफिसर या कोई आता है तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, और कोई ओटीपी भी मांगा जाता है? जैसे आजकल बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं सुनने में, तो ऐसा कुछ ओटीपी का भी होता है?
1: इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ा अस्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा
0: जी।
1: फिलहाल अभी हमारा सिर्फ इनमें

0: इनोमिनेशन चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली में 1 तारीख से लेकर और 15 मई तक
1: जी।
0: सेल्फ इनोमिनेशन में बिकॉज सूचना आप ही खुद भर रहे होते हैं किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल पर, तो उस पर जब आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो आपको वैलिडेट करने के लिए ओटीपी मांगता है, लेकिन वो ओटीपी आप ही भर रहे हैं और आप खुद ही भर रहे हैं सेल्फ इनोमिनेशन
1: जी।
0: लेकिन 15 मई के बाद 1 महीने के लिए हमारे इनोमिनेटर्स और सुपरवाइजर जब आपके पास हाउसिंग सेंसस के लिए जाएंगे तो अस्पष्ट तरीके से ना आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने हैं और ना ही आपको कोई ओटीपी देने हैं। अगेन मैं रिट्रेट कर रहा हूं
1: जी
0: कि जब हाउसिंग सेंसस के दौरान जब भी कोई हमारा सरकारी अधिकारी आपके पास जाए अपने आई कार्ड के साथ, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा सौम्या मैडम ने बताया कि आप उनके आई कार्ड को जरूर चेक करें, उनके अपॉइंटमेंट लेटर को जरूर चेक करें, उन पर जो क्यूआर कोड लगता है एक बार आप उसे भी देखने अगर आपको थोड़ा भी संदेह अगर होता हो तो आप उसे स्कैन करके उस आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर की जेन्युइनिटी आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। और हमारे जितने भी इनोमिनेटर होते हैं उन्हें कुछ खास ही प्रश्न पूछने होते हैं, उसके अलावा कुछ और प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, और कुछ भी संदेह हो तो आप इस पर अपना क्वेश्चन थोड़ा रख सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसी भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या किसी भी प्रकार की कोई कॉपी आपको देनी नहीं होती, और किसी भी प्रकार का ओटीपी आपने किसी से भी साझा नहीं करना होता।
1: और सर एक सवाल आया है कि इफ वी नीड टू मॉडिफाई एनी डाटा आफ्टर द फाइनल सबमिशन, इज इट पॉसिबल फॉर द न्यूमरेटर टू मेक दोज करेक्शन लेटर ऑन? रविंद्र नाथ मिश्रा पूछ रहे हैं मयूर विहार फेज 3 दिल्ली से।
2: तो इसका मैं जवाब दे दूं, उन्होंने अगर सेल्फ इनोमिनेशन करके डाटा भर चुके हैं
1: जी
2: और वो सबमिट कर चुके हैं तो और जो रेटिफिकेशन करना चाहते हैं या रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो उनके लेवल पे नहीं होगा, लेकिन ज़रूर उनके घर पर जब इनोमिनेटर जाएंगे उनके साथ बैठ के उनको बोल सकते हैं कि मेरा ये गलती हो गया है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो डाटा एक बार ऑनलाइन सबमिटन होने के बाद उनके लेवल पे तो नहीं होगा, लेकिन जब इनोमिनेटर घर जाएंगे उनका वेरीफाई करने के लिए तब अपना डाटा फिर द्वारा वो चेक एडिट करा सकते हैं। तो एडिटेड इज पॉसिबल
1: जी।
2: अभी है
1: सौम्या, सौरभ जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि घर की स्थिति और मालिकाना हक के बारे में क्यों पूछा जाता है?
3: देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसस का जो प्रोसेस है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है हाउसिंग कंडीशन और ओनरशिप स्टेटस को लेकर। पहला तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये डिजिटल सेंसस हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मैप्स हैं डिजिटल मैप्स हैं उनके द्वारा ये कर रहे हैं, तो पॉलिसी मेकिंग का बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के घर हैं, वहाँ पे किस तरीके की सुविधाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, ताकि हमें पता हो कि क्या है, क्या सुधार की ज़रूरत है, हमें वो डेटा बताएगा। तो इसीलिए हम लोग हाउसिंग कंडीशन वगैरह जानते हैं, और ओनरशिप मेनली इसीलिए कि एक पर्टिकुलर एरियाज में जैसे हमने देखा है कि लोग रेंट पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, खुद के लोगों के घर कम रहते हैं, वही सब चीज़ें जानने के लिए कि इस जगह पर किस तरह के बेसिकली घर हैं, रेंट पर हैं या लोग खुद रह रहे हैं, मेनली उनकी लिविंग कंडीशंस जानने के लिए कि किस तरह के कंडीशंस में लोग रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारी कॉलोनीज हैं हमारी देश के अंदर, ताकि उसी के अनुसार जो हमारा अजय जी ने काफ़ी एलैबोरेटली इसको बताया हाउसिंग को लेकर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब की पॉलिसीज को लेटर ऑन बनाने के लिए, इसीलिए ऐसा बहुत जाना गया है इस क्वेश्चन में
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल जो है वो सौमिन मित्रा जी से है मेरा कि मुख्य अनाज जो है किस आधार पर बताना है?
2: हाँ ये एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल इस बार जनगणना में जुड़ा गया है
1: जी।
2: पहले का जनगणना अब जैसे हुआ था मान लीजिए 1971 या 81 91 जदस्थल में जनगणना होते रहते हैं, ये सवाल नहीं था, ये सवाल अभी लाया गया। इस सवाल से हम लोग को एक जानकारी जो मिलता है कि ओवरऑल डाइट ऑफ द फैमिली क्या है, जो परिवार का ओवरऑल डाइटरी के पैटर्न क्या है उससे पता चल जाता है
1: जी।
2: तो ये सवाल खाली ये नहीं है कि घर के मुख्य क्या खाते हैं, ये पूरा परिवार का डाइटरी पैटर्न हमें बता देते हैं
1: जी। और अगला जो सवाल है आपसे ये है कि क्या लोगों को कोई दस्तावेज दिखाना ज़रूरी है?
2: नहीं, लोगों को जैसे अजय जी ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जब जनगणना हो रही है जनगणना प्रक्रिया के लिए ना आपको कोई दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा, ना जब प्रगणक आपका घर जाएंगे आपको दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली रेस्पोंडेंट बेस्ड, आपको कोई दस्तावेज दिखाने का दरकार नहीं है, ना कोई ओटीपी शेयर करने का जरूरी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल आया है कि जिनको ऑनलाइन नहीं करना आता उनके लिए ऑफलाइन कैसे करें?
0: इसके लिए तरीका बिल्कुल वही है कि जब हमारे इनोमिनेटर प्रगणक आपके घर पे आएंगे
1: जी
0: तो आप जो भी जानकारी देंगे उसके आधार

0: पे उस जानकारी को लेकर और उसी जानकारी को अपलोड हमारे कर देंगे इनमरेटर और सुपरवाइजर।
1: जी, तो अजय कुमार जी, एक सवाल आपसे और है मेरा कि
0: जी,
1: जैसे अब सेंसस हो जाता है तो जनता का ये सेंसस डाटा कैसे देख सकते हैं?
0: एक बार जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद जो भी सेंसस के रिजल्ट्स हैं
1: जी
0: या जो भी सेंसस के जो आंकड़े हैं जब वो पब्लिश हो जाएंगे, तो पब्लिश होने के बाद हमारे सेंसस ऑफ इंडिया का जो सरकारी वेबसाइट है www.censusindia.gov.in,
1: जी
0: आप उस पर जाकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं, आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। अभी भी अगर आप इस साइट पर जाएं तो अभी से पहले के जितने भी हमारे जनसंख्या के आंकड़े हैं वो आपके सारे आंकड़े आपको अभी भी नजर आ जाएंगे।
1: ओके, तो बातों का सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो अभी भी समय है, आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ सौम्या सौरभ जी आईएएस हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अजय कुमार जी है, आईएएस हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और सौम्या मित्रा ज्वाइंट डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली, वो हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर। और आप सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर 9868107070 है, जिस पर आप हमें कोई भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आपके जो सवाल हैं उनको लेंगे।

जी हाँ, देश हमारा रंगीला है और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सब, लेकिन हैं तो हिंदुस्तानी ही। और इसी को लेकर आज हम जो आशियाना में टॉपिक लिया है वो सेंसिस 2027, जनगणना 2027, जिसके अंतर्गत हमारे स्टूडियो में हमारे कुछ खास मेहमान भी हैं और उनसे बातचीत चल रही है। और अगला सवाल जो है मेरा है अजय कुमार जी के से, और वो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या

0: व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जाएगी अगर कोई इस डाटा को मतलब लीक ना हो, ये
1: जी
0: पब्लिकली किसी के पास और शेयर ना हो ये इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम कैसे इंश्योर करते हैं?
1: इसके प्रावधान हमारे सेंसस एक्ट
2: 1948 में ही दिए हुए हैं
0: जी।
2: मैं उसके सेक्शन 15 को अगर मैं पढ़ूं तो यह कहता है कि जो भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जो भी हमें बताए जाते हैं सेंसस में किसी भी व्यक्ति के बारे में, नाम या जो उनके स्पेशल पर्सनल जो भी डेटा होते हैं
0: जी,
2: वो सारे के सारे पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल और गोपनीय रखे जाते हैं। एक बार जब आप अपने इनमरेटर को जो भी वो सवाल पूछते हैं उनसे आप जो भी जानकारी साझा करते हैं वो बाद में सिर्फ आंकड़े के तौर पर रह जाते हैं। यदि अगर मैं यह कहूँ कि मेरा नाम, घर में क्या व्यक्ति कौन, क्या मेरा नंबर या मेरे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे लगता है कि जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है
0: जी,
2: ये सारे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 15 सेंसस एक्ट के अंदर में पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल घोषित किए गए हैं और इसे आरटीआई में भी ये डिस्क्लोज नहीं है।
0: ओके,
2: यानी किसी भी तरीके से ये डेटा आपका, आप जो भी आप डेटा देते हैं वो डेटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और कहीं भी किसी भी लेवल पे शेयर नहीं किया जाएगा। और बाद में जो डेटा निकल कर आते हैं वो डेटा सिर्फ नंबर के तौर पे रहते हैं, यानी एक संख्या के तौर पे रहते हैं, यानी हम किसी भी क्षेत्र में, जगह पे, लोकलिटी में हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, कहीं भी किसी स्पेसिफिक पर्सन, नाम किसी के बारे में नहीं कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपना नाम भी ढूंढना चाहे, जानना चाहे, वो भी संभव नहीं है, इसलिए कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहता, सिर्फ एक नंबर रह जाता है हमारे सेंसस के हमारे एक्ट में।
0: अगला सवाल मेरा सौम्या सौरभ जी से है कि एक सवाल आया है, हमारे एक लिसनर ने सवाल भेजा है कि मेरा सवाल है कि ऑनलाइन वेबसाइट पे घर के मुखिया के नाम से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, मेरे पापा नहीं है, हम तीन भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, तो हमारे घर के मुखिया के नाम की जगह किसका नाम देना चाहिए और इसमें घर का मुखिया किसे माना जाएगा?
3: देखिए ये जो प्रश्न है, मैं ये बताना चाहूंगी कि घर का मुखिया इस पर्पस के लिए जो भी घर आपका चला रहा है या घर में मेजर डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है
0: जी,
3: वो हम लोग कंसिडर करेंगे। और जैसा जरूरी नहीं है कि वो घर में सबसे बड़ा हो या कोई मेल मेंबर हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मतलब इम्पॉर्टेंट हो फैमिली में, बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो फैमिली की ले रहा है, इनके लिए मैं इनको ये सुझाव देना चाहूंगी कि आप क्योंकि जॉइंट फैमिली में है, आपस में डिसाइड करके वो डिस्क्लोज कर सकते हैं कि किसको वो अपना हेड ऑफ फैमिली कंसीडर करते हैं। वो इनकी फैमिली का कोई भी जो इंटरनल और चीजें हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वही बन जाएंगे फॉर ऑल अदर पर्पसेस हेड ऑफ फैमिली।
0: और एक सवाल भी आया है कि ये वैसे तो हमने सब चीज आपने बताई दी है, लेकिन ये सवाल आया है, शायद इन्होंने अभी ट्यून इन किया है, तो ये सूरज ने दिल्ली से पूछा है कि अगर हमें किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाना है तो कैसे पता चलेगा कि अगर कोई किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो वो ये है या कोई ऐसे ही है, झूठ है, झूठ मूठ का कोई सेंसेस ऑफिसर है? तो ये अजय कुमार जी आप इसके बारे में बताएं।
2: एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो भी सरकारी अधिकारी जो जनगणना में है उसमें आपके पास प्रगणक यानी हमारे पास इनमरेटर आएंगे और उस और हमारे सुपरवाइजर भी आपके पास आ सकते हैं
0: जी।
2: इन दोनों के पास हमारे विभाग से इशू किए हुए पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र होंगे
0: जी।
2: तो एक फोटो आई कार्ड उनके पास होगा और एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा। इन्हें निर्देश दिए गए हैं हमारे अधिकारियों को कि आप इन दोनों दस्तावेज को लेकर ही किसी के भी पास जाएंगे जब भी आप उनसे सूचना कोई इकट्ठा करने या लेने के लिए जाते हैं
0: जी।
2: और दूसरा कि हमने नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र पे भी हमने QR कोड लगा रखा है और आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप ये भी आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि वो जो आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर है वो जेन्युइन है या कोई फेक है। वो QR कोड तुरंत ही हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट की तरफ ले जाकर वो आपको दिखा देगा कि इस QR कोड पर वो जो पहचान पत्र है हमारे किसी गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा ही इशू किया गया है। नॉर्मली ये आई कार्ड ये जो होते हैं वो हमारे एरिया के चार्ज ऑफिसर जो होते हैं हम जो हमारे वार्ड के अंदर में होते हैं वो इशू करते हैं
0: जी।
2: तो इसके थ्रू आप हमारे गवर्नमेंट इम्प्लाई जेन्यून है, आप उसकी संतुष्टि बिल्कुल पा सकते हैं।
0: सौम्या मित्रा जी आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर कोई किराए के घर में रहता है लेकिन कहीं और उसका पैतृक घर है तो क्या चुनना चाहिए?
4: हाँ ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है कि भारत में माइग्रेशन बहुत होता है, लोग अपना पैतृक घर छोड़ के नौकरी के लिए हो या
0: दिल्ली आ जाते हैं या बॉम्बे चले गए या कहीं पे भी
4: ये होता रहता है। तो हम लोग भी ऐसे ही आए हैं। तो जो आपका अगर पैतृक घर है, अगर आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या आपका खुद का नाम पे भी हो लेकिन आप दूसरे घर पे किराए में रह रहे हैं और वहीं पे आपका जनगणना हो रहा है, तो आपका देखें ऑप्शन मिलेगा आपको एक रेंटेड बट हैज़ ओन हाउस एल्सवेयर, आपको उसी में टिक करना है। जो लोग सरकारी क्वार्टर में भी रहते हैं, अगर उनका कोई पैतृक घर है, उनका खुद का मकान है दूसरे शहर पे है,

0: मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि सेंसस का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, हम सब जन भागीदारी करें, पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि क्योंकि अभी बहुत गर्मी होने वाली है, हमारी बहुत सारी एन्यूमरेटर्स महिलाएं भी हैं, तो आप सब उनको सपोर्ट करें और उनको टाइमली आंसर करें। बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ कुछ महिलाएं छोटे बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, प्लीज़ उनको वेलकम करें, आंसर करें। घर पे कोई आए तो ज़रूर उनको पानी पिलाएं या चाय पिलाएं, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कंडक्ट करने में सरकार की मदद कर रहे हैं। तो एज सिटीजन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उनका पूरा सहयोग करें। थैंक यू।
1: और अजय कुमार जी से, थैंक यू मैम। अजय कुमार जी जो कि आईएएस हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। तो आपसे भी यही कहेंगे कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो हमारे लिसनर्स को क्या देना चाहेंगे?
2: जी मैं सभी लोगों से यही अनुरोध और निवेदन करना चाहूँगा कि इस गर्मी के समय में हमारे सारे सरकारी अधिकारी, जो टीचर्स मेल भी है फीमेल भी हैं और हमारे सरकारी अधिकारी भी हैं, इस समय पर एक विशेष कार्य सेंसस, जो हमारे इंडिया का एक सबसे बड़ा एक कार्य के रूप में माना जाता है, मानते हैं कि सेंसस और एक इलेक्शन बहुत ही बड़ा एक कार्य है जो कि हम पूरे देश में एक साथ हम संभालते हैं, तो इसमें आप सभी सहयोग करें। ये हमारा ही अपना काम है कि सही आंकड़ा और सही सूचना दे, जिससे कि सरकार को अच्छी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने में मदद मिले, और ये हमारी अपनी भलाई के लिए है। तो हमारे जो भी सरकारी अधिकारी जाए, आप उन्हें एक बार देखकर परखकर उनसे जरूर सहयोग करें और इसमें अपनी सब भागीता और भागीदारी अपना निभाएं। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और सौम्या मित्रा जी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली, तो सर चलते चलते आपसे भी यही चाहेंगे, आपका पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने भी समय निकाला और यहाँ पर आप स्टूडियो में आए। तो सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
3: मैं कल इतने बोलना चाहूँगा, देखिए जनगणना जो होता है 10 साल में एक बार होता है, तो आप सही आंकड़े दीजिए ताकि आगे वाला जो समय है उसमें सरकार सही तरीके से अपना प्लानिंग और अपना स्कीम्स कर सके, जो आपके भलाई के लिए है
1: जी।
3: तो हम लोग जनगणना बोलते हैं कि जनगणना से जल कल्याण जो हम बोलते रहते हैं कि जनगणना से जल कल्याण अभी हो सकता है जब आप सही सही आंकड़े देंगे। धन्यवाद आप सबको,
1: थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बता दूं कि अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर रहेगा, और जो कि आज स्पेशल है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, और डॉक्टर अनुपम प्रकाश प्रोफेसर ऑफ हेड जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हैं, और जिसकी प्रस्तुत करेंगी शालिनी मित्तल। और उसके बाद अल्फा जेन में एक बार फिर आपके साथ जुड़ूंगा मैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में। और अब वीर दमन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे 4 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। हमारा आज का विषय है थैलेसीमिया, एक बीमारी जो विरासत में मिलती है, एक संघर्ष जो जन्म से शुरू हो जाता है और एक जिम्मेदारी जो जागरूकता से निभाई जा सकती है। जो लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ से अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, क्या इसका इलाज संभव है और कैसे जागरूकता बचा सकती है आने वाली पीढ़ियों को। आज हम इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही डॉक्टर साहब एडल्ट थैलेसीमिया यूनिट भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार शिल्पा जी, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबको अभिनंदन करता हूँ।
1: डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए विस्तार से कि थैलेसीमिया क्या है।
2: हाँ शिल्पा जी, ये बहुत ज़रूरी है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, और ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग जागरूकता इसके बारे में फैलाएं, जो लोगों को नहीं है उनको इससे अवगत कराएं, और अगर जिन लोगों को है तो जैसा आपने सही कहा, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस बीमारी से कैसे हम लोगों को डील करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज जो है, मैं आकाशवाणी को सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आज के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस पे ये कार्यक्रम रखा है और लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कदम उठाया है। थैलेसीमिया जो है, जैसे हम लोग मामूली तौर पे जानते हैं अनीमिया जैसे होता है कि खून की कमी है, तो थैलेसीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन ये दूसरी तरह की खून की कमी है। ये ऐसी कमी नहीं है जो कि किसी को खान पान में कमी है या आयरन कम है या किसी और कारण से, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, उस कारण से खून की कमी हो। ये जो है थैलेसीमिया, एक अलग तरीके का एनीमिया है जिसमें कि खून की कमी होती है। आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जो RBCs बन रहे होते हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कि आयरन होता है और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन करके, वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो ठीक से नहीं बनता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से, या हीमोग्लोबिन में जो है गलत तरीके से माध्यम से बनने से, जो RBCs होते हैं वो आम तौर पे 3 से 4 महीने रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है 1-2 महीने में ही नष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ RBC बन रहे हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो हीमोलिटिक अनीमिया की श्रेणी में करते हैं। तो जो ब्लड बन रहा है, जो RBCs बन रहे हैं, वो समय से पहले, अपने समय के अनुसार नहीं, समय से पहले नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा।
1: तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है, इसका होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये हो जाती है?
2: देखिए, ये बीमारी जो है, ये जैसा मैंने बताया, ये किसी खान पान रहन सहन की वजह से नहीं है, ये एक जेनेटिक दिक्कत है जिसमें कि ये जीन्स के थ्रू आती है। तो ये ऊपर माँ या बाप दोनों में ही कोई दिक्कत होगी, और एक एक कण, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है शक्ल सूरत पे माँ के ऊपर भी जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ बाप के ऊपर भी जाते हैं, तो दोनों के हिस्से से जो जीन्स आती हैं और जो कि RBC के कण बनाती हैं, वो एक एक अंश दोनों के माध्यम से आता है। और जब दोनों में ही ये कैरियर स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है, या फ्लोरेट बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे में थैलेसीमिया की संभावना हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों माँ या बाप या तो कैरियर हैं या दोनों में से एक को ग्रस्त हैं थैलेसीमिया से और दूसरा कैरियर है, तो बच्चे में ये दिक्कत थैलेसीमिया की होने की संभावना हो जाती है।
1: अगर किसी को थैलेसीमिया है तो हम कैसे डायग्नोस करें, मतलब क्या कुछ लक्षण हैं कि कैसे पता लगे हाँ इसको ये बीमारी है?
2: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि थैलेसीमिया में RBC जो लाल कोशिकाएं हैं या जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और इनका कारण बाहर की कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, ये जीन्स जो हैं डिफेक्टिव उन्हीं वजह से है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ के होने की वजह से जो थैलेसीमिया में RBCs बन रहे हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो है अपने लिए इसमें ध्यान रखें कि इनको क्या दिक्कत है थैलेसीमिया की या नहीं। तो अगर ये ऊपर से आएगा तो बच्चे में प्रभाव आता है और क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हो जाएगा तो आज ही दिक्कत महसूस होगी, ये 6-8-9 महीने बाद बच्चे में होती है। तो बच्चा रोता रहता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध नहीं पी पाता है माँ का, या फिर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगती है उसमें दूध पीने में। तो ये सब दिक्कतें हैं जो बच्चे में हो जाएंगी, बढ़ेगा नहीं अपनी रफ्तार से क्योंकि खून उसका कम है, क्योंकि माँ बाप ये नहीं हो सकता है क्योंकि दौड़ भाग नहीं रहा है तो सांस नहीं फूलेगा, 6-8 महीने का बच्चा जो है तो दूध पीने में उसे थकान हो जाएगी, बढ़ना कम हो जाएगा उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है और कई बच्चे जब तक आप इसको संभावना नहीं रखेंगे कि थैलेसीमिया हो सकता है तब तक आपको ये पता नहीं चलता है, इसलिए डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच कराना ज़रूरी है।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पर, बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें थैलेसीमिया पे, तो डॉक्टर साहब तो हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया जो है तो वो बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी होता है?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। थैलेसीमिया जो है ये जन्मजात बीमारी है, तो ये बचपन से ही होती है क्योंकि जीन्स जो हैं ये तो इनहेरिट हो जाते हैं बचपन, जब बच्चा बन जाता है तभी से। लेकिन ये किस लेवल पे, किस उम्र पे ये मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष होगा, इसकी बीमारी के लक्षण आएंगे, ये जो है ये बहुत फ़र्क पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर है जैसा मैंने बताया, तो उसमें तो 6-8-9 महीने में ही बच्चा जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, सांस फूलना, दूध नहीं पी पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। लेकिन जो माइनर है उसमें डिपेंड करता है कितना जीन्स का जो है इनहेरिटेंस है। ऐसे भी अलग अलग जीन्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी अलग होते हैं, जो कि फ़र्क पड़ता है। तो ये वयस्कों में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। तो जो अगर एडोलिसेंट हैं या बड़े लोग हैं उनमें अगर थैलेसीमिया पता चलता है तो उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, तो वो अपना दौड़ भाग का जो काम है या ज़रूरत से ज़्यादा रोज़मर्रा की दिनचर्या से ज़्यादा जो काम करते हैं उसमें उन्हें करने में दिक्कत होती है।
0: डॉक्टर साहब एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया का मुख्य कारण क्या है होने का, और ये जेनेटिक है तो इसे जन्म के समय बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाएं?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन्स जो माँ बाप में हैं उनसे इनहेरिट होता है। तो हाँ, एक चीज़ है, आगे चल करके अगर आपको पता है कि जीन्स हैं और हम लोग जीन्स एडिट कर पाएंगे तो शायद इसका इलाज तब संभव होगा वयस्कों में भी। लेकिन जब तक नहीं ये संभव है तब तक ये माँ बाप से बच्चे में आएगा। तो इसको बच्चे का आप जाँच करा सकते हैं, अपनी खुद की जाँच करा सकते हैं। जैसे शादी से पहले लोग जन्मपत्री मिलाते थे पहले, तो आजकल ये कई जांचें हैं जो करा लेनी चाहिए, उसमें से थैलेसीमिया की भी एक जांच है जो कि करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनर हैं, थैलेसीमिया ट्रेट है आप में या थैलेसीमिया माइनर है, तो आपको दूसरे थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें थैलेसीमिया के होने की संभावना होती है। मान लीजिए आपने दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको जो बच्चा जब गर्भ ठहरता है तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग टेस्ट होता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना क्या है उसमें। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं और आप उस हिसाब से अपना आगे का जो है मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर बच्चे को थैलेसीमिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है, वो भी संभव है। तो जो इनका सवाल है मेरे ख्याल से इम्तियाज जी का हमने जवाब दे दिया है कि जेनेटिक
0: डिसऑर्डर। कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, रघुवीर जी बोल रहे हैं मैडम
0: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब।
1: हाँ नमस्कार रघुवीर सिंह जी, बताइए।
2: तो जैसे मतलब कोई आदमी है, जैसे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, तो खून की कमी है, जैसे उन्होंने चेकअप किया है हॉस्पिटल में, तो खून की बढ़ावा देने के लिए कौन से स्रोत से हम बढ़ा सकते हैं खून को? अगर वो नहीं है तो अंग्रेज दवाई कोई बताइए सर, बस यही पूछना है।
1: देखिए, जो आप कह रहे हैं कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अनीमिया एक है, तो वो आपने बताया कि जांच में अनीमिया आया है। तो अगर अनीमिया आया है तो अनीमिया के भी कई कारण होते हैं। जैसे एक थैलेसीमिया है तो उसमें तो मैं आपको नहीं दूंगा कि आप आयरन लीजिए या अलग चीज़ें लीजिए, लेकिन अगर खुराक में कमी की वजह से या किसी को पाइल्स होती हैं या किसी को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, अगर उनको दिक्कत है तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुराक में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आयरन के मात्रा बढ़ाने के लिए आप चीकू, अनार

0: अनार, सेब, केला, ये सब फल ले सकते हैं। गुड़, चना, डिपेंड करता है कि अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं और अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं इससे। आपको अगर आप खुराक पूरी ले रहे हैं और उसमें आयरन के सेवन ठीक से कर रहे हैं, चीकू जैसे मैंने बताया, या आयरन, ये सेब, सन, अनार, ये सब चीज़ें लीजिए, तो खून की में मात्रा बढ़ जाएगी आयरन की, तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब से आपने परामर्श किया है, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने कहा था कि शादी के समय थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने जांच नहीं कराई, हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है, तो आगे बच्चे में होने के कितने चांसेस हैं, या उसको बच्चे को आगे ना हो तो क्या उसके लिए भी कुछ इलाज है?
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर दोनों माँ बाप जो है, दोनों में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब अगर वो कैरियर हैं, तो बच्चे में होने की संभावना रहती है, जो 25 से 50% हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया मेजर हैं या थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर ये आपको इनहेरिट हो गई है, मतलब जन्म से बच्चे में आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद नहीं है, बच्चे को हमेशा रहना पड़ेगा। जो इसका इलाज है, अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर एक आज की तारीख में, पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा महंगा ज़रूर है इलाज, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कोई और सिबलिंग है, भाई बंधु है, जिसका जो है बोन मैरो मैच कर सकता है, या कोई और जो मैच कर सकते हैं, तो अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थैलेसीमिया आपको क्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए, जैसा आपने कहा शिल्पा जी, कि अगर नहीं है, बोन मैरो मैच करता है और इनहेरिट हो गया है, और थैलेसीमिया अब बच्चे को है, तो फिर इनका, क्योंकि खून जल्द समय से जल्दी नष्ट हो रहा है, तो हमें इनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत रहती है। और फिर समय समय पे इन्हें खून जिंदगी भर चढ़ाना पड़ता है, जो कि अपने में दिक्कत का विषय है, क्योंकि खून जो है आदमी का ही चढ़ता है, और वो आपको फिर ब्लड बैंक से या कहीं से इंतजाम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है।
1: तो जैसे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को हो तो जेनेटिक है तो बच्चे में भी होगा ही, तो ऐसे में बच्चों को होने में प्रेगनेंसी के समय क्या दिक्कत आती है, या बाद में बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं?
0: देखिए, जब तक बच्चा गर्भ में होता है, तब तक तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसके बाद उसका जब शुरू में तो जो है एक ही ना हीमोग्लोबिन F होता है, तो वो जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ना शुरू के 4-6 महीने में कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो A में चेंज हो जाता है, और अपना खुद का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो वो जैसा मैंने बताया, जब अपना हीमोग्लोबिन बताया, वो 3 से 4 महीने रहता है, तो जब बच्चों में भी फिर ये जब बन जाने लगता है अपना, तो फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये 6 से 9 महीने पे आम तौर पे अगर अपना बिल्कुल भी थैलेसीमिया में के मरीजों में, बच्चों में नहीं बन रहा है, जो थैलेसीमिया मेजर होता है, तो ये 6 से 9 महीने में आपको यूजुअली पता चल जाता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ सीवियरिटी कम हो सकती है, तो कई बार ये 1 साल 1.5 साल की उम्र पे भी पता चल सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिशत बन रहा हो सकता है। तो अगर आपको खून में जांच करानी होती है, तो फिर आप खून में HPLC की जांच हम लोग कराते हैं। हालांकि साधारण CBC, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, या हीमोग्राम होता है, जो कि कॉमनली एनीमिया के लिए कराया जाता है, या रूटीन हेल्थ चेकअप्स में कराया जाता है, उसमें भी इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम लोग HPLC टेस्ट कराते हैं, तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट करा करके फिर हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, शरीर में आयरन बढ़ने की समस्या और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सभी समस्याओं के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ थैलेसीमिया का इलाज कितना सफल है?
0: देखिए, आज की तारीख में थैलेसीमिया का इलाज काफ़ी सफल है। पिछले, मैं कहूँगा, 20-25-30 साल में काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में, और स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही रेड क्रॉस जो है, वो भी, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस के और अपने ब्लड डोनेशन से सब मरीज़ों को जो है ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, और ये

0: मतलब थैलेसीमिक्स इंडिया है, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं इनको काफ़ी जो है मदद करते रहते हैं। और हमारी सरकार ने भी जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, और भारत सरकार के हिसाब से इनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं आना चाहिए, और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकारी अस्पताल की तरफ से मरीजों को मिलती है।
1: तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिससे लोगों को इसका इलाज आराम से करा सकें वो?
0: देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको जो ब्लड की सुविधा है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ 2007 में, करीब 20 साल पहले हमने अपने लेडी हार्डिंग में वयस्कों का, एडल्ट्स का शुरू किया था, तो करीब 8 मरीजों से शुरू किया था। आज की तारीख में 250 से ज़्यादा मरीज़ जो है वयस्क मरीज़, बच्चे तो हैं ही इतने, 300 350 करीब बच्चे भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब 250 से ज़्यादा मरीज़ जो है ये लेडी हार्डिंग में इनका इलाज चल रहा है, और इनका कोई खर्चा नहीं आता है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, कई एरिया से, दूर दराज के एरिया से हमारे पास आते हैं, और इनको पूरा इलाज दिया जाता है। इस इलाज में जो खून की सुविधा है वो तो डोनेशन से हमारे पास रहती है, क्योंकि देखिए किसी को भी जिसको हर 15 दिन पे 2 यूनिट खून चढ़ना है वो उसके रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर में कितने रिश्तेदार होंगे जो साल में मतलब 50 यूनिट डोनेट कर देंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था, और जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस वगैरह की तरफ से सुविधा काफ़ी रहती है, और ये पीरियोडिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी जो खून आता है तो ये मरीजों के काम आता है, और इनको ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। और पहले एक आधी बार हुआ है कि ऐसी परेशानियां हुई हैं इन्हें कि ब्लड शॉर्टेज है, कोविड के दौरान दिक्कत थी, तो कोविड में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराया इन लोगों के लिए कि आए तो दिक्कत ना हो, तो अलग अलग सुविधा थी हमारे लेडी हार्डिंग में, हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया इनका, कोविड में हम लोगों ने अलग से ख्याल रख करके इन लोगों को खून चढ़वाया। खून चढ़वाने के बाद जो है इनको हमें बाकी खून चढ़वाने के लिए भर्ती की सुविधा, उनको जो किट्स चाहिए होते हैं उसकी, खून चढ़ाने के लिए जो किट इस्तेमाल होते हैं उनकी, ट्रांसफ्यूजन सेट्स की सुविधा और बाकी दवाओं की सुविधा, ये सारी सुविधाएं और जितनी जांचें होती हैं, क्योंकि हर बार जब खून चढ़वाने आते हैं 15 दिन पे या 10वें दिन पे, तो उनकी जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से मुफ्त ही होती हैं।
1: तो जैसे ये थैलेसीमिया बचपन से, मतलब बचपन से जब पैदा होते हैं, जेनेटिक ही होता है, बड़े होने पर भी हो सकता है या फिर छूने से भी हो सकता है?
0: देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका, छूने से नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये किस समय मैनिफेस्ट करेगा या प्रत्यक्ष रूप से आएगा ये अलग अलग अवस्था में पता चलता है। तो जैसे कि अगर मेजर है तो हो सकता है कि बचपन में बिल्कुल जो है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पे पता चल जाए, और जो बड़े लोगों में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पता चले जब तक आप खून की जांच ना कराएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो सकता है 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम पे आप अपना सुचारू रूप से जीवन चलते रहें, हालांकि हीमोग्लोबिन कम रहता है इनका वो, लेकिन ज़िंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए, ज़िंदगी पर्यंत तक आपको पता ना चले कि इन्हें कोई दिक्कत है, तो 50 साल 60 साल पे कभी जांच कराइए आपने, तब आपको हो सकता है पता चले, और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो भी हो सकता है कि आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन यह है कि हाँ, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको भी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती है।
1: तो मेजर और माइनर में क्या अंतर रहता है? जिसे मेजर उसमें क्या रहेगा और जो इसको माइनर है थैलेसीमिया उसमें क्या रहेगा?
0: देखिए ये तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहूँगा कि जो थैलेसीमिया मेजर है आप ये समझ लीजिए वो मेजर प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया माइनर है वो माइनर प्रॉब्लम है। तो माइनर को इतनी दिक्कत नहीं होती, उनको 30 40 50 साल की उम्र तक कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उसके बाद कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सांस फूलना या उनके फेफड़ों में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ऑक्सीजन थोड़ा कम चल रहा होता है तो फेफड़ों में थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर जैसे है वो बढ़ने की, या कुछ थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स हो सकते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं होते हैं लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें।
1: तो जैसे जिन बच्चों को जैसे जेनेटिक है तो बच्चों में होता है, तो क्या वो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं? मतलब खेल कूद हो गए, पढ़ाई हो गई इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ, या उस पर भी इफेक्ट आता है?
0: देखिए अगर इनका, हर मरीज़ का, हर बच्चे का जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसका अपना एक, कितने दिन में RBCs जो हैं, रेड सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो एक बन जाता है 10 दिन पे 15 दिन पे 20 दिन पे, तो उस पर अगर बच्चा खून नहीं चढ़वाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं इनका खून जो है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहे, आमतौर पे ये 12 से 16 14 से 18 ग्राम होता है, तो इनका थोड़ा

0: सा हम कम पे ही रखते हैं कि 11 से 12 के बीच में रहे और ये करीब 8 से नीचे ना जाए किसी भी हालत में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गतिविधियाँ इनकी नॉर्मल नहीं रहती हैं, क्योंकि 8 ग्राम खून 11 से 8 पे आता है, फिर हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, फिर 11 पे ले जाते हैं, 8:30 पे आ गया, फिर ले जाते हैं वापस 11 पे ट्रांसफ्यूज़ करके। तो ये चीज़ तो दिक्कत थोड़ी रहती है, लेकिन क्योंकि इनको ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से रहती है दिक्कत, तो ये इनका शरीर अडेप्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी सुचारू रूप से अपनी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, अगर इनको ब्लड जो है हर 10वें 15वें 20वें दिन जो भी उस मरीज़ का है नियमित रूप से अगर मिलता रहता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में है तो ये बच्चे, हालांकि अब तो बड़े हो गए और ये 45 साल तक की उम्र के लोग जो हैं अभी बिल्कुल सुचारू रूप से अपना कार्यकाल, अपने सारे काम वाम कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, आते हैं अपना करते हैं और खून चढ़वा के अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत तो रहती है क्योंकि 15 दिन पे आना पड़ता है खून चढ़वाने के लिए, कोई साथ में आता है क्योंकि एडमिशन बनता है और खून चढ़वाने के भी अपने रिस्क रहते हैं और दिक्कत होने की संभावना रहती है कुछ ना कुछ।
1: जी, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2342108 2342108। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बातें और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं 1 से 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में हमारे मेल आईडी पे health@delhi.gmail.com पे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करें थैलेसीमिया पे, तो एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रेडियो डॉक्टर शो, मेन कॉज ऑफ थैलेसीमिया, विच एज इज थैलेसीमिया एंड व्हाई कांट द थैलेसीमिया टेक आयरन, रेनबो लवर्स बॉय नेम हितेंद्र दास फ्रॉम असम।
2: हाँ हितेंद्र दास जी, बहुत ठीक कहा आपने। तो जैसा मैंने बताया है कि थैलेसीमिया अगर मेजर है या ज़्यादा सीवियरिटी का है तो जल्दी महसूस हो जाता है, तो आपको नवजात शिशु में 6 से 9 महीने पे उम्र पे पता चल जाता है। बाकी जैसा है, आयरन इन लोगों में इसलिए नहीं देते क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था शुरू में, ये एक हीमोलिटिक अनीमिया है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी बन रहे हैं उसमें आयरन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ये ग्लोबिन चेन्स हैं वो ख़राब होती हैं इसमें, और वो जीन्स के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो आयरन की कमी की वजह से इसमें अनीमिया नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है उसमें, इसमें हीम आयरन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी वाली प्रॉब्लम है। तो वो चेन्स जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी जो हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स में आयरन की कमी नहीं होती। दूसरा, इन पेशेंट्स में हम हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे या हर 3 हफ्ते पे अगर हम खून चढ़ा रहे हैं, तो ये जो खून चढ़ता है ये तो नॉर्मल आदमी का खून चढ़ता है, तो ये आयरन रिप्लीट होता है, इसमें आयरन अच्छे खासा मात्रा में होता है। तो इनका अपने शरीर का आयरन जो कि पुराने आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो बाकी हम खून देते हैं उसका आयरन इनमें होता है। तो इसलिए ये इनमें आयरन हम लोग अवॉइड करते हैं।

0: बल्कि जो आयरन रिच फूड्स होते हैं हम इन्हें हिदायत देते हैं कि ये ना लें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि थैलेसीमिया के मरीजों को आयरन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इनमें नहीं होता है यूजुअली आमतौर पर।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है केशव बिष्ट का। ये लिखते हैं, सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है थैलेसीमिया में?
0: देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा केशव जी, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कि आपको किसी और मनुष्य का बोन मैरो मतलब जो गूदा है अपनी हड्डी के अंदर जो होता है मैरो जिसे कहते हैं, वो आपको निकाल करके इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी विधि है। एक तो आपको पहले मैच करना पड़ता है, ये कई लेवल की मैचिंग होती है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है, HLA की मैचिंग होती है, ये सब जो है प्रक्रिया अलग होती है। इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो डोनेट करता है उसके टेस्ट होते हैं, जिसमें रिसिपियंट जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसके अलग टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मैचिंग होती है कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैचिंग की संभावना रहती है तो फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और उसके बाद ये बोन मैरो जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट मतलब जब हो जाता है, तो शरीर उसे रिजेक्ट ना करे जैसा आपने पूछा है, तो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता काफ़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि किसी भी ट्रांसप्लांट में आप उस आदमी के लिए पूछें तो वो 0% या 100% दोनों ही हो सकती है, क्योंकि जो हम आंकड़े बताते हैं 40% सक्सेस रेट है या 50% सक्सेस रेट है, वो तो 100 लोगों में 50 लोगों में हम मान करके चल रहे हैं या 40 लोगों में मान के चल रहे हैं अगर हम 40% कह रहे हैं, लेकिन उस मनुष्य के लिए तो उसमें वो अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस है, नहीं सक्सेस है तो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन अवॉइड हो जाता है, तो थैलेसीमिया में कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल होने में दिक्कत होती है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोगिंदर सिंह का। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जोगिंदर दैया सोनीपत से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी को इंटरमीडिएट थैलेसीमिया है, उसकी उम्र 10 वर्ष है। मेरी बेटी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है और गुड़िया का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के पास रहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुड़िया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसका अधिकतम खर्च आपके अस्पताल में कितना होगा?
0: देखिए अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हम अपने अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में शुरू हो जाए, अभी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, इसका आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अलग अलग अस्पताल में अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 ग्राम खून है तो क्या इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर है, कई बार इनको ब्लड तो कम होता है जैसा मैंने बताया, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि अभी तक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, निगरानी में रखना पड़ेगा और क्या दिक्कतें हैं वो आपको मरीज़ को देखनी पड़ेंगी कि क्या परेशानियां हो रही हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, और आज आपको अवगत हुआ है कि हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल इलाज है, तो अपने डॉक्टर साहब से इससे ज़रूर पूछें और अब वो आपको ज़रूर राय देंगे। अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। खर्चा तो एक चीज़ है ही, लेकिन एक सक्सेसफुल डोनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा आपका एक कोई और बच्चा है जो कि थैलेसीमिया से ग्रस्त नहीं है, तो उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करना सबसे उचित रहता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले ज़रूरत है नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर माइनर में हम लोग यूजुअली एडवाइज़ नहीं करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और दिक्कत है उससे पहले, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको एक बार इसका सोच लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से ज़रूर परामर्श करें और वो आपको इसमें गाइड कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा, तो ये कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के इंटरवल्स पे कराना पड़ता है?
0: देखिए अब बचपन में आपको हो सकता है कि 3-3 हफ्ते पर कराना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में, क्योंकि हर 3 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है या हर 2 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है, तो कई बार स्प्लीन जैसे है या लिवर है, ये ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं और ये आपके जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, जो मरीज़ को मिल रहे होते हैं अच्छे मतलब नॉर्मल आदमी के ब्लड, वो आरबीसीज वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हफ्ते से हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है हर हफ्ते।

0: करना पड़ जाए, तो ये बहुत सारी अलग समस्याएं होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है, और इसलिए हमें मरीजों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं या क्या परेशानी हो रही हैं। तो इन सब परेशानियों पे निगरानी रखना, वो भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो सब सुविधा भी हमें बीच बीच में देखनी पड़ती है, और बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, आप कहेंगे तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, माई एच पी एल सी रिपोर्ट शोज आरबीसी काउंट 3.8 एचबी इज 8.4, इट इज थैलेसीमिया और नॉट, विद रिगार्ड्स चित्रा सेठी अजमेर।
0: ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या कुछ आपने पार्टली बोली है, ये जिन डॉक्टर साहब से आपने कराई है एक बार देखना पड़ेगा। उसमें एच पी एल सी रिपोर्ट में आपका हीमोग्लोबिन ए, ए टू, एफ, ये सब चीज़ें का प्रोपोर्शन आता है, और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये परसेंटेज जो है अलग अलग रहती है। तो इसको मैं आपको वैसे भी तकनीकी जो है टेक्निकल बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उससे ना पैनिक बढ़ जाता है और हर कोई अपना एचपीएलसी कराना देखना शुरू कर जाएगा। तो ये शायद आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट और आरबीसी की रिपोर्ट और एचपीएलसी की रिपोर्ट कुछ मिक्स हो गई है जो आपने भेजी है, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने कराई है उनसे ज़रूर एक बार आए लें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसमें एचपीएलसी में मुझे लगता नहीं कि आपको थैलेसीमिया होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे।
1: तो इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे पीआरबीसी का ट्रांसफ्यूशन कर देना चाहिए और कितने हीमोग्लोबिन काउंट के ऊपर हमें पेशेंट्स को रखना चाहिए, आयरन ओवरलोड क्यों हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट, क्वेश्चन बाय अनिल शर्मा फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
0: मैं मानता हूं कि ये सारे सवाल जो है ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए हैं, तो जैसा मैंने बताया अगर थैलेसीमिया रोगियों में, देखिए हीमोग्लोबिन अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है और 8 ग्राम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खून चढ़ाया जाए, तो लेकिन अगर थैलेसीमिया है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और वो कम हो रहा है हर बार, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं 11 से 12 के बीच में रहे या 10 से 11 के बीच में रहे, अगर वो कम होकर के 8, 8.5 के आसपास आ रहा है तो ज़रूर खून चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका, जैसे अभी बात हुई थी, किसी का थैलेसीमिया ट्रेट है और 9 ग्राम ही हीमोग्लोबिन रह रहा है, अब वो 9 से 8.5 हो गया है, तो ये लेबोरेटरी वेरिएशन हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं जिसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, इस पर खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो है रेडियो के, आकाशवाणी के माध्यम से मैं ये राय नहीं दे सकता हूँ बिल्कुल कि अगर आपका 8 है तो आज खून चढ़वाना ही है या आपका 10 है तो आज खून नहीं चढ़वाना है। देखिए मैं बहुत साफ बात बताऊं, अगर आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है और आज 10 हो गया है तो हो सकता है आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन मान लीजिए आपका कल तक 11 ही ग्राम खून था और आज वो 10 या 10.5 आ रहा है तो आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कई चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपको खून चढ़वाना है या नहीं। थैलेसीमिया में मैंने बस ऐसे बताया, जो लोग थैलेसीमिया मेजर हैं जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनका हम कोशिश करते हैं कि 2, 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक अगर कम हो जाता है तो हमें उन्हें खून चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि उनको बाकी उनकी ग्रोथ पे या उनके काम करने में दिक्कत नहीं हो।
1: थैलेसीमिया पहचानने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस बीमारी की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? क्या आम ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान की जा सकती है या कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं इसके लिए?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी आप। इसमें आम ब्लड टेस्ट से हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से हमें इसका जो है HPLC यूजुअली हम लोग कराते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है, उसी से ही इसको जो है, या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लोग कराते हैं, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि कितना जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कितना जो है एबनॉर्मल है।
0: और इसका इलाज कितने प्रतिशत सफल है? मतलब कितने प्रतिशत वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जो इलाज ले रहे हो?
1: देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में हमारे पास कई इलाज हैं संभव, जिसकी वजह से जैसे खून चढ़ना है वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन खून चढ़ने से आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जैसे कि बात हुई थी। तो उसको भी हमारे पास पहले एक ही दवा आती थी, आज की तारीख में हमारे पास 3 दवाएं हैं और वो मुंह से ली जा सकती हैं। पहले तो हमें उसे इंजेक्शन से ही देने पड़ते थे। तो काफ़ी ज़्यादा तकनीकी हमारे पास एडवांसमेंट हो गए हैं, और इसमें रोगी जो हैं उनको, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको नियर नॉर्मल जो लाइफ है वो अपनी ये सुचारू रूप से कर सकते हैं, व्याप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है सरकार ने जो है डिसेबिलिटी में भी थैलेसीमिया को इंक्लूड कर लिया है, उससे भी इन लोगों को काफ़ी जो है आराम मिला है और ये लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, और आज की तारीख में थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी, सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है। तो और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं थैलेसीमिया सर्टिफिकेशन होता भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन मरीज़ों को मतलब नॉर्मल लाइफ, अपना खुद जो है स्वावलंबी बन करके, अपना खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और अपना सारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आज की तारीख में।
0: तो इसका जो इलाज है वो महंगा है या इजी टू अफोर्ड है? मतलब
1: देखिए, अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो इजी टू अफोर्ड तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत आसानी से नहीं मिलती।

0: और दवाइयाँ लेनी भी ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं और रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, साल दर साल लेनी होती हैं। सिर्फ ब्लड चढ़वाना और ब्लड को चिलेट करना, जो आयरन है उसको चिलेट करना या उसको कम करने की दवाएँ, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी क्योंकि आयरन काफ़ी जाता है, उससे आयरन शरीर के कई अंगों में जमा हो जाता है, तो उस अंगों में दिक्कतें जो होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन की दिक्कत होती है, और हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती हैं, थायराइड की, डायबिटीज़, ये सब दिक्कतें जो हैं इनका भी इलाज हमें करना पड़ जाता है। तो अगर आप मानेंगे तो कोई भी एक बीमारी का इलाज जो है महंगा तो हो ही जाता है, तो अगर आपके पास कई बीमारियां हो जाएंगी जिनमें कि आयरन दिक जहाँ जहाँ जमा हो रहा है, जिस जिस अंग में जमा हो रहा है, उसकी हमें अगर इलाज करना पड़ेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सस्ता होगा। जो इवन हमें इन फिल्टर इन लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो खून चढ़ता है वो साधारण खून नहीं होता है, ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड खून चढ़ता है, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो सरकार, हमारे तो सरकारी अस्पताल, इसलिए सरकार खर्चा बियर करती है। और नहीं तो हम लोग जो ल्यूकोसाइट डिप्लीटिंग फिल्टर्स यूज़ करते हैं, उसका एक फ़िल्टर का कॉस्ट ही 1800-2000 रुपये है, तो हर ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यूज़ होते हैं, तो खर्चा सस्ता नहीं है। इसीलिए किसी अस्पताल से या एनजीओ के तहत अगर इन्हें मिल रहा है तो इनको काफ़ी फ़ायदा रहता है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैमन सर, थैलेसीमिया माइनर, क्या आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मैं थैलेसीमिया के लिए कह चुका हूँ कि आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, तो अगर थैलेसीमिया माइनर है तो भी आयरन सप्लीमेंट, जब तक बिल्कुल आयरन डिफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तब तक नहीं लेना चाहिए। ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें। कायदे से तो थैलेसीमिया माइनर में भी कुछ हीमोलिसिस या कुछ आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इसलिए उनको आयरन की कमी नहीं होती है, आयरन ज़्यादा ही होता है। तो जब तक बिल्कुल ही ये ना पता हो कि हाँ आयरन कम है शरीर में, तभी लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज लेना नहीं चाहिए।
1: तो क्या इससे जुड़ी कोई रीसेंट रिसर्च है कि जिससे लगे कि
0: हाँ,
1: हाँ इस आगे नहीं
0: ज़रूर,
1: होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी नई दवाइयाँ आ रही हैं जिनसे लेने से, कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ भी हैं, कुछ लोग किसी किसी चीज़ का सेवन करते रहते हैं, जिनसे आपका आयरन का, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है, उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। और जो आपके अपने शरीर में बन रहे होते हैं आरबीसी, जो रेड सेल्स बन रहे होते हैं, लाल कोशिकाएं बन रही होती हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, उनकी रहने की अवधि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको खून उतनी जल्दी नहीं चढ़वाना पड़ता है। तो ये कई नई दवाइयाँ आई हैं अभी हाल में, पिछले 3-4 साल में, जिससे कि हम ये संभव प्रयास कर सकते हैं कि इनका खून अगर 14 दिन पर चढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 17 दिन पर चढ़े या खून की चढ़ाने की मात्रा कम हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने बताया था कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है, तो क्या उससे ये, जैसे डिजीज़ जेनेटिक है, तो क्या उससे ये है कि आगे की जो जनरेशन है उसको ये नहीं होगा, अगर इंसान अगर ये करा लेता है तो?
0: नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस मरीज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन जीन्स नहीं चेंज होती है। तो आप ट्रांसप्लांट करके जो है बोन मैरो बदलते हैं, जीन्स नहीं चेंज होती हैं, तो जीन्स तो वही रहेंगी, तो आपको ध्यान आगे की नस्ल के लिए तो देना पड़ेगा।
1: कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आगे जन ये चीज़ ठीक हो जाए, आगे जनरेशन में ना हो?
0: देखिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो कैरियर है थैलेसीमिया का, वो जीन जो एक है, अंश है, तो उससे मैरिज जो है वो नॉन कैरियर करे, जो कि नॉर्मल आदमी है जिसमें बिल्कुल भी कैरियर की अवस्था नहीं है, तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा।
1: तो आपने वैसे ये बताइए हमारे श्रोताओं की, जिन लोगों को थैलेसीमिया है तो उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए?
0: देखिए, थैलेसीमिया रोगी जो है, मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में जब ये शुरू किया था हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में, वयस्कों का क्लिनिक, तो दूर से मुरादाबाद, बड़ौत, इधर जगह से लोगों के शाम को फ़ोन आते थे कि डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, खून चढ़ रहा है इस मरीज़ का, ये थैलेसीमिया का है, तो मैं इनको ये दवा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो बहुत ही असमंजस होता था कि भाई ये दवा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है उन डॉक्टर साहब की भी, वो पूछ रहे हैं। तो मैं ये एक आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया रोगी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ उन्हें दिक्कत ये है कि उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है, और इसलिए उन्हें खून संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है, और थैलेसीमिया से ग्रस्त होने की वजह से उनको अपने शरीर में कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई परेशानी और नहीं होती है। तो उनके लिए जो है आप सारी दवाएं, सारी खुराक वो दे सकते हैं जो कि नॉर्मल आदमी को दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बताया, कि आयरन जो है

0: ना हो। तो आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पे मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के बारे में तो ज़रूर देखें और ये सोचें, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपने बारे में भी स्टेटस क्लियर कर लें, क्योंकि कोई भी, अगर हम लोग सब जागरूक रहेंगे और अपना हमें पता होगा कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं हैं। मैं मेजर को तो पता ही है, जो थैलेसीमिया माइनर अगर हमें पता है कि हम नहीं है, तो कम से कम हम आगे आने वाली नस्ल को तो थैलेसीमिया जैसे रोग से बचा सकते हैं, और तभी जा करके धीरे धीरे कम होगी ये बीमारी और हमारा जो इतनी परेशानियां हैं वो किसी को हमारे घरों में नहीं झेलनी पड़ेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबको स्वस्थ रहना चाहिए, और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जो कि प्रिवेंट की जा सकती है और जिसके लिए सरकार काफ़ी रोकथाम कर रही है, जो एंटीनेटल मदर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी नेस्ट्रॉप्टर और काफ़ी जांचें होती हैं, तो उसका ज़रूर जांच कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं अपने जो जच्चा है उनका, जिससे कि ये सारे टेस्ट हों, और अपनी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जब भी अगली बार कराएं तो डॉक्टर साहब से ज़रूर एक बार थैलेसीमिया के बारे में पूछें, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े और आप आगे आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचा सकें।
1: तो श्रोताओं, थैलेसीमिया से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों से में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ भी लड़ी जाती है। अगर समय रहते जांच हो और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी और आपको धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है health@aardelhi.com। दोस्तों, आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो श्रोताओं, आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बीमारी कोई भी हो, जागरूकता ज़रूरी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

0: पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई, चिरुथाइगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। ये अमेरिका के व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं अल्फा जेन का ये समय है, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं स्पॉन्सर प्रोग्राम ये लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशिष्ट पदार्थ या पदार्थों

के समूह के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनाशीलता के स्तर की विशेषता होती है। ये पदार्थ जिन्हें एलर्जी कहा जाता है अति संवेदनाशील व्यक्तियों में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। एलर्जी टिक्स, मोल्ड, भोजन, पराग, पालतू जानवर और धूल के कणों में पाई जा सकती है। शरीर में एलर्जी की बीमारी विकसित करने की आनुवंशिक प्रकृति को एटोपी के रूप में जाना जाता है। जब एलर्जिस्ट एटोपिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो एक प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है जो आगे चलकर एलर्जी और सूजन की ओर ले जाती है। एलर्जी किसी विशिष्ट एलर्जी वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो एलर्जी रिएक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ही एलर्जेंस शरीर में प्रवेश करते हैं शरीर द्वारा एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मस्तूल कोशिकाओं को प्रति एंटीबॉडी का जुड़ाव होता है। मस्तूल कोशिकाओं की प्रतिक्रिया हिस्टामिन को मुक्त करते हैं। यदि एलर्जी के कारण हिस्टामिन निकलता है तो इसे जलन और सूजन हो सकती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। अब आपको बता दें कि सबसे आम एलर्जीज क्या है दोस्तों। पहले तो पेंसिलिन से एलर्जी। पेंसिलिन के कारण होने वाले एलर्जी की प्रतिक्रिया एनाफिलैक्सिस से लेकर हल्के दाने तक हो सकती है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। मीट एलर्जी। पोल्ट्री उत्पाद और बीफ जैसे मांस के कारण एक व्यक्ति एलर्जी की प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकता है। इस एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षण को विकसित होने के कुछ समय लगता है। पराग कण, पोलन। ये ऐसे कण हैं जो पेड़ और घास द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर ये कण सांस के जरिए शरीर के भीतर पहुंच जाए तो इससे सरदर्द, छींक और गले में जलन हो सकती है। कॉस्मेटिक एलर्जी। कई कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे मॉइस्चराइजर, शैम्पू और अन्य चेहरे के उत्पादन एलर्जी का कारण बन सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण में सूखापन और सूजन शामिल है। डस्ट माइट्स। ये जानकर आपको बहुत हैरानी हो सकती है कि लेकिन कमरे के ज्यादातर कोनों में डस्ट माइट मौजूद है। बेडशीट्स, मैट्रेस, पर्दे और तकिए इनके घर है, इसीलिए आप हमेशा अपना घर का साफ सफाई ठीक से करें। दोस्तों, दुनिया भर में ज्ञात सबसे आम एलर्जी से एक प्रोटीन है जो जानवरों द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलती से इसे अंदर ले लेता है तो इसे घरघराहट हो सकती है। खाद्य एलर्जी। किसी व्यक्ति को खाद्य एलर्जी भी हो सकती है दोस्तों। ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दूध, काजू, अंडे, मेवा आदि जैसे डेयरी उत्पादों से एलर्जी हो सकता है। अगर कोई कीट व्यक्ति को काटता है तो एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। कीड़े का काटना भी खतरनाक हो सकता है। कीड़ों के कुछ काटना घातक भी हो सकता है। अगली एलर्जी है दोस्तों मोल्ड्स। ये फंगस जो घर के अंदर और नम स्थानों में आसानी से पाई जा सकती है। मोल्ड से एलर्जी जलना, छींकना और अंततः अस्थमा का कारण बन सकती है। परफ्यूम की खुशबू से भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। ये सबसे आम एलर्जीनों में से एक है जिसे त्वचा पर यानी अपने स्किन पर सोरनेस हो सकता है। एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक कॉकरोच के कारण हो सकता है जो घर में इधर उधर भाग रहे हैं। कॉकरोच द्वारा छोड़े गए श्वास संबंधी एलर्जी से व्यक्ति को अस्थमा का विकास हो सकता है। कॉकरोच एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को उचित धूप नहीं मिल रही है, अगर कोई व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है, एलर्जी एक विशेष एजेंट के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। लक्षणों में एलर्जिक राइनाइटिस, छींकना, साइनसाइटिस, सांस की तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़ना, खांसी, लाल चकते जो उठे हुए हैं और खुजली, सूजे हुए होंठ, जीभ, आंखें और चेहरा, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है
09515227039. आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीमारी और शुष्क और फटी त्वचा की भावना। एलर्जी के लक्षण तुरंत प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं। यह कुछ घंटों से लेकर 10 दिनों के बीच कहीं भी स्पष्ट हो सकता है। उपचार के साथ भी लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। एलर्जिन के लगातार संपर्क से बचने से इसे बारामासी बनने से रोका जा सकता है। एक व्यक्ति एलर्जी प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों को सीमित करना संभव है। एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए उपचार उपलब्ध है। एलर्जी की रोकथाम के लिए व्यक्ति को स्वयं को एलर्जी से बचने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में पालतू जानवर है तो एलर्जी से खुद को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि सतर्क रहने से भविष्य में एलर्जी से बचा जा सकता है। एंटीहिस्टामिन, ये दवाएं हिस्टामिन क्रियाओं को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। एक डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी की सलाह भी दे सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के पुनर्वास के लिए डॉक्टर द्वारा इस चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। एलर्जीज मौसमी हो सकते हैं, यानी सीजनल हो सकते हैं, यानी हे फीवर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल चीजें करके एलर्जी होने से बच सकते हैं, जैसे एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क को कम करना, इंडोर हवा की शुद्धता बनाए रखना, पॉलन ग्रेन्स पराग की मात्रा अधिक होने पर बाहर के संपर्क से बचना। ऐसे कई इलाज है दोस्तों, आप घर पर भी कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप पहले अपने एलर्जेंस को पहचाने और बाद में उसके संपर्क से आने में अपने आप को बचाए। तो ये थी दोस्तों एलर्जीज के बारे में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम अल्फा जन लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त वी दमन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। और आज अल्फा जन में थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, शुक्र है, शुक्रवार है, भगवान का शुक्र है कि शुक्रवार है। और हम हैं, आप हैं, और बातें होंगी कुछ इधर उधर की, और क्या आपका वीकेंड का प्रोग्राम है सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी पेटियां कसकर बांध दीजिए अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट का फुल डोज और पूरी गपशप बातें लेकर आपके साथ मैं रहूंगा पूरे एक घंटा, और बातें होंगी आपके साथ पूरे एक घंटा तो नहीं, क्योंकि 4:15 हो गए, तो पौना घंटा तो लगभग है ही आपके साथ, तो दिल को थोड़ा सा तसल्ली तो दे ही सकते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल शुरुआत करते हैं और उसके बाद आपके साथ बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

वीकेंड के प्लान बनना शुरू हो गया है, तो आपको बताते हैं कि वीकेंड में अगर आप फिल्मों का शौक रखते हैं तो वीकेंड में कौन कौन सी फिल्में जो 28 मई को, जी हाँ, आज के दिन सिनेमा घरों में रिलीज हो गई हैं, और अगर आप उनका शौक रखते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी फिल्में देख सकते हैं। जी हाँ, 28 मई के दिन, आज के दिन सिनेमाघरों में मनोरंजन का पूरा पैकेज जो है ना, ये रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड की एक्शन पैक्ड फिल्म से लेकर बॉलीवुड की फिल्मी ड्रामा तक कुल 6 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, और हो भी गई हैं। अगर रिलीज होने वाली क्या है, अरे हो गई हैं भाई। हाँ, आप इंतज़ार करते रहते हैं और फिल्में रिलीज़ हो जाती हैं, शाम का प्रोग्राम बनाएंगे आपकी, हाँ शाम को मूवी देखने जाएंगे, अरे भैया बहुत देर हो जाती है। तो आपको, अगर आप मूवी लवर हैं, तो वीकेंड पर फिल्मों के

साथ साथ अगर समय बिताना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या फिर अपने दोस्त के साथ या दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं जो आप देख सकते हैं। जी हाँ, दादी की शादी, ये इसके अंदर जो मेन लीड रोल में हैं वो हैं नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिधिमा कपूर साहनी, जो पहली बार फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं, और आर सार्थक कुमार सादिया जो है इसमें मेन करेक्टर हैं इसमें और मेन रोल में है। और ये जो फिल्म है ये कॉमेडी ड्रामा फिल्मी इंटरटेनर है। और कहानी की अगर बात करें तो कहानी फिल्म जो है एक मज़ेदार इमोशनल सफ़र पर ले जाती है। दरअसल घर की बुजुर्ग जो है दादी यानी कि नीतू कपूर दोबारा शादी करने का फैसला करती हैं, और इस फैसले से पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। और हलचल मच जाती है तो फिर क्या होता है भाई? तो वो आप फिल्म में देख सकते हो कि हलचल मचेगी तो क्या होगा। जाइए वीकेंड पर, प्रोग्राम बनाइए।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट डॉट जीओवी

0: www.radiomirchi.in पर लॉग ऑन करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और आज 8 मई के दिन कौन कौन सी फिल्में, जी हाँ 8 मई के दिन कौन कौन सी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं। अगर आप वीकेंड का प्लान बना लिया है या बनाने जा रहे हैं और फिल्म देखने का शौक रखते हैं तो फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। और जैसे अभी हमने बताया कि दादी की शादी जो रिलीज हो रही है आज ही के दिन, और नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिधिमा कपूर साहनी, आर सार्थक कुमार सादिया इसमें हैं। और दूसरी जो फिल्म है, दूसरी फिल्म है वो है डग डग। जी अल्ताफ खान इसमें एक्टर हैं, अल्ताफ खान, ऋत्विक पारेख। और ये जो फिल्म है ये ड्रामा मिस्ट्री है। यह फिल्म समाज की जो मान्यता है उसके ऊपर कटाक्ष करती है। एक गांव में एक्सीडेंट के बाद एक मोटरसाइकिल जो डुग डुग पुलिस को मिलती है और वो पुलिस उसे जब्त कर लेती है, लेकिन वह बार बार रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट वाली जगह पर वापस मिल जाती है। गांव वाले इस चमत्कार को मानते हैं या मोटरसाइकिल की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उसे एक चमत्कार समझकर एक मोटरसाइकिल की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो यही इस फिल्म के अंदर दिखाया है। बाकी मैं पूरी फिल्म अगर आपको उसकी स्टोरी बता दूंगा तो फिर देखने का मज़ा क्या रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप भी जाइए और इस फिल्म का मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए। और क्या है इस फिल्म में ये तो वहीं जाकर आपको पता लगेगा। फिलहाल आपके लिए अगला गाना जो मैं चला रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चला रहा हूँ कुमार सानू की आवाज़ में। तो ये रहा ये प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि आज फ्राइडे है। और वीकेंड में अगर आप मूवी देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने अभी आपको, जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, मैं उनको बता दूं कि आज यानी कि 8 मई को बहुत ही मज़ेदार फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट की पूरी जो है ना, पूरा पैकेज आया हुआ है। दादी की शादी की हमने अभी बात की, जो कॉमेडी ड्रामा फैमिली इंटरटेनर है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें नीतू कपूर, कपिल शर्मा और रिधिमा कपूर सानी हैं और आर सार्थक कुमार और सादिया हैं। यह फिल्म एक मज़ेदार और इमोशनल सफ़र पर ले जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। और डग डग, जिसके अंतर्गत जो एक्टर हैं, अल्ताफ खान है, ऋत्विक पारिक हैं, और ये ड्रामा मिस्ट्री है। और इसके बारे में मैंने बताया कि ये मान्यताओं को के ऊपर कटाक्ष करती है। एक गाँव में एक्सीडेंट के बाद एक मोटरसाइकिल जो डग डग पुलिस को बरामद होती है, और ये बार बार रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट वाली जगह पर मिल जाती है, और गांव वाले से चमत्कार मानते हैं और उसकी पूजा करनी शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। और अगली जो फिल्म है वो है मैं एक्टर नहीं हूँ। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है और ये ड्रामा फिल्म है। इसकी कहानी जो है वो है, इस फिल्म में एक मुंबई के एक एक्टर, फ्रैंकफर्ट के एक रिटायर्ड बैंकर के बीच वर्चुअल एक्टिंग सेशन के दौरान पनपे अनोखे रिश्ते की कहानी दिखाई गई है। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये भी फिल्म थिएटर पर रिलीज़ हो चुकी है, ये भी आप देख सकते हैं और अपना हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कौन सी फिल्म देखनी है। कॉमेडी का अगर चाह रखते हैं, ड्रामा का या फिर मिस्ट्री का, तो उसमें से आप फिल्में चूज़ करके वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ देख सकते हैं।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, और अल्फा जैन में आज जो है आज हम लेते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आप वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे हैं और मूवी का शौक रखते हैं तो कौन कौन सी मूवीज़ आज रिलीज हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगली जो हमारी लिस्ट में फिल्म है वो है आखिरी सवाल। जी हाँ, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन फिल्म का नाम है आखिरी सवाल, और जिसके एक्टर्स हैं संजय दत्त, रीधा चौधरी, नमशी चक्रवर्ती और अमित साध। ये पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और संजय दत्त एक बार फिर अपने पावरफुल अंदाज में वापसी कर रहे हैं, और फिल्म राजनीति, न्याय और सच की परतों को खोलती है, और ये डायलॉग ओरिएंटेड थ्रिलर है जो व्यवस्था के भीतर छिपे भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल पर आखिरी सवाल खड़ा करती है। तो अगर आप संजय दत्त के फैन हैं तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, और अल्फाजन में आज हम बात कर रहे हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, आज शुक्रवार है, भगवान का शुक्र है कि आज शुक्रवार है, और आज शुक्रवार को कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई इसके बारे में हमने आपको बताया, विस्तार में नहीं ब्रीफ में बताया। मैं आपको एक बार ही उनकी समरी बता देता हूँ कौन कौन सी फिल्में हैं जो आज रिलीज हुई हैं। दादी की शादी, जिसमें नीतू कपूर हैं, कपिल शर्मा है, रिधिमा कपूर साहनी है, आर सार्थव कुमार है, सादिया हैं। ये कॉमेडी ड्रामा फैमिली इंटरटेनर है। और अगली फिल्म जो रिलीज़ हुई है वो है डग डग, अल्ताफ खान और ऋत्विक पारेख इसमें एक्टर्स हैं। और अगली फिल्म जो है वो है मैं एक्टर नहीं हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें एक्टर हैं। और अगली फिल्म जो है वो है आखिरी सवाल, जो संजय दत्त और उसमें है नमिशी चक्रवर्ती और अमित साध हैं, और ये फिल्म भी रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों आप

कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं ये आपने डिसाइड करना है, और एंजॉय कीजिए वीकेंड को। और मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली के मौसम का क्या हाल है। तो दिल्ली के मौसम की अगर बात करें तो आज यानी कि 8 मई 2026 को तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और जो सूर्यास्त है वो शाम 7 बजे होगा। नमी का स्तर 31.1 है और वहीं वायुमंडल दबाव 1008 के स्तर पर है। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक इस वक्त स्मूथ है। और बाकी आपके पास कोई ट्रैफिक की जानकारी है, कहीं कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो बता सकते हैं कि अगर कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं डाइवर्जन है तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा ट्रैक।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, अल्फा जैन। और

डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। अदरवाइज खुद मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि आप कई बार खुद दवा लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और फिलहाल अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी से हाथ मिलाते रहिए, और वीकेंड को वो पूरा फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि पूरे हफ्ते आप पूरे मेहनत करते हैं, और लेकिन ये जो वीकेंड होता है ये फैमिली टाइम होता है। फैमिली के लिए पूरा समय निकालिए, दोस्तों के लिए समय निकालिए, और अपनी पूरी जो है ना बॉडी की और माइंड की बैटरीज़ को रिचार्ज कीजिए, इंजॉय कीजिए। एंड मिलते हैं फिर एक नए सफर पर। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार

मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सैटेलाइट्स में अब शहर से जुड़ी बातों का सिलसिला, ताकि आप अपडेटेड रहें, अलर्ट और हैप्पी रहें। 5 बज चुके हैं। सांझ के शो में आपके साथ हूं मैं, मेरा नाम शैली भाषांजलि।

आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस के बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा है, कभी ना कभी जुड़े भी हैं कई लोग। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कभी युद्ध, कभी संकट, तो आशा का प्रतीक बनकर के रेड क्रॉस आती है, हाथ बढ़ाती है। एक संस्था नहीं है, बस एक प्रतीक है, इट्स अ होप, और कई कई कार्य करती है। रक्तदान शिविर हो, आपदा राहत हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, मानव कल्याण के लिए बहुत कार्य करती है। हर इंसान की जान की कीमत बराबर है, क्योंकि ये माना जाता है कि सेवा केवल बड़े कार्यों से नहीं होती, मे बी जस्ट अ यूनिट ऑफ ब्लड टू समवन हु रियली नीड्स इट। ह्यूमैनिटी की सबसे खूबसूरत भाषा है कंपैशन, द काइंडनेस एंड द हेल्प।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। भारतीय प्रसारण के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इसके नेतृत्व और दृष्टिकोण दोनों में बदलाव किया गया। अगस्त 1935 में लायनल फिल्डन को भारत का पहला कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नियुक्त किया गया। बीबीसी में 5 साल तक वरिष्ठ कार्यक्रम निर्माता रहे फिल्डन अपने साथ अनुभव और एक नई सोच लेकर आए थे। उनका उद्देश्य था भारत में रेडियो को एक संगठित, पेशेवर और प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित करना। उनके नेतृत्व में प्रसारण व्यवस्था को नई संरचना मिली। उन्होंने न केवल रेडियो नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया बल्कि इसकी गुणवत्ता और पहुंच को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया। फिल्डन ने हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया ताकि रेडियो देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सांस्कृतिक दूरी को कम किया जा सके। इसी दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम था कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जिसने भारत में प्रसारण को नई पहचान दी। लायनल फिल्डन का योगदान भारतीय रेडियो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जहां से रेडियो ने एक सशक्त राष्ट्रीय माध्यम बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। 5:16 हमारे स्टूडियो की घड़ी में शो में आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। और इस शो में क्या होता है, इस शो में शहर से जुड़ी बातों का सिलसिला होता है। चाहे जिंदगी बहुत खास ना चल रही हो, आम जिंदगी का दौर हो जिसकी सुर्खियां भले ही ना बनती हो, पर साधारण होकर भी रोज असाधारण संघर्ष करती है, वो है बात बहुत खास।

आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समाज में विश्व में इसके प्रति जागरूकता हो। डॉक्टर्स का कहना है कि एक गंभीर रक्त बीमारी है जिसमें शरीर को पर्याप्त स्वस्थ रक्त नहीं बन पाता और इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों को मरीजों को बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इस दिवस को जागरूकता बढ़ाई जाती है, चर्चा होती है ताकि थैलेसीमिया से बचाव संभव है, समय पर जाँच हो, नियमित रक्तदान हो, एक जिम्मेदार समाज का निर्माण हो। एवरीबडीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पेरेटिव। सैटेलाइट्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है शैली भाषांजलि। जुड़े रहिए सिटी के न्यूज व्यूज ओपिनियन बातें इवेंट्स इन सबको मिला जुला करके सांझ का शो सैटेलाइट्स।

अगर वीकेंड प्लान है आपका टू ड्राइव आउट ऑफ द सिटी, तो बी इन्फॉर्म्ड दैट आपका जो फास्ट टैग नंबर है आपकी गाड़ी के नंबर से मेल नहीं खाता, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर आपस में मैच नहीं करता तो आपका फास्ट टैग बंद करके एक लिस्ट होती है जिसे कहते हैं ब्लैक लिस्ट, उसमें डाला जाएगा, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। क्योंकि टोल प्लाजा पर फास्ट टैग से टोल कटते हुए फास्ट टैग रीडर और गाड़ी का नंबर जब मेल नहीं खाया तो इस तरह की कई शिकायतें आईं। तो इसलिए NHAI ने फास्ट टैग जारी करने वाले सभी बैंकों से कहा है कि इसको मिला लीजिए, मिलान कर लीजिए, एंड देन ऐसी कोई लिस्ट बनती है तो उसमें चला जाएगा। बट अगर मेल खा गया तो आप जा सकते हैं अपना वीकेंड या वीकडे एंजॉय कर सकते हैं। 5:25 और 30 सेकंड हमारे स्टूडियो की घड़ी में। स्टे ट्यून्ड टू सैटेलाइट।

0: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सैटेलाइट। सांझ के शो में आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि, और आज इस शो में बात करना चाहूंगी CCRT के बारे में, जो देश की उन प्रमुख संस्थाओं में शामिल है जो शिक्षा और संस्कृति को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये संस्था संस्कृति मंत्रालय की कई कई योजनाओं को लागू करती है। अब आने वाला है इंद्रधनुष 2026 विकसित भारत, ये बच्चों का समर कैंप शुरू होने वाला है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं CCRT के चेयरमैन डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर, एंड ही इज अ थिएटर अक्लेम्ड गुरु, अ सोल रेसिपिएंट ऑफ डीलिट इन एक्चुअली अक्रॉस द ग्लोब एंड सो मच मोर टू हिज अक्लेम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सैटेलाइट्स में।
1: धन्यवाद।
0: और CCRT के निदेशक के रूप में आप सक्रिय योगदान देने के लिए बहुत माने जाते हैं। इस संस्था के बारे में हमारे जो तमाम लिसनर्स हैं उनको बताइए।
1: नमस्कार प्रिय अभिभावकों, शिक्षकों और मेरे प्यारे बच्चों, CCRT सेंटर फॉर कल्चर

0: रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, यानी कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह भारतीय संस्कृति मंत्रालय का एक ब्रांच है और यहाँ पर हम लोग टीचर्स को, मतलब सारे देश के जो टीचर्स है उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम प्रशिक्षण देते हैं और उनके माध्यम से देश की सेवा की जाती है, राष्ट्र की सेवा की जा सकती है, खास करके संस्कृति और शिक्षण में। तो शिक्षण को संस्कृति के साथ जोड़ना, कला के माध्यम से ये बात करना और कला के माध्यम से सारी बातें जोड़ना, लिटरेचर में काम करना, और ये सारे जो टीचर्स है सारे देश भर के, ये सारे देश भर के टीचर्स को ट्रेनिंग देना, उनके वर्कशॉप आयोजित करना और उनके माध्यम से फिर जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक वो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: ये एक हो गया
1: जी।
0: और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान भी है और वो ये है कि हम लोग सीसीआरटी के माध्यम से कुछ स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स देते हैं।
1: अच्छा।
0: और छोटे बच्चों को भी ये दी जाती है। तो छोटा बच्चा जो होता है वो यहाँ से स्कॉलरशिप पाता है तो उनको हम पढ़ाते भी हैं, उनका ट्रेनिंग भी करवाते हैं और इस प्रकार से कला माध्यम से उनके जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती जाती है धीरे धीरे और वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं कई साल तक के। तो दो विशेष बातें होती है जो सोसाइटी के माध्यम से हम करते हैं और इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं लोगों को। और हमने टीचर उस समय जब ये इसकी संकल्पना सामने आई थी तब ये सोचा गया था कि यदि हमको संस्कृति में काम करना है, कला में काम करना है और लोगों तक यदि हमारी जो संस्कृति सनातन संस्कृति है इसको यदि लोगों तक पहुंचाना है तो टीचर एक बेस्ट माध्यम है, क्योंकि टीचर सारे देश भर में होते हैं और टीचर के ऊपर बड़ा विश्वास होता है घर वालों का भी और टीचर के ऊपर विश्वास होता है स्टूडेंट्स का भी, बच्चों का भी। और बच्चों में जो पोटेंशियल्स होते हैं वो बाहर निकालने का कार्य टीचर से अच्छा और कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग देना, बच्चों को स्कॉलरशिप फेलोशिप देना और इस माध्यम से फिर अनेक प्रकार के वर्कशॉप आयोजित करना, उसके बाद में उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करना, शेड्यूल बनाना, अच्छे अच्छे देश भर के जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स है, जाने माने एक्सपर्ट्स है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, सारी ललितकलाओं के जो एक्सपर्ट्स है उनको बुलाना, उनको यहाँ पे लाना, उनका जो अनुभव है अपना एक सांस्कृतिक अनुभव, उनका कला के माध्यम से उनका एक बहुत बड़ा अनुभव होता है
1: जी।
0: तो वो अनुभव जो होता है, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी होते हैं, अपने फील्ड में काम करने वाले टॉप के लोग होते हैं, टॉप कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर प्रशिक्षण देने आते हैं।
1: क्या बात।
0: तो नेचुरली उनके माध्यम से जो ट्रेनिंग मिलता है टीचर्स को और जब टीचर्स फिर ट्रेनिंग देते हैं स्कूल में बच्चों को, तो नेचुरली हम जो चाहते हैं कि टीचर के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा जाए, सारे देश भर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर संस्कार किए जाए, उनको संवेदनशील बनाया जाए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम सीसीआरटी करता है
1: जी।
0: और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यानी वो जो बनाई गई उस पर भी सीसीआरटी की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स लड़के होते हैं वो रिसर्च भी करते हैं, तो रिसर्च के माध्यम से बहुत सारी हमारे पब्लिकेशन भी उस माध्यम से हुए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिसर्च जो होता है उन्होंने जो किया हुआ होता है उसको भी हम एनसीईआरटी को हम मदद करते हैं उसमें, जैसा कि वो पेडागॉजी होती है, अभ्यासक्रम बनाना होता है तो उसमें हम उनको भी बहुत मदद करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसकी जो भव्यता है काम की ये बहुत बड़ी है, पूरे देश भर में है, हमारे 4 सब सेंटर्स भी है, यानी हमारा सिर्फ दिल्ली में जो है ये मेन कार्यालय है, मेन सेंटर है यहाँ का, लेकिन इसके अलावा जो सेंटर्स है हमारे उदयपुर में है, गुवाहाटी में है, दमोह में है और हैदराबाद में है, ये भी बड़े सेंटर्स हैं। और तीसरी बात ऐसी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ ये जो कार्य हम जो करते हैं इसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, लिटरेरी आर्ट फॉर्म जो है इन सारे इसमें काम करते हैं। तो इस प्रकार से एकेडमिक लेवल पर भी काम होता है, रिसर्च लेवल पर भी काम होता है, प्रैक्टिकल लेवल पर भी काम होता है, जो प्रैक्टिकली जो गांव में बड़े आर्टिस्ट काम करते हैं उनको भी हम यहां पर बुलाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल वो वर्क करते हैं, तो उनके साथ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टीचर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक तो तुम्हारी एकेडमिक लेवल हो गई, रिसर्च लेवल हो गई, पर दूसरी ओर प्रैक्टिकल लेवल पर जब उनको काम मिलता है या काम सीखते हैं टीचर्स लोग, तो यहाँ से सीख कर जो वो जाते हैं तो बड़े एक अलग, मतलब उनको क्रिएशन का जो आनंद मिलता है वो अलग ही प्रकार का आनंद होता है। और इसके साथ साथ जितनी भी कलाएं हैं वो सारी हम

0: आते हैं। इसलिए अभी जो बच्चे हमने एक जो कल्पना की है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल्पना की है विकसित भारत 2047 की,
1: जी
0: ये विकसित भारत 2047 क्या है इसके बारे में भी हमने कुछ विचार किया हुआ है। और ये एक ओवरऑल कल्पना जो है ये सीसीआरटी की इस प्रकार से है। और यहाँ पर और एक बात है कि हम बहुत बड़ा यानी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से हम लोग यहाँ पे कला गुरुकुल और कला ग्राम की स्थापना करने जा रहे हैं जिसका कार्य अभी शुरू हो गया है। तो ये कला गुरुकुल मतलब एकेडमिक लेवल पर काम होगा और कला ग्राम मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर काम होगा। हमारा जो सेंटर है इसी सेंटर में 3.5 एकड़ लैंड पर बहुत बड़ा कार्य शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है, एक साल में कंप्लीट हो जाएगा। उस समय फिर ये जो प्लेस है सीसीआरटी बहुत वाइब्रेंट बन जाएगी।
1: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि भारत जो एक युवा देश है, जितने युवा अभी सुन रहे हैं पूरे देश के, सीसीआरटी यानी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, इसकी भव्यता आपके मुख से सुनकर के जिस शब्दों में आपने बांधा है, एक मजबूत स्तंभ है ये हमारे देश का।
0: हाँ जी।
1: तो ये बहुत खूब आपने इस तरह से इसकी बात संक्षिप्त रूप में बताई। सर, आने वाला जो समर वर्कशॉप है इंद्रधनुष 2026, उसमें किस तरह से अपने रंगों से बच्चों को निखारेंगे आप लोग?
0: हाँ, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा होता है, हर साल होता है
1: जी।
0: इस साल का जो प्रोजेक्ट है इंद्रधनुष 2026
1: जी,
0: इसको हमने सिर्फ इंद्रधनुष 2026 ऐसा नहीं बोला है, तो इंद्रधनुष 2026 विकसित भारत,
1: वाह,
0: ये उसका टाइटल है। अब देखिए कि विकसित भारत क्या है, विकसित भारत कौन करेगा, भारत का विकास कौन करेगा? जैसा कि मैंने बताया कि टीचर्स करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चों को है तो बच्चे भी तो उसमें सहभागी हो सकते हैं। तो इस विचार से हमने 7 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम यहाँ पर अवसर दे रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत अवसर है उनके लिए। और कैसा है कि ये जो बच्चे हैं ये इनको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ये 20 मई से 30 मई तक का हमारा ये वर्कशॉप है
1: जी।
0: इसमें जो ट्रेनिंग दिया जाएगा बच्चों को वो अलग अलग प्रकार की कलाओं में दिया जाएगा, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, सामसायिक नृत्य है, कॉन्टेम्पररी है, इतना ही नहीं तो शास्त्रीय संगीत है, वाद्य संगीत है, उसी प्रकार से थिएटर में नाट्य कला पूरा मूक अभिनय होता है, फिर विजुअल आर्ट्स में आप देखोगे कि फोटोग्राफी है, चित्रकला है, इतना ही नहीं तो फिल्म निर्माण, रेडियो एवं टीवी एंकरिंग।
1: सर, ये आपके यहाँ
0: देने वाले खास करके
1: जी जी
0: ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में रचनात्मक कठपुतली कला जो होती है, कहानी कहने की कला
1: जी,
0: कहानी कहते भी आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग जो होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है
1: जी।
0: आजकल तो ऐसा नए जमाने में पटकथा लेखन जो है उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंस है।
1: एब्सोल्युटली।
0: मेकअप और वेशभूषा है, आज ऐसा है कि मेकअप का साधा डिप्लोमा करते हैं लोग, उसमें अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तो वेशभूषा जैसी कला है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे अनेक रचनात्मक और कौशल आधारित जो गतिविधियां हैं उनका हम प्रशिक्षण यहाँ पर बच्चों को देंगे, जो आने वाले जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट आएंगे जो प्रैक्टिकली बहुत ट्रेंड है
1: जी।
0: अब इतनी सारी जो कलाओं की हमने बात की है, तो इतनी सारी कलाएं जब उनको सीखने को मिलेगी तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है। यहाँ पर
1: मेरी उत्सुकता ये है कि बच्चे जो आपने एक वर्ष आयु वर्ष बताया वो आपके यहाँ आ सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं?
0: हाँ, 7 साल से 16 साल तक,
1: 7 साल से 16 साल तक के बच्चे सीसीआरटी में
0: यहाँ पे, हाँ यहाँ पे उनको देंगे ट्रेनिंग
1: देंगे आप?
0: हाँ, ट्रेनिंग देंगे। इवन डिजिटल युग में तो आप जानते हो कि इवन डिजिटलाइज ट्रेनिंग जो होता है और सांस्कृतिक और रचनात्मक कौशल का विकास
1: जी,
0: ये जो हो डिजिटल युग में तो बहुत ही जरूरी है
1: जी। एब्सोल्युटली।
0: ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम हम नहीं मानते, बल्कि इसमें क्या है कि बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसा रहेगा इसके भी बारे में हमने इसमें कल्पना की है, ताकि यहाँ से जब वो पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ करते जाएंगे, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और इसके बदौलत एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उनको।
1: एब्सोल्युटली।
0: मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये बड़ा अद्भुत अवसर हम उनको दे रहे हैं, और जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर आएंगे उनके साथ में हम काम करेंगे, सीखने को सिखाने को मिलेगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की ये हमने आयोजन किया हुआ है, और संस्कृति की विधाओं को सीखते हुए अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है
1: जी। आपने आवाज सुनी सीसीआरटी के चेयरमैन डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी की। समय की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है, चलते चलते सर युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो ये कहूंगा कि युवाओं को इतना अच्छा मौका है अभी, क्योंकि यदि हमको राष्ट्र की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, हम विकसित भारत की यदि कल्पना करते हैं ऐसे

0: समय में यदि इस प्रकार का यदि यहाँ पर आयोजन होता है तो ये तो बहुत बहुत ही बहुत अच्छा चांस बच्चों को मिल रहा है। बच्चों ने आना चाहिए, ये सीखना चाहिए और उनमें जो पोटेंशियल्स है उसका उपयोग उन्होंने खुद ने करना चाहिए, क्रिएटिविटी करना चाहिए और इसके माध्यम से उनको बहुत बड़ा चांस यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि सरकार जो है आज जो भारत सरकार जो है ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दे रही है, अलग अलग अलग अलग प्रकार से वो अपना थिंकिंग कर रही है और उसके माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ देना चाहती है। तो ऐसे समय युवा जो पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी ने तो इसके ये जो मौका मिल रहा है इसका तो बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल सर।
0: उनको बहुत बड़ा चांस मिल रहा है यहाँ पे देश की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का।
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आपके शब्दों ने जानकारी फैलाई है पूरे देश में हमारे युवाओं तक, इसके लिए हम आपका बहुत आभार करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर हमारे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच सर। और भारतीय कला परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को बहुत ही मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है सीसीआरटी का। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट, स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

टू आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स, सिटी से रिलेटेड बातें आपसे हम करते हैं। वेल, आपकी उस लाइफ में जिसमें बहुत सारा स्क्रीन टाइम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, मैं ना डाक घर की बात करना चाहती हूँ, बिकॉज सिटी न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल आपको रखना है। तो नेहरू प्लेस डाकघर को खोल दिया गया, रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया गया है। एब्सोल्यूटली मॉडर्न, जो जिसको कहते हैं ना, सपोर्ट सिस्टम के साथ, सुविधाओं के साथ, केवल चिट्ठियों तक सीमित नहीं रहेगा ये नेहरू प्लेस का डाकघर, बल्कि यहाँ पे पार्सल, बैंकिंग, बीमा, आधार, पासपोर्ट, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो भी एक जगह मिलेगी। न्यू टेक्निक, डिजिटल सुविधाएं, ये है, इसी के ज़रिए लोगों तक तेज़ सेवा हो, आसान सेवा हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि बदलते समय के साथ डाक विभाग एक मॉडर्न रूप, एक आधुनिक रूप ले रहा है ताकि सुविधाएँ मिल सके। वैसे डाकघर का नाम लेते ही ना आंखों के सामने एक पूरा दौर आ जाता है, एंड स्पेशली इन पर्टिकुलरली फॉर अ सर्टेन एज ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि वो पीले पोस्टकार्ड याद आते हैं, वो नीली अंतर्देशी चिट्ठी याद आती है, मनी ऑर्डर याद आता है, और वो टिपिकल साइकिल और घंटी, डाकिया, उनकी आवाज़, कितनी भावनाएं जुड़ी होती थी। कोई शुभकामना हो, कोई पत्र भेजना हो, दूर दराज बैठे लोगों की चिट्ठी का इंतज़ार, एक अलग एहसास होता था इसलिए। लेकिन समय बदल गया, डाकघर की तकनीक भी बदल रही है, आगे बढ़ रही है। पुरानी यादें ताज़ा तो कर लीजिए, लेकिन नए युग में जो ढल गया है उसको यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा।

वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स एंड आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे दैट यू ड्राइविंग एब्सोल्युटली केयरफुली। 6 बजने वाले हैं और ड्राइव केयरफुली इसलिए कि ये तो अच्छी बात है, सच्ची बात है, शहर की सुरक्षा की बात है, लेकिन नियम की भी बात है, क्योंकि बहुत सारा एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, डिजिटल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो कुछ कुछ नई चीज़ें चालू कर रही है, तय कर रही है। इनफैक्ट जब चलान हो जाता है ना, तो अब ये कहा गया है कि 45 डेज़ के भीतर या तो जुर्माना भर दीजिए या उसको ऑनलाइन, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया, गलती से हो गया, चुनौती देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और तय समय में कार्रवाई नहीं करने पर वो ऑटोमेटिकली चालान ही बन जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा। और लगातार चालान अगर नहीं भरेंगे तो मतलब देर इज़ नो डेफिनेट डेट और डेडलाइन, लगातार चालान जुड़ते जा रहे हैं, आप नहीं भर रहे हैं, तो बहुत लंबा समय अगर तय हो गया है तो वो कह रहे हैं विद इन 45 डेज अगर नहीं भरा तो उसके बाद जो वाहन से जुड़ी सेवाएं हैं, जैसे टैक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया या लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, तो वो रोका जा सकता है। तो इसलिए बार बार नियम ना तोड़िए, सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है, बट वहाँ तक बात क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए लेट्स फॉलो ऑल द रूल्स।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक

अकादमी उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों, राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऑल राइट, लिसनर्स, आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत सारा प्यार। और जी हाँ, मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी ज़िंदगी से कभी ना हारें। ये सब कॉज फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही ज़िंदगी में करना है, आपका मेरा वादा है। और इस वादे के साथ बस यही इरादा है कि जितना हो सके हम आपको एंटरटेन कर सकें, जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशंस भी हम आपको हमारे अलग अलग शोज़ के माध्यम से थ्रू हम आपको देते रहते हैं। सो आज है मैसेज मसाला मिक्स, और आज है हमारी वंडरफुल फ्राइडे सीरीज़। हाँ बिल्कुल, से मैं आपके साथ बनी रहूंगी इस पूरी सीरीज में। और हमारा ये जो मैसेज मसाला मिक्स है ना, बेसिकली मैसेज पर बेस्ड हमारा ये शो है, तो आपके मैसेजेस का हमें इस शो में खास तौर पे रहता है इंतजार। और इससे पहले कि आज के टॉपिक के बारे में बात करें, आज हम किसी चीज के बारे में बात करने की कोशिश करें, आपके ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो यही प्यार जो है इस पूरे शो के टाइमिंग में, इस पूरे शो के दौरान आपको बनाए रखना है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आज हम एक बहुत ही खास अनमोल दौलत के बारे में

करने जा रहे हैं, ये पूरा शो हम उसे समर्पित कर रहे हैं, जिसके बिना जीवन की जो कल्पना है ना वो हम नहीं कर सकते। जीवन की कल्पना भी अधूरी है और वो है जल, क्योंकि धरती की हर मुस्कान पानी की हर बूंद से जुड़ी है। और हमारी ये जो सभ्यताएं हैं ना, जिन पे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, ये हमारी सारी सभ्यताएं भी नदियों के आसपास, यानी कि पानी जहाँ पर है, जल यहाँ पर है, उसके आसपास ही पनपी हैं और आज इतनी बड़ी सभ्यता के रूप में हम सब खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि जल के बिना कैसा है कल, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वाटर सेविंग वीक यानी कि जल संरक्षण सप्ताह इस समय 4 मई से 8 मई तक बहुत सारे विश्व के अलग अलग कोनों में इसे मनाया जाता है। ये सप्ताह बेसिकली हमें यही याद दिलाता है कि जल जो है वो केवल हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एक्चुअल में पूरा जीवन है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जिस तरीके से पानी कम होता जा रहा है, जिस तरीके से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जल को बचाया जाए ताकि आगे आने वाला जीवन जो है वो जल के साथ ही आगे की तरफ बढ़ सके, इसके लिए इस तरीके के जो वीक्स हैं ये ख़ास तौर से मनाए जाते हैं कि ताकि हम पानी का बचाव करें, पानी को बचाएं, छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव की ओर और उस भविष्य की ओर हम अग्रसर हों जहां हर बूंद सुरक्षित है। तो आप भी ये सारे जो वीक्स हैं, ये सारे डेज़ हैं, ये बेसिकली इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, ताकि हम याद करें कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। सो आज का टॉपिक आप बिल्कुल से समझ गए होंगे, हम जल के बारे में बात करेंगे, जल को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैसेज होना चाहिए हमेशा की तरह बहुत शॉर्ट और बहुत प्यारा एंड टू द पॉइंट। सिर्फ 3 बातें आपको बतानी हैं कि आप 3 कौन सी बातें हैं, कौन सी बदलाव हैं अपने जीवन में जो लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जल को बचाने में आपने अपना योगदान दिया है। सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड यस ऑफ कोर्स कीप सेंडिंग योर मैसेजेस। और इस ट्रैक के उस पार मैं बिल्कुल से लौटूंगी और आपके मैसेजेस आप ही के साथ शेयर करूंगी।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ऑल राइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती, जो कभी नहीं हारती, चाहती है कि आप भी ज़िंदगी से कभी ना हारें। और ज़िंदगी से ना हारने के लिए ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से ना गर्मियों में याद आ ही जाता है कि हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। हमें स्वच्छ पानी की, वाटर की, जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए ना वाटर वाइज नाम की एक संस्था है, जिन्होंने सोचा कि चलिए कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे लोगों को ना हम समय समय पर याद दिला सकें कि कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हम अपने लेवल पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जल को बचाया जा सके, क्योंकि जल जीवन है, जल हमारा कल है, कल को बचाया जा सके, जीवन को बचाया जा सके। तो ऐसे में उन्होंने एक पूरे वीक की शुरुआत करी, चलिए एक पूरा वीक हम डेडिकेट कर देते हैं वाटर सेविंग वीक के नाम से, और वाटर सेविंग वीक की शुरुआत कर दी गई। और वाटर सेविंग वीक सिर्फ एक ही जगह पर नहीं और एक ही डेट को नहीं, बहुत जगहों पे बहुत अलग अलग तरीकों से जल को संरक्षित करने का जो अभियान है, जो मुहिम है, वो चलाई जाती है। तो ऐसे में हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, बस इसी के लिए आज का ये जो पूरा हमारा मैसेज मसाला मिक्स का सीरीज है ना, इसको डेडिकेट किया हुआ है। 9818107098681070 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बन सकते हैं हमारी आज की सीरीज का हिस्सा। और फिलहाल कुछ मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास, और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें हमें पहले से नहीं पता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों को हम दोहराते रहें तो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, नॉक करते रहो, नॉक करते रहो, नॉक करते रहो, तो दरवाज़ा खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं हीरामणि वर्मा जी, ये दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इनका ये मैसेज आया है। साथ में लिखा है कि हम सब जानते हैं जल का सही उपयोग कीजिए, और साथ में लिखा है कि हमारे गांव में जो पानी का जल है ना, जो वर्षा का जल है, स्पेशली वर्षा का जो पानी है, उसको हम संग्रहित करने की

कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा हमने तालाब बनाया हुआ है जिसे हम लोग बांधा बोलते हैं। मुझे लगता है कि गांव में इस तरीके के कल्चर जो थे वो बहुत पहले से ही थे कि किस तरीके से हम रेन वाटर को एक जगह पर इकट्ठा करें ताकि वो हमारे बाद में भी काम आ सके। तो ऐसा कुछ भी अनोखा सा है, यूनिक सा है, जो आपको लगता है कि आप या आपके आसपास, आपकी कॉलोनी, आपका शहर जो है वो जल को बचाने के लिए कर रहा है, तो आज आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है, पानी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, जल क्यों ज़रूरी है, ये सब तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो आप ये सब ना बताएं, आप बस ये बताएं कि क्या यूनिक तरीका आपके एरिया में या आप अपने आप से अपने लेवल पे अपनाते हैं जिससे आपको लगता है कि आप जल को बचाने में अपना जो योगदान है ना वो दे रहे हैं। फिलहाल एक ट्रैक आप सबके लिए।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

ऑल राइट लिसनर, सो सीधा बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ. और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जल को बचाने की, भविष्य को बचाने की, क्योंकि जल ही हमारा कल है. और इसका एक ख़ास रीज़न है क्योंकि ये जो पूरा वीक है ना, इसे वर्ल्ड वाटर सेविंग वीक के रूप में भी बहुत सी जगहों पर मनाया जाता है. तो क्यों ना हम भी इसी का फ़ायदा उठाएँ और इस बारे में बात करें, ताकि छोटे छोटे यूनिक आइडियाज़ के साथ ना हम इसके संरक्षण में अपना योगदान दे सके. तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज है, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है. और ये मैसेज के बाद में एक स्पेशली स्टार्स के बीच में लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर शेर है. मैसेज है सूरज का दिल्ली से, और लिखा है कि हमारे लिए तो जल जीवन है. और उन्होंने एक यूनिक सी बात बोली है, वैसे सुनने में ऐसे लगता है कि ये भी क्या बात है, लेकिन अगर गहरे से सोचेंगे तो लगेगा ये तो बहुत खास बात है. कि मैं ना बहुत बड़े ग्लास में पानी नहीं पीता हूँ, मैं छोटे ग्लास में पानी पीता हूँ ताकि पानी बर्बाद ना हो. कई बार हम पूरा ग्लास पानी ले लेते हैं और फिर उतना पी नहीं पाते हैं, उस पानी को छोड़ देते हैं, और वो पानी फिर वेस्ट ही होता है, वो लिटरली वेस्ट होता है. मतलब हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि जो पानी थोड़ा सा बच गया है, स्पेशली हमारे ऑफिस एरियाज में, हम जहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पर किसी से मिलने जाते हैं और वो हमें पानी सर्व करते हैं, हमें प्यास नहीं है, पानी बच गया, वो पानी कहाँ गया, वो पानी बस बर्बाद हो गया. तो ये मुझे बहुत यूनिक बात लगी है कि उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं, बाकी को रहने दीजिए. एंड थैंक यू सूरज फॉर शेयरिंग दिस, मैं भी इस बात का खास ख्याल रखूंगी. रंजीत कुमार मंडल का मैसेज है सिकटी अररिया बिहार से. अच्छा, अररिया बिहार तो सुना था, सिकटी पहली बार मैं सुन रही हूँ. इनका मैसेज है कि एक तो मैं नल खुला नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई बर्तन में पानी भर लूँ और उसके बाद ही मैं उससे मुँह धोऊँ. यानी कि वॉश बेसिन पे हम आदत में हैं कि हम पानी चला देते हैं और उसके बाद हम कोई भी प्रक्रिया है, चाहे हाथ धोना है चाहे मुँह धोना है, वो शुरू करते हैं. तो मुझे लगता है कि उसको भी हम कोशिश करके उसको भी छोड़ सकते हैं, ताकि हम पानी को ऐसे बहने ना दें, बिकॉज पानी को बचाना है. और साथ में लिखा है कि जो पानी रेन हार्वेस्टिंग, मतलब वर्षा का जो जल है, उसको हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं. सो थैंक यू सो मच रंजीत जी, आपके यूनिक आइडियाज़ जो हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए. नरेंद्र सोनी का मैसेज है देवीगढ़ पटियाला से, लिखा है गुड इवनिंग, शुभ संध्या, थैंक यू. और लिखा है कि हम किसान हैं तो पानी की बचत करने के लिए हमने खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, कि हम पानी को स्प्रिंकल करते हैं, वो सिस्टम लगाया हुआ है. उससे पानी वेस्ट भी नहीं होता है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं जाता है, और स्प्रिंकल करने से पूरी तरफ चारों तरफ प्रॉपर तरीके से पानी जो है, उतना ही पानी जितना उस खेती को, उस पौधे को या उस पेड़ को चाहिए, उतना ही उसको मिलता है. तो आई थिंक ये सब बहुत यूनिक आइडियाज़ हैं जो उसको हम यूज़ करके जल को बचा सकते हैं. सो यहाँ पे मोहम्मद सरफराज आलम का भी एक मैसेज है, और कुछ अमेजिंग सा इन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हमें एक ट्रैक जो है वो प्ले करना चाहिए. सो एक ट्रैक आप सबके लिए यहाँ पर इसको सुनते हैं, और इसके बाद मैं मोहम्मद सरफराज आलम का जो यूनिक आइडिया है वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग.

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

ऑलराइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. जी हाँ, इस समय चल रहा है हमारा वन एंड ओनली शो मैसेज मसाला मिक्स, और आज हमारी फ्राइडे सीरीज, और आज हम बात कर रहे हैं जल के बारे में, जो कि हमारा जीवन है, जो कि हमारा भविष्य है. जल ही हमारा कल है, और ये बात आज ख़ास तौर पे इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ जगहों पर विश्व में ये जो सप्ताह अभी गया है ना, और आज इसका ये जो लास्ट चंक है, तो उसमें पूरा का पूरा वाटर सेविंग वीक जो है, यानी कि जल संरक्षण सप्ताह जो है, उसको मनाया गया है और मनाया जा रहा है. तो ऐसे में मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम कि

हम भी इसके बारे में थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं, वैसे तो करते रहते हैं। क्या पता कुछ यूनिक आइडियाज़ हमें और मिल जाएं जिससे हम और ज़्यादा जल को बचाने में अपना योगदान दे सकें। वेल, मोहम्मद सरफराज आलम की मैसेज पर मैंने लास्ट बात ख़त्म करी थी कि उनका मैसेज मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बाकी मुझे ये नहीं पता है कि उससे ऐसा तो नहीं कि मच्छर आ जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, बट दैट आई डोंट नो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा है क्योंकि जिस क्यूटनेस के साथ बच्चों ने उस जगह का नाम रखा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में लोगों ने एक अनोखी बात करी है। हर घर के आगे हमने एक छोटा सा बारिश बचाओ गड्ढा बनाया है जैसा छत और आंगन का पानी जो है या बारिश का पानी जो है उसमें जमा हो जाता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है। बच्चों ने इसका नाम पानी बैंक रखा है। अब बरसात का पानी बेकार होने के बजाय गांव की धरती को सींचता है और गर्मी में जो हैंडपम्प है वो भी जल्दी नहीं सूखते हैं। आई एम नॉट श्योर मोहम्मद सरफराज जी कि ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से जो ये बारिश बचाओ गड्ढा है जिसका बच्चों ने नाम पानी बैंक रखा है, एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, बट आई एम श्योर आप लोगों ने इसको बहुत बखूबी तरीके से बनाया होगा, बहुत सोच समझ के, और इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आप लोग कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई भी यूनिक आइडिया है जो आपको लगता है कि जिसको आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने आसपास, इवन अपने देश के लिए आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल है, तो बिल्कुल से हमारे साथ शेयर कीजिए 9868107070 पर। फ़िलहाल एक ट्रैक आप सबके लिए।

ऑल राइट लिसनर्स, तो सीधा बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास रामधारी, अवाना, गांव ढाणी, कुतुबपुर, क्या बात है, तहसील व जिला हांसी से रामधारी अवाना जी का मैसेज है। और इन्होंने लिखा है कि जो बूंद बूंद है ना, उसको भी मत बहने दो। मतलब हम एक ऐसे पॉइंट पर लाइफ में पहुँच गए हैं जहाँ पर अगर हम एक बूंद भी वेस्ट करते हैं ना, तो इट इज़ सच अ शेम। मुझे लगता है कि ये बहुत बेकार बात हो जाएगी। तो ऐसे में अगर नल टपक रहा है तो उसको कस दो, बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो, आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करो कि आप शॉवर की जगह बाल्टी की भर के पानी से नहा लें, तो पानी जो है वो कम वेस्ट होगा। ये सब हम जानते हैं, लेकिन अगर हम इसे रेगुलर बेस पे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ टाइमिंग्स और कुछ डेज ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि इस वक्त हम बाल्टी के पानी से नहाएंगे, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की बात है। साथ में इन्होंने लिखा कि आरओ और एसी से निकलने वाला जो जल है उसको मैं ज़रूर दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर वन डे जब हमारी हाउस हेल्प हैं, उनको मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बकेट रख देते हैं और इस पानी से ही हम बाकी के काम करेंगे। तो उनको लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ही मुसीबत वाला काम है, कौन यहाँ पे पानी भरता रहेगा और फिर कहाँ से ये पानी उठाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। तो उनको लगता है कि बस वो एक वायर जा रही है और पानी बस जा रहा है सिंक में, तो वो बेटर है। लेकिन नहीं, अगर हम कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आरओ और एसी के पानी को हम एक जगह पर इकट्ठा करें, तो बिल्कुल से उसको सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि रामधारी जी ने लिखा है कि मैं उसे सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता हूं, और मेरा ये विश्वास है कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की नींव है। बिल्कुल सही बात, इतनी प्यारी बात इतने सरल तरीके से आपने हमें बताई है, मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। साथ में एक मैसेज और ले लेती हूं, भुवनेश अशोक विहार से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया है कि जब मैं अपने ऑफिस से वापस आता हूँ, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माय ऑफिस, जो भी वट एवर वाटर इज़ लेफ्ट इनसाइड माय, मेरे पानी की जो बॉटल है उसके अंदर, देखिए अभी कितनी ज़रूरी और बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कि मेरे पानी की जो बॉटल है जो मैं अपने ऑफिस लेके जाता हूँ, उसमें जो भी पानी बच जाता है बिल्कुल नहीं फेंकता हूँ उसको, मैं अपने पेड़ पौधों को दे देता हूँ उसको फेंकने के बजाय, सो दैट जो भी प्लांट्स हैं ना उनको भी पानी मिलता रहे और पानी जो है वो किसी तरीके से वेस्ट ना जाए। बिल्कुल सही बात है, पानी का इस्तेमाल सही तरीके से सही जगह पर हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। सो यहाँ पे जम्मू से भी मेरे पास मैसेज है, मेरा नाम नरजीत ठाकुर है और उन्होंने रत्ना देवी का नाम भी लिखा है, लिखा है कि आज बहुत दिन बाद आपका प्रोग्राम सुना है। देखिए ये बहुत गलत बात है, आई वॉज जस्ट होपिंग कि आप आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर चलिए कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनको डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है एक ट्रैक ज़रूर हमें यहाँ प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन या इन्फोटेनमेंट नहीं है, हम एंटरटेनमेंट भी हैं और गाने जो हैं वो हमारे चैनल की

ऑलराइट लिसनर्स, तो बिल्कुल से बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ सीधा सीधा, और मुझे श्योर है अब तक आपको पता लग गया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया है मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम का, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से. क्या बात है, लिखा है कि आज मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर में

0: जो भी ना बच्चे हैं, आई मीन मैं ये बच्चे सुन के ही समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं, जो बच्चे हैं ना उन्हें पानी के महत्व के बारे में बताना, समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हें बताएं। और साथ में लिखा है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना उस जगह पानी की वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को मैं समझाता हूँ मगर सिर्फ मुझसे ही नहीं होगा, जब तक पूरा समाज किसी काम को अपना समझ के नहीं करेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी बात से ना मैं 1000% नहीं, 1,00,000% जो है ना मैं इत्तेफाक रखती हूँ मोहम्मद साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानती हूँ जिसे हम कभी कभी सिविक सेंस का नाम देते हैं या कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये ना सबके करने से होगा, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में या हम में खुद में भी, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, वो ऐसे हैं कि उसको निकलने में ना मुझे लगता है पीढ़ियाँ ना लग जाएं, तो बहुत डर सा भी लगता है कि हम स्वच्छता के प्रति सजग नहीं हैं, हम पानी को बचाने के प्रति सजग नहीं हैं, हम बिजली को बचाने के प्रति सजग नहीं हैं, हम अपना फ़ायदा देखने के प्रति बहुत सजग हैं, हम दूसरे का नुकसान अगर उससे हो रहा है तो उसके लिए सजग नहीं हैं। तो ये जो सजगता है ना, ये आते आते आप सही कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिल के ये करना पड़ेगा। हम कुछ भी खा के रैपर्स बाहर फेंक देते हैं गाड़ी के, हम सजग नहीं हैं। सिविक सेंस की बात भी हो रही है और भी बात हो रही है, और फिलहाल तो यहाँ जल की बात हो रही है। लेकिन मोहम्मद इम्तियाज़ साहब और सलमा बेगम जी, आप कोशिश जो है वो मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप जैसे लोग भी कोशिश को छोड़ देंगे तो फिर क्या ही होगा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी कोशिश जो है समाज को अच्छा बनाने की, लोगों को प्रेरित करने की आप हमेशा करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद सरफराज आलम का मैसेज ज़रूर आएगा, मुझे पता था, क्योंकि मैंने मच्छरों की बात कर दी थी तो उन्होंने बोला कि आपको बता दूँ, मच्छरों की जहाँ तक बात है ये खुले हुए गड्ढे नहीं हैं, ये सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इसे सीमेंट और कंक्रीट से अच्छी तरीके से इस प्रकार से ढका गया है कि इससे कोई भी गंदगी नहीं होगी। और साथ ही लिखा है कि आप सभी से निवेदन है इस यूनिक आइडिया को आप भी अपनाएं और पूरा ध्यान रखें और गड्ढों को हमेशा ढक कर ही बनवाएं। जी बिल्कुल ठीक, मुझे लगता है कि मेरी जो एक कन्फ्यूजन थी वो आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से जो है वो दूर कर दी है, सो थैंक यू सो मच। नल को वजह खुला नहीं छोड़ना है ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय या हाथ धोते समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी को नहीं लेना है, स्पेशली जब हम मॉल्स में जाते हैं या हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं या आजकल बहुत स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट्स बन गए और हमें लगता है अरे वाह ये तो क्या ही स्मार्ट है, चलो इसे बर्बाद करते हैं, वो सब नहीं करना है। वर्षा जल का संचयन करें, बारिश के पानी को टैंक या गड्ढों में इकट्ठा करने के लिए घरेलू उपयोग करें या खेती के लिए इस्तेमाल करें, पानी का दोबारा से उपयोग करें कपड़े या सब्जियाँ धोने के लिए, और उसके बचे हुए पानी का उपयोग पौधों को डालने में या सफाई के लिए किया जा सकता है। जल ही कल है इसलिए हर बूंद की कीमत को समझें। और ये मैसेज मेरा नहीं है, ये मैसेज अशोक नागरा, सुनीता नागरा और रॉबी नागरा का है चंडीगढ़ से, सो थैंक यू सो मच। एक तो चंडीगढ़ का नाम सुन के मुझे वैसे ही बहुत खुशी हो जाती है, आपका मैसेज सच में बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से जीवन होना चाहिए। तो चलिए कुछ और मैसेजेस जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करूँगी बस थोड़ी ही देर में।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है, ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है, सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है, आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी, आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं

तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ऑल राइट लिसनर्स, और जितने भी मैसेजेस इस बार बच गए हैं ना, उसके लिए रियली रियली रियली सॉरी. कोई भी शिकायत मत कीजिएगा. और इस शिकायत में ये जो हमने आज इतना बड़ा आह्वान किया है ना जल को बचाने का, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा. और यही कहूँगी कि हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, मेरे साथ, क्योंकि मैं एक घंटे के उस पार यानी कि 8 से 9 के समय में म्यूज़िक मस्ती लेकर बिल्कुल से आपके साथ आऊँगी, बनी रहूँगी. सो यही कहूँगी, स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग. और इसी तरीके से मुस्कुराहट के साथ, प्यार के साथ, हमारे इस चैनल के साथ आप पूरी तरीके से जुड़े रहिए, खुश रहिए और बस मैसेज करते रहिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध

सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back, everyone. You're tuned to FM Rainbow and you're listening to the program Friday Fiesta. Well, I have about 7 messages requesting to play a couple of rock songs, but Friday Fiesta is all about new music. I'm sorry I can't play you classics, but I'm going to play you a couple of recent releases. Bon Jovi and Robbie Williams and a song called We Made It Look Easy.

0: तुम्हारी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, और इस आकाशवाणी पर मेरी वाणी सुन लीजिए। मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, फेस लाइफ विथ फुल पावर, वो तो आपको करना ही है, करना ही पड़ेगा, और आपका मेरा बस यही तो एक वादा है। और इसी वादे के साथ बिल्कुल से इरादा है कि जितना हो सके आपको एंटरटेन कर सके ना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। तो हमारा ये जो शो है ना, म्यूज़िक मस्ती, ये स्पेशली इसी फील के साथ डिज़ाइन किया गया है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपकी यू नो बॉडी में भी एक एनर्जी रहे, यानी कि आप ऐसे डांस नंबर्स, ऐसे फुट टैपिंग नंबर्स और ऐसे अमेजिंग नंबर्स को आप इस पूरे शो में सुने, म्यूज़िक मस्ती में सुने, कि आपको बस मज़ा आ जाए, मस्ती आ जाए और आपको लगे कि वाह वाह वाह वाह वाह, दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। तो बस ऐसे ही जो ट्रैक्स हैं वो मैं आपके लिए इस पूरे एक घंटे में प्ले करने वाली हूँ। तो बिल्कुल से शुरू करते हैं इस बहुत ही अमेजिंग मीठे मीठे से, बहुत ही मीठा है, मतलब बिल्कुल जलेबी की तरह मीठा है ये गाना, इसको सुनिए और बिल्कुल से एक के बाद एक आपके लिए बहुत बहुत बहुत अमेजिंग ट्रैक्स प्ले करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: नसीला नसीला तेरा नैना चुराइले हम।

नमस्कार दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 9:01। यह है 102.6 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, एक ऐसा शो जहां हर गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की कोई खूबसूरत याद बनकर दिल को छू जाता है। कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी किसी की बातें, और कभी कोई पुराना सा बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अचानक दिल के बहुत करीब आ जाता है। बिकॉज यू नो सम मेमोरीज नेवर फेड, दे जस्ट टर्न इनटू ब्यूटीफुल मेलोडीज। जी हाँ, ये वो महफिल है जहाँ रातें थोड़ी और हसीन हो जाती हैं, जहाँ दिल की अनकही बातें सुरों में ढल जाती हैं, और जहाँ हर लिसनर को किसी न किसी अपने की याद ज़रूर आती है। सो सिट बैक, रिलैक्स, और तैयार हो जाइए उन गीतों के सफ़र पर जो कभी आपके मुस्कुराने की वजह थे और शायद आज भी। मैं हूँ आपकी आरजी गीता, प्यार से गीतू भी तो कहते हैं आप।

वेल, दिन भर की भागदौड़ के बाद ये रात जैसे अपने साथ एक बहुत ही अलग ही सुकून लेकर आती है। चारों तरफ हल्की सी खामोशी और उस खामोशी में दिल की कुछ अनकही बातें, कुछ अधूरे एहसास धीरे धीरे जागने लगते हैं।

क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये तो बहुत खूबसूरत जादू है जो कभी किसी की मुस्कान में मिलता है तो कभी किसी की आंखों में। और सच कहा जाए, प्यार की सबसे खामोश मगर सबसे गहरी जुबान होती हैं आंखें। जब कोई दिल में उतर जाता है तो सिर्फ हर नज़र में उसी का चेहरा दिखाई देता है, हर धड़कन उसी का नाम गुनगुनाने लगती है। और ऐसे ही जज्बातों को बेहद खूबसूरती से आवाज़ दे रहे हैं हमारे कुमार सानू और अलका याग्निक।

आई होप आज की प्लेलिस्ट भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी. इफ यस प्लीज डू राइट इन टू रेनबो 102.6 FM@gmail.com. धीरे से बता देती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लें, और आपका प्यारा सा जो रिएक्शन होता है हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. रेनबो 102.6 FM@gmail.com मेल कीजिएगा, और फटाफट से मैसेज भी करते रहिएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है. कहाँ करेंगे मैसेज? 9868107070.

वेल, कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि कोई शख्स, कोई इंसान अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी आज भी हर जगह, मतलब हर जगह, मतलब हर सांस में मौजूद होती है। कभी किसी गाने की एक लाइन, तो कभी किसी मौसम की एक शाम हमें सीधे उसी के पास ले जाती है, और फिर बस हम चुपचाप बैठकर उन यादों के साथ कुछ पल जी लेते हैं।

रात की तन्हाई में जब खामोशी मुस्कुराती है, रात की तन्हाई में जब खामोशी मुस्कुराती है, चांद की हर हल्की किरण तेरी याद दिलाती है। सारी दुनिया नींद की आगोश में खो जाती है, एक तेरी याद है जो सारी रात जगाती है। फैंटास्टिक लाइंस किसने लिखी हैं? जी हाँ, हमारे प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर हैं मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हर दर्शना बाज़ार अररिया बिहार से इन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच सरफराज जी।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 9:24. प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही है 102.6 FM रेनबो. मैं हूँ गीत.

कुमार सानू की दिल में उतरने वाली आवाज़ में ये जो गीत है ना, प्यार की मासूमियत और छुपे हुए जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर रहा है। और इस गाने का हर शब्द ध्यान से सुनिए, हर धुन दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। फिल्म परदेस का ये गीत आज भी मोहब्बत करने वालों की धड़कनों में बसता है।

राइटिंग फ्रॉम पुरुलिया वेस्ट बंगाल, आई टर्न ऑन द रेडियो ओनली टू लिसन, आपकी याद आती रही. अमेजिंग प्लेलिस्ट, जस्ट कीप गोइंग. थैंक यू सो मच दोस्त, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा कि कहाँ से आप मुझे मैसेज कर रहे हैं.

प्रेमचंद प्रेमी बहुत ही खूबसूरत धामपुर बिजनौर से जुड़ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट इन्होंने लिखा है, नाजुक से दिल पे चोट के कितने निशान थे, उससे भी सख्त सब्र के इम्तहान थे, और वक्त ने उन मरहलों से मुझे गुजारा है उम्र भर, जहाँ हर सू किसी की यादों के आसमान थे। वाह, थैंक यू सो मच प्रेमचंद जी।

सृष्टि पटना से जुड़ी है मेरे साथ, लिखती है कि म्यूजिक की धुन और किचन में काम करते करते कब वक्त बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता, और ये सुहानी सी रात और ये गाने, उफ, थैंक यू सो मच सृष्टि जी।

वेल दोस्तों, आपको पता है ना, किसी से दूर रहना कभी कभी हमें ये एहसास दिलाता है कि वो हमारे कितने करीब है. यू नो, डिस्टेंस मेक्स लव स्ट्रॉन्गर. समटाइम्स मिसिंग समवन इज द रियल कनेक्शन. ये एक छोटी सी बात है जो समझनी होगी. बहुत सारे लोग समझते नहीं है, क्योंकि किसी से दूर रहकर कभी कभी एहसास दिला देता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब है.

किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़ गए हैं। लिखते हैं कि आपकी याद आती रही कार्यक्रम में, गीत और संगीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच आपका। जयंत जुड़े हैं पटना से, लिखते हैं मैंने उम्र लगा दी इजहार करने में, वो आए और ना करके चल दिए। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच।

की धन्यवाद कहते हैं, लिखते हैं मेरे टूटे फूटे शब्दों को अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुत करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपका कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच प्रोग्राम पसंद करने के लिए और साथ ही वक्त निकाल कर जो आप मैसेज करते हैं उसका तहे दिल से शुक्रिया।

टुम्पा जुड़ी हैं रेलवे कॉलोनी मिंटो रोड से, लिखती हैं नमस्कार गीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन, प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू आकाश। तो आकाश जी अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, लिखती हैं आकाश, यू आर राइट एंड परफेक्ट, लव यू सो मच, सो वेरी ग्रेटफुल टू यू आकाश, थैंक यू सो मच मैडम मैसेज करने के लिए। आई थिंक आकाश तक आपका मैसेज पहुँच गया होगा।

आई होप आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी. इफ यस प्लीज डू राइट इन टू रेनबो 102.6 FM @gmail.com राइट नाउ. आपका रिएक्शन, आपका प्यार हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत मायने रखता है.

मास्टर राधे श्याम शाक के कासगंज से जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग, प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं। हमेशा ही ये हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं। लिखते हैं कि गीतू जी सादर प्रणाम, आपको भी बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति और 90s के जो सदाबहार गीत हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।

पता है दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी से हम और आप शिकायत ही करते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ज़िंदगी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब पूरा दिन शिकायत ही शिकायतें। पर उसी खूबसूरत ज़िंदगी में हमारी बहुत प्यारी प्यारी प्यारे प्यारे रीज़न्स होते हैं, वजह होती हैं उस ज़िंदगी में। यू नो, लाइफ इज़ टफ़ बट वेरी वेरी मीनिंगफुल, एवरी पेन टीचेस समथिंग। आप थोड़ा सा महसूस करके देखिए। देखिए, वक्त का पता नहीं चला कि कब प्रोग्राम शुरू हुआ था। इनफैक्ट ये प्रोग्राम मैंने बहुत सालों बाद किया है और बहुत ज़्यादा मन था कि मैं आपसे 9 बजे मिलने आऊँ और इतने प्यारे प्यारे गाने सुनवाऊँ। 11 बजे भी आपसे रंगे महफिल में मुलाकात होगी, बहुत ही खूबसूरत गज़लें और इनफैक्ट पुराने नगमे आपके साथ मैं शेयर करूँगी, सुनवाऊँगी आपको, आप उसमें ज़रूर जुड़ना। फ़िलहाल वक्त हो चला है 9:51, ये है आपकी याद आती रही, मैं गीता, प्यार से गीतू कहते हैं आप।

दानिश खतौली से जुड़े हैं, लिखते हैं कि गीता मैम कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बस थोड़ा सा गला ख़राब है कुछ दिनों से। आज थोड़ा सा बेटर है लेकिन फिर भी थोड़ा तो है। आगे लिखते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत दिनों बाद आई हो आप और गाने अच्छे लग रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। आगे लिखा है इन्होंने, मेरा मैसेज पढ़ लो, तो पढ़ लिया दानिश जी आपका मैसेज, थैंक यू सो मच प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए, पसंद करने के लिए।

ये था आज का सफर आपकी याद आती रही के साथ। उम्मीद है आज के इन गानों ने आपके दिल को किसी न किसी याद ने ज़रूर छुआ होगा, बिकॉज यू नो म्यूजिक इज़ नॉट जस्ट साउंड, इट इज़ एन इमोशन। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड कीप लविंग। चलती हूँ, 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। और खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर

17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 11:05, और ये वक्त उस महफिल का है जहां हर एहसास को एक नया रंग मिलता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और मैं हूँ गीता, लेकर हाजिर हूँ रंगे महफिल। दिन की हलचल अब थम चुकी है, शहर की रफ्तार धीरे धीरे खामोश हो रही है, खामोशी में तब्दील हो रही है, और ऐसे सुकून भरे लम्हों में दिल क्या चाहता है? दिल कुछ खास चाहता है, कुछ अपने जैसा, है ना? तो आज की इस महफिल में हम रंग भरेंगे जज्बात के, कभी इश्क के, कभी यादों के, तो कभी उन अनकहे लफ्जों के जो दिल में तो होते हैं पर जुबां तक नहीं आ पाते। ये महफिल है सुरों की, शब्दों की, और उन कहानियों की जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर बसती हैं। कभी कोई गज़ल दिल को छू जाएगी, कभी कोई ऐसा नगमा आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा, और कभी कोई धुन आपको अपनी ही यादों में खो जाने का मौका देगी। तो अगर आप भी इस रात के सन्नाटे में किसी अपने को याद कर रहे हैं या बस खुद के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो जनाब ये महफिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी नज़ाकत और ढेर सारे खूबसूरत एहसास इस रंगे महफिल में होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए, अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए और इन सुरों के रंग में खुद को रंग जाने दीजिए। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त गीता, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम रंगे महफिल, जहाँ रात बन जाती है एक यादगार महफिल।

ये दिल और उनकी निगाहों के साए, वाह बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। मोहब्बत जब बहुत नाजुक हो जाए ना दोस्तों, तो वो शब्दों से नहीं सिर्फ एहसासों से समझी जाती है, और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही आवाज़ पूरी सच्चाई से बयां कर सकती है, और वो आवाज़ है लता जी की। सुनिए ज़रा।

वेरी सूदिंग नंबर फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत। दोस्तों, ये गाना प्यार की उस मासूमियत को छूता है जहाँ दिल धीरे धीरे किसी की आंखों में खो जाता है। एंड लता जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही इमोशनल और रूह को छूने वाली आवाज़ है लता जी की। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास है जो किसी भी गीत को सिर्फ सुनने लायक नहीं बल्कि उसको महसूस करने लायक बना देती है। हर सुर में एक सादगी है, हर शब्द में एक गहराई और हर ठहराव में एक अनकहा सा जादू। आपको पता, जब भी मैं लता जी की आवाज़ में ये वाला गाना सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत, प्यार खुद धीरे धीरे सांस ले रहा है, बहुत शांत, बहुत नाजुक और बहुत ज़्यादा दिल के करीब। किशोर दा फ्रॉम अमर प्रेम।

क्या बात है, क्या बात है। जब भी दोस्तों ये गीत बजता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे दिल के किसी कोने में दबा हुआ कोई पुराना जज्बात या फिर से जग उठा हो। धीरे धीरे सुलगती हुई यादें और आंखों के सामने गुजरता हुआ कोई बीता हुआ पल। और आवाज़ देखिए उस जादूगर की, यानी हमारे किशोर दा की, सभी जानते हैं, जिनकी आवाज़ में ऐसा लगता है जैसे दर्द भी संगीत बन जाता है। और फिल्म अमर प्रेम, जहाँ मोहब्बत भी थी, तन्हाई भी थी और ज़िंदगी का एक बहुत ही गहरा एक एहसास छुपा हुआ था। वेल, ये दौर वो दौर था जब गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते थे, बल्कि दिल की कहानी होते थे। ये आवाज़ आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी पहले दिन लगी थी। फारूक अली साहब जुड़ गए हैं, थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं। लिखते हैं, प्रोग्राम आपकी याद आती रही में, आपने मेरे मैसेज को नज़रअंदाज किया, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा मत सोचिए, कुछ मैसेजेस रह जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं। आपको ये प्रोग्राम, ये गज़ल, ये गाने पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

आई होप इस प्रोग्राम के भी जो गज़ल हैं, जो गाने हैं, वो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो फटाफट से मेल कीजिएगा rainbow102.6fm@gmail.com।

कितना सीधा सच्चा सा गाना था ना दोस्तों। और वैसे अगर इस गाने को ना ध्यान से सुनो तो इस गीत में मोहब्बत की कोई बनावट है ही नहीं, कोई दिखावा नहीं है, बहुत ही सच्चा सा गाना लगता है मुझे ये। बस एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है किसी को अपनी दुनिया बना लेने का, किसी को अपनी आँखों में बसा लेने का। और जब ये गीत बजता है ना तो ऐसा लगता है जैसे दिल खुद से बातें कर रहा हो और हर धड़कन बस यही कह रही हो कि तू यहीं है मेरे आसपास। वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ठीक 11:33, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, मैं हूँ गीता।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 11:40, रंगे महफिल में मैं हूँ आपके साथ गीता।

अनिल ठाकुर जी दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अली साहब जुड़े हैं, लिखते हैं आज के सभी गीत बहुत ही बेशुमार दिलों की धड़कनों पर राज करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, हर एक गीत बहुत कुछ कह जाता है, इतने उम्दा गीत सुनवाने के लिए थैंक यू।

वेलकम बैक प्रोग्राम रंगे महफिल में आप सभी का स्वागत है। कर्नल केपी तोमर साहब मेरठ से जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्ते आदाब, रेडियो सेट अभी अभी ऑन किया है। आप इतना लेट रेडियो सेट ऑन क्यों करते हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। लिखा है आगे कि उस वक्त एक डुएट आ रहा था जिसमें एक आवाज़ शायद सुमन कल्याणपुर की थी, मधुर गीत था। मेरे बहुत से संगीत प्रेमियों से बहस हो चुकी है कि मेरा मानना है कि सुमन जी की आवाज़ में कंपन है। मैंने उनको किसी भी गीत में लंबे अलाप लेते हुए नहीं सुना। बहरहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपने अभी अपना नाम बता दिया तो बहुत खुशी हुई, आपको मेरा विशेष नमस्कार। आपको भी मेरा विशेष नमस्कार। ये आपकी अपनी ओपिनियन है और हर इंसान की अपनी अपनी

ओपिनियन होती है, अपना परसेप्शन होता है। किसी को रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को किशोर दा, किसी को लता जी, किसी को आशा ताई और किसी को सुमन कल्याणपुर। बहरहाल मुझे सुमन जी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें आप नहीं पहचान सकते कि वो लता जी ने गाया है या सुमन कल्याणपुर जी ने। बहरहाल थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से एक बार फिर से जुड़े हैं इस प्रोग्राम में और इनको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। सारे गाने और गज़ल बहुत अच्छी लग रही है, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच आप तीनों का इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और साथ ही साथ मैसेज करने के लिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं और बहुत सारे गानों के जो मैंने सुनाए थे अभी, उन्होंने सारे गानों के टाइटल लिखा है और सारे गाने इनको बहुत पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है इसके लिए आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप मेल कर सकते हैं, मेल के लिए मेरी मेल आईडी है rainbow102.6fm@gmail.com। आप यहाँ पर मेल कीजिए क्योंकि आपका प्यार, आपका रिएक्शन इस प्रोग्राम के लिए बहुत मायने रखता है। और जो दोस्त मेरे चुपचाप सुन रहे हैं, अभी भी वक्त है, मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

क्या बात है दोस्तों, क्या बात है रफ़ी साहब। दोस्तों एक गायक नहीं है वो, हिंदुस्तानी संगीत की वो एक ऐसी रूह थे जिन्होंने हर जज्बात को अपनी आवाज़ में ढाल दिया, और उनकी गायकी में ऐसी पाकीज़गी थी कि सुनने वाला ख़ुद को गीत के यूँ कहूँ कि एहसासों में खो देता था। वो दोस्तों जब वो दर्द गाते थे तो आंखें नम हो जाती थीं, और जब मोहब्बत गाते थे तो दिल धड़कने लगता था, और जब सूफियाना अंदाज में सुर छेड़ते थे तो लगता था जैसे इबादत हो रही हो। वेल, रफ़ी साहब की सबसे बड़ी ख़ासियत थी कि उनकी जो रेंज थी ना वो बहुत अद्भुत थी। बहुत कम गायक ऐसे होते हैं जो हर तरह के गानों में खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने हर अंदाज को अपना बना लिया। ऊंचे सुर हों या बहुत सॉफ्ट लहजा, शास्त्रीय हो सादगी हो, उनकी आवाज़ हर रंग में चमकती थी। वेल दोस्तों, टाइम हो चुका है 11:51, और धीरे धीरे जो वक्त है वो खिसक रहा है हमारे हाथों से। अभी भी कुछ वक्त है, बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा देती हूँ। चलिए

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: वेल दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र के आखिर में दिल से एक छोटा सा थैंक यू कहना चाहूँगी आप सभी लिसनर्स का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सारा प्यार दिया। सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस के ज़रिए इस महफिल को और भी स्पेशल बना दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, हर मैसेज में जो इमोशंस थे, जो वॉर्मथ थी, वो इस शो की असली स्ट्रेंथ है। बिलीव मी, आपकी बातें और आपकी यादें ही इस प्रोग्राम की सोल बन गई। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि यू आर द रीज़न ये सफ़र इतना हसीन बन पाता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई शाम में नए एहसासों के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग और सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: नहीं आया है, इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिलकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी है कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच के आदेश दिए। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार से सिफारिशें करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत के सामने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आप सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जांबाज फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है सपना मुखर्जी और महेश गढ़वी ने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, और इसे हमने लिया है फिल्म जानी दुश्मन से।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

आप सुन रहे थे अर्पण फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। और आइए अब सुनवाते हैं आपको वंश फिल्म का यह गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आशा फिल्म का गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: बारह बजकर 47 मिनट होने को है और आइए आप सुनवाते हैं आपको अगला गीत, जिसे गाया है यशुदास ने। फिल्म का नाम है दादा।

इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था परिंदा। और दोस्तों प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के

0: भूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की। इस बीच डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिरकर से राज्य में नई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूजो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 36 सेकंड हुए हैं, आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि।

मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
1: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
0: लेकिन कब, कैसे
1: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी

पड्डी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 1200 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC U17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में

नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रात भर ईरानी सेना के साथ हुई गोलीबारी के बाद अमरीकी सेना ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में उस युद्ध विराम का सवाल खड़ा कर दिया है जिसके बारे में अमेरिका अब भी प्रभावी होने का दावा करता रहा है। अमेरिका युद्ध समाप्त करने, जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान की विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारे का मां।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल कोलकाता में श्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। मौसम विभाग ने कल से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रही हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।